उन्होंने कहा इदरीस अलैहिस्सलाम को तो मैं ले आया हूं, उन्हें पता है कि हमारा कलमा, हमारा कलमा बहुत हंस पर। तो फरिश्ते हंसते क्यों? उसने कहा कमाल की बात यह कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि ईसा इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करनी है चौथे आसमान पे, और मैं सोच रहा था कि वो तो जमीन पे रहते हैं, चौथे आसमान पे कैसे आए कि मैं रूह कब्ज करूंगा, मुझे पता नहीं था, वो इसीलिए आए हैं। अच्छा लेटाओ मैं रूह कब्ज करूं। उन्होंने कहा यह आगे पीछे तो नहीं हो सकता, ये तो वक्त मुकर है, और खुदा की शान देखो कि अल्लाह ने यही फैसला किया था कि वरफअनाहु मकानन अलिया, इतना बुलंद मकाम पे हम ले गए कि उनकी रूह कब्ज जो है वो भी आसमान। और बाद उलमा ये भी कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम भी जिंदा हैं जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, और वो कुतुबे कियामत में उतरेंगे, अन्नहु यंदिरु अला मिनारत शर्किया बैदा अदमिश्क وَأَنَّهُ يُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَذَرُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا। लेकिन असल सही रिवायत यह है कि इदरीस जिंदा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। तो अब इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में ही इबादत अवसान शुरू हुई, और इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल रसूलन व अव्वल नबीयन जिनको भेजा वो कौन है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, जिनके लिए हमने ये आयत तिलावत की थी कि वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है तो जिंदगी बाकी तो बात बाकी। ममा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

कोई हवेली भी ना बचे दुनिया में। इन्नका इंतज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ्फारा। मेरा अल्लाह, अगर आपने इनको छोड़ दिया, अगर आपने इनको मोहलत दे दी, अगर आपने इनको हलाक न किया, तो इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी नहीं होंगी मगर या फाजिर होंगे, काफिर होंगे, वो भी तेरे फरमाबरदार इताअत गुजार नहीं होंगे। याद रखो, बाद जाहिल लोग जो हैं इन्हीं आयात से लोगों के अकीदों को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं, देखो जी, अल्लाह के नबी को आखिर इल्मे गैब था। अल्लाह का नबी इल्मे गैब से ही बता रहे थे ना कि अल्लाह आने वाली नस्लें भी ईमान नहीं ले आई, और ये भी बतला रहे हैं कि आगे जो पैदा होगा या काफिर होगा या फाजिर होगा। इसका मतलब यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब, हालांकि ये जहालत है। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया पर ये इल्जाम है और अल्लाह के कुरान से सरासर इनकिराफ। उसकी वजह यह है कि अगर उनके दिल में जर्रे के बराबर भी खौफ होता तो नूह अलैहिस्सलाम के अपने किस्से में मौजूद है कि मैं कभी इल्मे गैब का दावा नहीं करता, वाला अकूलु लकुम मिन्नी आलमुन गैब। और दूसरी बात, नूह अलैहिस्सलाम का ये कहना कि उनकी औलादें काफिर होंगी, तो ये 950 साल जो बंदा आजमा चुका हो, 100 साल नहीं, 950 साल, यानी 9 सदियां बीत गई, 50 साल ऊपर गुजर गए, कई लोग पैदा हुए, कई मर गए, कई नस्लें बदल गईं, ये तो एक खुली सी बात। आप देखें ना, आप भी जब देखते हैं किसी आदमी को, किसी बच्चे को, आप एक दिन, दो दिन, चार दिन, 6 महीने, 1 साल मेहनत करते हैं, आप कहते हैं भाई तुम नहीं सुधरो, बस भाई सवाल ही पैदा, तुम्हारे सुधरने का तो कोई सवाल ही पैदा, क्योंकि मैं तजर्बा कर चुका हूं इतने अरसे से कि तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली ही नहीं आती। ये इल्मे गैब नहीं था, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तजर्बे की बिना अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने उनकी दुआ जो थी वो मंजूर कर, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि अब एक बात जो है वो अच्छी तरह समझ। वूहिया इला वूहिन, अल्लाह ने वही, इन्नहु लयुमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन, के बस अब आपकी कौम से और कोई ईमान, क्योंकि अल्लाह तो जानते बस जो ईमान ला चुके ला चुके बस पर और कोई। लेकिन एक बार नूह अलैहिस्सलाम याद रखना कि जब मेरा अजाब आ जाए तो फिर इनके लिए बख्शिश नहीं मांग, इनके लिए फिर मोहलत नहीं मांगनी, ऐसा ना हो कि अजाब देखने के बाद आपका दिल नरम हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को, जिसका जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद सूरतों में मौजूद है, कि वस्नाइल फुल्क भी आयुनिना, कि कश्ती, इसीलिए सबका किताबों में यह बात भी मिलती है कि नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से दरख्त लगाए, और वो दरख्त जो है तकरीबन माशाअल्लाह 100 साल तक बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को आके तालीम दी कि भी कश्ती कैसे बनानी है, जो कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना तो नहीं जानते। उन्होंने आपको तालीम दी कि इस तरह लकड़ियों के फट्टे बनाएं, इस तरह आप तख्ते बनाएंगे, इस तरह आप जनाब मसानीद लाएंगे, इस तरह फिर उनको जोड़ा जाएगा और इस तरह वो तैयार होगी। तो नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले आमले नज्जार जो है, यानी जिसे आप उर्दू में दरखान कहते हैं या लकड़ी का काम करने वाला कहते हैं, बड़ी का काम जो है सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू। और खुदा की शान देखेंगे, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं खुश्की में, यानी कश्ती तैयार हो रही लेकिन मैदान में, और कश्ती भी माशाअल्लाह कितनी बड़ी थी। बहुत सारे अकवाल हैं लेकिन राज कौल यही है कि तूलुहा 300 ज़राइन व अर्ज़ुहा 50 ज़राइन, कि लंबाई जो थी वो 300 हाथ और अर्ज जो था, चौड़ाई जो थी वो 50 हाथ थी, और उसकी ऊंचाई जो है वो थी 300 ज़राइन 30 हाथ। बाज़ उलमा ने 1200 हाथ भी लिखा है कि 1200 हाथ लंबा था और 300 हाथ चौड़ा था। असल वजह यह है कि यह इख्तलाफ नहीं होता, एक तो रिवायात है कुतुब साबका से, और दूसरी बात यह होती है कि उस जमाने में तो अभी कद हमारे तरह तो नहीं थे, वो तो नूह अलैहिस्सलाम से फिर भी ज्यादा करीब के लोग थे ना। नूह अलैहिस्सलाम का कद जो है वो 60 हाथ था,
اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا. تو اب اگر یہ اتنا بچا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قد بڑا ہوگا. جب قد بڑا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بڑا ہوگا. جب ان کے 300 ہاتھ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں 1200 یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاتھ بن جائے. تو اس لیے بعض مورخین کو یا بعض اہل سیر کو اس پہ اختلاف لگا, لیکن راجِ قول یہی ہے کہ 300 ذراعٍ و 50 ذراعٍ, 300 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ جو ہے طول تھا, اور اونچائی جو تھی وہ 30 ذراعٍ و 3 طبقاتٍ, اس کے 3 تہ بنائے گئے یعنی 3 منزلہ کشتی تیار کی گئی. وَمُطَبَّقٌ مِّن فَوْقِهَا, اور اوپر سے بھی حکم تھا کہ اس کی چھت ڈال دی جائے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے یا آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ بھی اس کو متاثر جو ہے نہ کر. اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے, زیادہ تو تھے نہیں, کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ کتنے تھے, 80 آدمی تھے سارے, یعنی عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سارے 80 آدمی شریک تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. تو اب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرتے اور قوم کے بندے گزرتے تو وہ مذاق کرتے, وہ کہتے دیکھا جی ہم نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے, ہم نہیں کہتے تھے کہ مجنون ہے, بھلا یہ کشتی بنانے کا کیا ہے, کہ آپ کو دریا ہے کہ کشتی چلے, یا آپ کو سمندر ہے کہ کشتی چلے, بھلا کشتیاں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خشکی پہ چلی ہوں. یہ تو نوح علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے. اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ابھی اب طوفان آ رہا ہے, اب پانی آ رہا ہے, اب کشتی پانی میں آئی. اللہ نے حکم دے دیا کہ حتی

मेरा बेटा है, मेरी सुलभ से है, मेरे खानदान से है, और तेरा तो वादा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तेरे अहल को बचा लूंगा। मेहरबानी करके मेरे बेटे को निजात दे दो, मेरे बेटे को बचा लो। अंदाजा करें, लोग कह देते हैं ना जी, हमें तो पीर छुड़ा लेंगे, हमें फकीर छुड़ा लेंगे, हमें अपने शेख छुड़ा लेंगे, हमें पीरान। खुदा के बंदे अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, अव्वल रसूल हैं, अव्वल नबी, लेकिन सब और सामने बेटा गर्क हो रहा है। और उसके बाद बचाना तो बड़ी बात है ना, बचाना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला का जलाल आ गया, قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح। कि नूह अलैहि सलाम, तेरा बेटा नहीं है, क्या हो गया नसब से, हमारे यहां नसब नहीं तुलता, हम नहीं जानते सैयद कौन है, कुरैशी कौन है, अब्बान कौन है, खान कौन है, कुरैश कौन है। हमारे यहां तो तकवे का मकाम है और ईमान और अकीदे की निस्बत है। हमारे यहां तो इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, हमारे पास जो नसब चलता है वो तकवा है। शुऊबन व कबाइल लितआरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्ताकुम। नूह अलैहिस्सलाम, जब उसका अमल, जब उसका अकीदा तेरे साथ नहीं मिलता तो हमने तेरे खानदान से भी काट दिया। इन्नहु लैस मिन अहलिक, क्यों, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। और उसके बाद भी जलाल दे

Adı. Yani eş. तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इरम जो है वो भी दरअसल इन्हीं का नाम है। ये आद भी कहा जाता है और इरम भी कहा जाता है। और ये आद जो थे आबाद कहां थे? अहकाफ में। और अहकाफ का वो इलाका जो है वो अम्मान और हज़रमूत के दरमियान में यमन के इलाके में एक जगह थी। यमन में हज़रमूत आज भी मशहूर है, बल्कि हज़रमूत के लोग जो हैं आपके हैदराबाद में अभी तक भरे हुए हैं। पुराने दौर में जो अरब गए थे हज़रमूत से, वो अभी तक हैदराबाद दक्कन में आबाद है। इसीलिए आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, कि आज भी हैदराबाद में माशाल्लाह अरब खाने मिलते हैं, क्योंकि वो अरब आबाद है। बिल्कुल वहां जाके आदमी यानी हैरान हो जाता है, उस वो नाश्ते में देखे फूल बन रही है, कहीं अरीसा बन रहा है, बिल्कुल वो खालिस ठेठ अरब, क्योंकि हज़रमूत के लोग हैं वहां, बारकस पूरा आपका भरा हुआ। और चूंकि हमारा तो आना जाना होता है, अल्लाह की रहमत से काफी दोस्त भी हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि हज़रमूत असल में लफ्ज था हादारा मौत, क्योंकि पैगंबर को मौत आई ना, तो मौत आ गई ना, तो हादारा मौत बिगड़ गया तो हज़रमूत बन गया। जैसे कह देते हैं ना अबुल्लक, हालांकि अबुल्लक कोई लफ्ज थोड़ा है अरबी का, लफ्ज तो था अकूल उला का, लेकिन उसको हमने अबुल्लक, या जैसे कहते नहीं वाद क्या वाद बादल बना दिया, वाद कोई अरबी लफ्ज थोड़ा है, असल में लफ्ज तो था ना या वलद, लेकिन उसको मुस्तमल तरीके इस्तेमाल से, कसरत इस्तेमाल से, क्योंकि ये बाजारी अरबी है ना, अरबी फसहा जो है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो कुरान की लुगत है।

कहो क्या बेवकूफी कर, मैं बेवकूफ हूं, मैं तुम्हें जहन्नम से निकालना चाहता हूं, मैं तुम्हें बंदों की और बुतों की इबादत से निकाल के उस बाजा शरीफ के दरवाजे पे लाना चाहता हूं, और मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हें नसीहत करना चाहता हूं, तुम्हें हिदायत करना चाहता हूं, तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें बुलाना चाहता हूं, और फिर तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ी ताकत दी है, सेहत दी है, दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें समझ दी है, इन सब चीजों का शुक्र यह है कि खुदा को छोड़ के गैरों की इबादत करो। अब जनाब ये है कि उन्होंने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार दावत दी, तबलीग की, लेकिन कौम जो थी वो अपने कुफ्र शिर्क पे अड़ी रही, और हत्ता की इतनी बात पे नऊज़ु बिल्लाह आ गए कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने डराया कि भाई तुम अल्लाह का अगर इबादत नहीं करोगे, शिर्क करोगे, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी अजाब नाज़िल कर दे जैसे कौम नूह पे अजाब आए, तो कौम डरने के बजाय क्या कहती है,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है।

0: सुनो, शोर डला होता है स्पीकर पे, गाड़ी अटैंड जी गाड़ी, हमें पता नहीं कहाँ पकड़ आएगी, ये मुझे नहीं समझ आ रही। हम एक एक आधी दहाई से ज्यादा इस मुल्क में रह रहे हैं और कानून का एहतराम करते हुए हमें पता नहीं क्यों शर्म आती है। हमें कानून का एहतराम करना चाहिए और जो दूसरे लोग हैं उनका खास ख्याल रखना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए।
1: मजीब साहब, आपने जिक्र किया हमें कब अकल आएगी, हम बड़े दर्द माना अपीलें भी करते हैं, हमें बड़ा फिक्र होता है फ़लस्तीन का, हमें बड़ा फिक्र है कश्मीर का, जहाँ भी दुनिया में जुल्म होता है मुसलमानों को बड़ा फिक्र होता है, ह्यूमन राइट्स की जहाँ भी वायलेशन हो उस पर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। मजीब साहब, आप सियासतदान भी है, मुल्क आलते जंग में है, कश्मीर के हालात आप देख लें, धरने हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, कत्लो गारत जहाँ भी दुनिया में हो रही है, फ़लस्तीन का हाल आप देख लें पिछले कितने अरसा दराज से, ईरान के हालात देख लें, जहाँ भी होते हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ भी दुनिया के किसी हिस्से में, तो मुजीब साहब हमें कौन सी खुशियाँ चढ़ी होती है, हम ढोल भी मारते हैं, अय्याशी भी करते हैं और उसके बाद शाम को सोशल मीडिया पर बैठ कर जनाब रोना रोना शुरू कर देते हैं, जनाब फ़लस्तीन के हक में, कश्मीर के हक में, आगे पीछे दूसरे जगहों पर, ये क्या है?
0: मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा जी, हमें मैं इसलिए कहा कि हमें आज तक उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें अक्ल नहीं आई ना, तो हमारे पास कोई दीनी तालीम है ना हमें हमारे पास दुनियावी तालीम है। ये दोनों तालीम जिस वक्त तक इंसान के पास मुकम्मल ना हो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मेरा ये मेरा तजिया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे पास दीनी तालीम नहीं है, मेरे पास दुनियावी तालीम नहीं है, मैं अच्छा इखलाक का मालिक नहीं बन सकता, मैं अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं एक दूसरे का एहतराम नहीं कर सकता, मैं एक दूसरे की तकलीफ को देख नहीं सकता। देखें जी, जो आपने कश्मीर फलस्तीन या दूसरी जगह का जिक्र किया है, वो हमारे भाई बहन भाई हैं, उनकी तकलीफ हमें है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चलें देखें, क्योंकि जिन मुल्कों में हम रहते हैं उन मुल्कों में हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में है, सारे लोग काम काम काम और भागो दौड़, फैमिली प्रॉब्लम, इधर इधर का काम उधर का काम, तो उसमें थोड़ी सी इंजॉय हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरूरी यही है कि मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे की तकलीफ का भी ख्याल रखें, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करें। एहसास करेंगे तो तभी बात होगी ना। लेकिन जब तक दीनी और दुनियावी तालीम राज साहब नहीं आएगी, आप भूल जाए कि हम क्या, हमारे अंदर इखलाक आ जाए, हमारे अंदर एहसास आ जाए, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसको हम जो है ना अपना के दूसरों को खुश कर सकें।
1: शाह साहब, आपने बात सुनी, शाह साहब बात को आगे लेकर चलते हैं, क्या ये डबल मोरल है सारा कुछ, या कि हम सीखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ सहूलियात या कानून कायदे के सुराख ढूंढते हैं कि किस तरह इस सुराख में से अपना हिस्सा निकालें?
2: नहीं, मेरा ख्याल में कि अगर हम देखें तो हम फ्रस्ट्रेशन में हम खुद पड़ चुके हैं। मैं सीधी बात करूंगा इसमें, मैं खुद अपना तजिया करूंगा कि उम्र के इस हिस्से में जब मेरे अब बाने बान जो है वो पोतिया पोते दूसरे जो है वो माशाल्लाह कद काट काटना शुरू निकालना शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर कोई बच्चा अपनी सोच के मुताबिक कोई बात करना चाहता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, या मुझे भी मैं उसकी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल अपना मुजीब भाई ने बहुत वाजह तौर पर कहा कि हमें दीनी तालीम से भी हम नाशना है और दुनियावी तालीम से भी हम नाशना है, और ये जब तक हम इनको सही तरीके से ढूंढ नहीं सीखेंगे, नहीं इनकी बुनियादें नहीं समझेंगे, हम कभी भी होंगे इस मुल्क के अंदर। जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, जिस जो हमारा अब हमारा नहीं, हमारे आने वाली नस्ल जो इसमें पैदा हो चुकी है ये उनका मुल्क है, हमने अब तक इनको और अपने आप को एजुकेट नहीं किया। मैं अपने 90% दोस्तों की बात करता हूँ कि जो जिस महफिल में भी बैठेंगे वो अपने गांव की बात करेंगे, अपने इलाके की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की हर चीज की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे, सियासत की बात करेंगे, वो कभी भी बैठ के डेनमार्क के बारे में या यहाँ की बात किसी कानून के बारे में या यहाँ की जो सहूलियात हमें मिली हुई है उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, या किसी पार्टी के मंशूर के ऊपर बात नहीं करेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, किस पार्टी को वोट देना क्या। इसी वजह से 70s, 80s, 90s में ये वही डायनेशन है, और मैं आज भी हल्फन ये कहता हूँ के 90% से ऊपर डैनिश जो है ये राशिस्ट नहीं, हम इनको तंग करते हैं। कल मैंने ये सिचुएशन रीमा थूजन में और नेटो में देखी और पेट्रोल पंप में खुद जाके खड़े होकर देखी, डैनिशों से बात करके देखी कि वो बूढ़े मजदूर लोग जो है वो वहां पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो वहां पे गाड़ियां जो है उसकी

0: पार्किंग जो है वो फुल है, बल्कि ऑल ऑलिट गाड़ियां खड़ी हैं। अब वो कहाँ जाए, कहाँ से वो अपनी शॉपिंग करें। तो ये चीजें जो है, ये हम लोगों ने, लोग आते हैं दुकानों पे, आते हैं दो मिनट के लिए शॉपिंग करते हैं, अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। लेकिन अब ये कहना जी कि ये दुकानदार, ये फेस्टिवल हमने मंजूरियां ली हुई है लोगों का कारोबार तबाह करना, तो इससे जो रहने वाले हालात है वो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मजमूई तौर पर देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे दीनी फिरकों ने, जब से हमारे यहाँ पे कल्चर सेंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये फैसिलिटीज हमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे जो है जितना इस्लाम को यहाँ पे अब बदनाम किया जा रहा है, 70s, 80s और 90s में यहाँ पे नहीं था ये चीजें, और ये चीजें नहीं थी। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि इसके अंदर ख्वाब वो शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, ये इस डेनमार्क का एक कानून है, डेनमार्क का एक कानून है कि आप जिस चीज के लिए, किसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, किसी चीज के लिए भी आप यहाँ पे आइन के मुताबिक आप कहते हैं कि हमने बाहर निकलना है, हमने घूमना है, डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, कोई चीज लगानी है, तो वो आपको फैसिलिटीज देंगे, वो इनकार नहीं करते। अब ये देखिए कि यहाँ पे दीनी कल्चर क्या हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अहले सुन्नत वाले भी अपनी ये चीजें निकाल रहे हैं, और अहले तशी वाले, अब चार तारीख को ये हुंडी से जुलूस निकालेंगे और तोड़ जाएंगे, 7 बजे से लेके शाम तक ये जाएंगे, क्या नाम है, अपना नर्वो स्टेशन तक। उस वक्त ये मीटिंग टाइम होता है, उस वक्त ये लोग जो है कामों पे जा रहे होते हैं, लोग बच्चों को बहाने वाले स्कूलों में छोड़ के और जल्दी से जा रहे होते हैं, और ये नॉर्मल दिन है। क्या इनके, इन लोगों को ये नहीं समझ कि जब हमें यहाँ से निकाला गया था, हमें फ्लोटिंग लायर कैंपों से यहाँ लाया गया, हम लोग तो आए थे यहाँ काम करने के लिए, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ आकर अब माचो मैन बन चुके हैं। उन्होंने इस आयन की धचियां उड़ा दी है, यहाँ पे कानून बना जा रहा है हमारे खिलाफ। उसकी वजूहत क्या है? क्या हमारे सियासतदान ये नहीं सोचते कि हमें ये चीजें यहाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसी मजहबी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी चाहिए सड़कों पे आगे, जिससे लोगों को जो है वो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, और लोग जो है, अगर आगे 10 बंदे हमारे खिलाफ थे, अब 100 बंदा और खिलाफ हो जाए, तो ये जो ब्लॉकिंग और ये जो चीजें करने का मजाहरा है, हम वो वाकई ये कहते हैं कि आपके अपने मुसलमान ममालिक हैं, आप वहां जाके करें, आपको हमने इजाजत दी है, बंद कमरों में ये चीजें करें, आप नमाजें पढ़े, हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन अब आप अपने मजहबी रसूमात और ऐसी चीजें जो है, जहाँ आप लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये पार्किंग के मसाइल, ये घूमने फिरने के मसाइल, तो इससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डेनमार्क में पड़ रही है। इसकी वजूहत है क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ
1: अदनान, आपने बहुत सारी बातें सुनी, आप किस तरह एनालाइज करेंगे?
2: देखिए रजा साहब, हर चीज को मिक्स देखा जाए ना, तो इंटरनेशनल तो एक इस वक्त क्राइस चल रहा है काफी चीजों का, और वो तो अल्लाह करे कि हमारे मुसलमान भाई बहन है और उनके लिए सख्तियां माफ करे। और ये जो इंटरनेशनल क्राइस है ना, इसको आप एक पर्सपेक्टिव में और देखें ना, तो वो ये है कि इधर भी तो एक क्राइस चल गया ना, ये जो स्पेन का वाक्य हुआ है उसकी भी क्या कहते हैं, सारी यूरोप में हलचल मरी हुई है। दूसरी बात रही हमारे जो पाकिस्तानी है, उनको अब एक चीज को ये देखना चाहिए कि जिस मुल्क में बंदा रहता है ना, उसके लॉ और ऑर्डर को बंदा फॉलो करे, बस ये सबसे बड़ी जरूरी बात है।
1: जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमें मोहतरम मियां मुनीर अहमद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मियां साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी शुक्रिया राज साहब, मेहरबानी आपको और जो हमारे साथी इस वक्त शामिल है गुफ्तगू में, और आपकी टीम को, सुनने वालों को, सबको बहुत बहुत सलाम। मैंने अभी आपको, मैं निकल कर बाहर आ गया हूँ, हमारे ना राय काउंसिल की मीटिंग है 12:30 बजे, तो मैंने अभी आपको मैसेज भी लिखा, आपने पहले भी फोन किया था, मैं निकल कर बाहर सिर्फ इसलिए आया हूँ, आप पढ़ लें कि मैं ना 2 बजे के
1: बाद। साहब, राय काउंसिल ने किसी मुल्क पर हमला करना है?
3: हाँ जी हाँ जी, देखो ना हमला होने लगा हूँ, मैं 5-7 मिनट आपके साथ रहता हूँ,
1: جی جی
3: بیٹھے ہیں, دو تین بندے ابھی نہیں آئے تھے.
1: میاں صاحب قانون قاعدے کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں ہمیں قانون قاعدے سے چلنا چاہیے, ملک میں ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح دنیا کے سارے حالات دیکھیں تو ہم خوش بھی ہو رہے ہیں, کوئی فرسٹریشن کی بات کر رہا ہے اور ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈول بھی پیٹتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, کون سا کام ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن شام کو سوشل میڈیا پر ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں, فلسطین کا رونا روتے ہیں, بڑے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, امریکہ یہ کر گیا, اسرائیل یہ کر گیا, فلاں یہ کر گیا. تو میاں صاحب کیا ہم میرے سمیت ہم اپنے گربانوں میں جانگتے ہیں؟
4: دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر آپ اوور آل دیکھیں ساری دنیا کی تو میرے خیال میں وہ ڈینش ہو, امریکن ہو, نارویجن ہو, جاپانی ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, ہر انسان اس وقت فکر مند ہے. دنیا کے جو حالات ہیں, جو مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح کی افراتفری پھیلائی گئی, پیدا کی گئی, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اسے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, لیٹس سے ڈینش تو یہاں بیٹھے ہیں ہم, لیکن وہاں جو چیز جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر, وہ سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی, انرجی جو ہے یعنی کہ تیل کی شکل میں. تو اس نے دیکھیں آپ کے 17.5 کروڑ کا لیٹر ڈیزل ہے. اب ڈیزل سے اوور آل دا ورلڈ ہر چیز جو ہے, یعنی کہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے, وہ ٹرک کی شکل میں ہو, وہ ایگریکلچر کی شکل میں ہو, وہ اس سے چلتی ہے. اور اس سے جو فوڈ سپلائی ہوگی, ٹرانسپورٹ ہوگی, جس کاروبار میں بھی آپ جاؤ گے وہ چیزیں پھر اس طرح یعنی کہ وہ ہے. تو باقی اگر ہم اپنے پیارے وطن کی طرف دیکھیں, بات ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک عجیب قسم کی افراتفری جو ہے پچھلے دنوں میں, اور ایک چھوٹا سا اپنے صوبہ جسے بلکہ ایک خود مختار سٹیٹ ہے کشمیر, آزاد کشمیر, اس کے اندر ایک الیکشن سے کیسے یعنی کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لڑائی جھگڑے, افراتفری, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ڈنمارک میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ صاحب گروپ میں ہے ماشاءاللہ, میں مجھے نہیں پتا تھا کون کون ہے, میں دیکھ رہا ہوں اب اپنے اسکرین پر, تو دیکھیں کہ یہاں کس قسم کی ہم مسلمانوں پر اور فورنرز کی طرف کس قسم کی کس تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے. فوراً یعنی کہ یہ اسپین کا میں ابھی غالباً عدنان بات کر رہے تھے, تو یعنی کہ کل میں دیکھتا رہا ہوں ڈینش نیوز پڑھتا رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا خوف, مارے گئے, یعنی کہ اور وہ ہم جو ہیں, ہم جو یہاں رہتے ہیں اس ملک کا معاشرے کا حصہ ہیں, بچے یہاں دوسری تیسری جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں, ان کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے, ہمارے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں. مورٹن جو ہے میسا سمیت, وہ یعنی کہ وہ بس وہ چھلانگ مار کر اپنی سیاست چمکانے کی طرف چلے گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز اے ایک شہری انسان ہم سب کے لیے, یعنی کہ آپ کس پر گفتگو کریں یا کس طرح حالات جو ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, تو یہ تو ساری چیزیں ہیں نا.
1: میاں صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, مجیب صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سب ڈینش سیاست بھی کرتے ہیں اور لوکل سیاست کو بھی اور اپنی پاکستانی سیاست کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ہم بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ اشاعتیں ہو رہی ہیں ادھر ہو رہا ہے, کشمیر کے حالات دیکھ لیں وہاں بھی مار کٹائی اشاعتیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف جہاں سے بھی ہو رہا ہے, بات تو انسانیت کی ہے نا, ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو سوچنا تو یہ ہمیں ہے نا, جو اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. تو میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈیمونسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں, انصاف بھی مانگنا چاہتے ہیں, تو ہم قانون کی طرف نہیں جاتے اور ہم مظاہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی پاکستان امبیسی کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, چونکہ یہاں کا جمہوری حق ہے, ان کا بھی حق ہے. اگر یہ حالات ہو سکتے ہیں, جنگی حالات میں ڈول باجے بجائے جا سکتے ہیں, تو کسی اپنے لیڈر کے حقوق کے لیے لوگ باہر بھی تو نکلتے ہیں, ڈیمونسٹریشن بھی تو کر سکتے ہیں. جی میاں صاحب,
0: میرا بھی سوال لے لیں میاں صاحب سے. میاں صاحب السلام علیکم, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا, کیونکہ آپ چیئرمین کشمیر تحریک کشمیر کے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں कि ये जो हमारे लोग डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं पाक फौज के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा अदारा है। जब आप पाक फौज के खिलाफ डेमोंस्ट्रेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप फौज के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ आप बात करते हैं। तो ये जो आजकल बहुत ज्यादा इंग्लैंड यूरोप में और यहाँ डेनमार्क में भी कोशिशें हो रही है कि एंटी पाकिस्तान जो लोग बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
3: देखें, पहले राय साहब ने जो सवाल किया और अब आपने भी, बड़ा अहम सवाल भी है और अहम मसला भी है। अब दो दफा ना उन्होंने, मैं बाहर आ गया हूँ तो मुझे हाजी साहब दरवाजे में इशारा करके गए, वो मेरा ही वेट कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगा कि शॉर्ट जवाब दे करना, तो फिर राय साहब अगर आप मुनासिब समझे टाइम हुआ तो मैं बिल्कुल साथ हूंगा, ये घंटे तक वाइंड अप हो जाना यहाँ से। देखे शाह साहब, बात सीधी सादी है, कश्मीर जो है वो जो जो जो पाकिस्तानियों का या कश्मीरियों का मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जाकर आप देख सुने उन लोगों को जुल्म सहते आ रहे हैं 70 साल से, कि वो तो पाकिस्तान की तरफ देखते आए हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है और उनकी होप आवाज हम ही बन सकते हैं और हमें बनना है और हम बनेंगे और कश्मीर इंशाल्लाह जी जो है बनेगा पाकिस्तान, और वो शाहरा हमारी। अब ये जो है यहाँ मुजाहरे करते, इनको जो यानी कि अफरा तफरी पाकिस्तान के अंदर पला रहे हैं यहाँ यूरोप के अंदर, मैं समझता हूँ कि देखें मुजाहरा करना हर एक का हक है, लेकिन पाक फौज के खिलाफ और अम्बेसी के बाहर और अपनी हुकूमतें के खिलाफ ये बहुत इन लोगों की कम अकली है। ये चंद एक लोग हैं, कितने एक लोग ये होते हैं, ये वही हैं जो 13 होते हैं, कभी ये 17 होते हैं, पिछली दफा ये बहुत खुश हैं कि ये 50-60 बंदे थे, मैंने भी किसी ना किसी तरह वो देख लिया था कितने हैं। सो ये इतने ही है समझे, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, और अगर ये ऐसे करेंगे और जो इनकी बड़ी सोशल मीडिया पर ये बड़ी बातें करते हैं तो फिर ये सुन लें आज कि फिर इनका सामना किया जाएगा। हम गैरतमंद जो पाकिस्तानी हैं, जो अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ हैं, जो करोड़ों की शक्ल में है, हम ये बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर एक कि यहाँ मुजाहरे करके, शाह जी ये इस वक्त मुजाहरों का टाइम नहीं है इस वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये पहले कुछ चीजें आप जानते हैं, आपने खुद इन चीजों का रिसर्च किया है, राजा साहब ने, इदनान ने, यूक्रेसी, हम सब भी यानी कि देखते करते हैं, ये मजारों का टाइम नहीं है इन गली कूचों में। इस वक्त जो हालात, जो अफरा तफरी, जो हमारे मजहब को आगे रखकर हमें देखकर ये लोग जो जिस तरह वो देख रहे हैं अभी, यानी कि वो कुछ हजार लोग हैं वो सारे बेचारे वापस चले गए, लेकिन उस मुल्क के अंदर जिसने 40.4 मिलियन लोगों को अपने घर बिठाया, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो तुर्की हो, वहां तो कभी किसी ने बात नहीं की। बहरहाल मैं राय साहब बहुत माजत
0: के जी, मियां साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो राजा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो है स्पेशल पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम किया जाए, आपको भी लिया जाए और मजीब साहब को भी, दोस्तों को, और हम लोग सिर्फ ये जो आज कीचड़ उछाला जा रहा है नौजबिल्ला कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जात पे, अलामा इकबाल की जात पे, हम पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, हम मुहिबुल वतन जितने भी लोग हैं हम पाकिस्तान की बात करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि राजा साहब जो है वो हम सबको लेकर तो स्पेशल एक प्रोग्राम आज इस पे करें।
3: मैं 2 बजे के बाद फारग हूँ, अगर मुनासिब है मैं बिल्कुल साथ हूँ। रेडियो आपकी आवाज हमारी आवाज है, राजा साहब जिम्मेदारी से हमेशा अपनी से ये एक मौका देते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, एक तालिब इल्म हूँ शाह साहब, तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुझे
1: शाह साहब शाम को टाइम रखेंगे, शाम का बाद में टाइम रखेंगे हमने ना, जो है ना
3: जैसे आप समझे मुनासिब,
0: जिस वक्त आप लेंगे हम हाजिर हैं।
3: ठीक है, बड़ी मेहरबानी अल्लाह
1: ताला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मियां साहब आज सुना कि 5 तारीख को आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं।
3: राजा साहब ऐसे नहीं, मैं दरवाजे के अंदर जरूर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद,
0: पाक फौज
3: जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम पाकिस्तान पाक को मारने वाले हैं, ये 5 दफा मैंने नारा अपनी फौज का लगाया। अल्लाह ताला
1: बहुत शुक्रिया। अदनान आप क्या आखिर में क्या कहेंगे?
2: सब यही कहूंगा कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं रिस्पेक्ट करें और आने कानून को देखें।
1: कानून को देखें। मुजीब साहब आप सियासतदान हैं, आपके घर में ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें बाकियों से बेहतर देखते सुनते रहते हैं, आप क्या कहेंगे?
5: देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने प्रोग्राम करना है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारा सबका मुल्क है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान है और इंशाल्लाह ता कयामत उसने सलामत रहना है और उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन हमारे सियासतदानों को भी थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए उसमें। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूंगा, सारे सियासतदानों को अक्ल आनी चाहिए। जब भी वो कभी बयान देते हैं अपना, तो उनको ये एहतियात करनी चाहिए कि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, मुल्क के अंदर ये चीज नहीं है, मुल्क के अंदर वो चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसे इन चीजों से दुश्मनों को मौका मिलता है और हमें मौका नहीं देना चाहिए। बाकी रह की बात जहाँ डेनमार्क की, तो जैसे नान ने भी कहा है, तो मैंने शुरू में भी कहा है और मैं हर वक्त यही कहूंगा कि जिस मुल्क में हमने रहना है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि उस मुल्क के कानून का हमने एहतराम करना है और उसका एहतराम जरूरी है। और जब हम एहतराम करेंगे तो हमें यह नहीं देखना कि भाई हम पाकिस्तानी है तो एहतराम करें, बल्कि अपने हमसाए हैं और भी जो दूसरे ममालिक से लोग आए हुए हैं, डैनिश आपके दोस्त यार हैं, उनको भी आप कह सकते हैं। वो भी किसी वक्त डैनिश भी मैंने हमने देखा है कभी कभी वो भी कानून की लापरवाही कर जाते हैं। तो हमें सबको कानून की जो है ना वो कानून का एहतराम करना, ये मेरा मैसेज है। आपस में इतफाक में रहना है। मैं एक और चीज मेंशन करता चलूं कि दो बड़े फंक्शन आ रहे हैं इस माह में, अभी तक जो मेरे पास इतला है, एक 8 को है, एक 14 को है। तो वहां पे भी जब हम लोग जाएं, अपनी गाड़ियों को सही तरीके से पार्क करें, अपने सही तरीके से अपना डिसिप्लिन शो करें, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है, लोगों के घर होते हैं, लोगों के दरवाजे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें हर चीज का एहतराम करना है ताकि अपने उस 14 अगस्त के दिन को सही तरीके से मना सकें और बता सकें कि हम एक मुनज्जम और एक जो है ना वो वाली कौम है कि जिसमें हमें डिसिप्लिन है। तो अपने डिसिप्लिन को कायम रखें और अपने डिसिप्लिन को बेहतर बनाएं।
1: शाह साहब आखिर में आप शुक्रिया अदा करें, अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़े।
0: जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुजीब कुरैशी साहब का, दनान का, मियां मनीर साहब का और अपने सारे लिसनर नाजरीन का और आपका भी। देखें यहाँ जो आज प्रोग्राम आप शाम को करने जा रहे हैं, ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी आवाज है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके ऊपर तो हम रोजाना बात करते हैं, कानूनों के बारे में आगाही देते हैं, लेकिन जिस मुल्क में हमारा रूहानी रिश्ता भी है, जहां हमारे बाप दादा, हमारे बड़े, जहां हम खुद पैदा हुए, उस मुल्क के ऊपर भी अगर कोई हर्फ आए तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाना जो है ये हमारी जमहूरियत और हमारा दीन जो है हक देता है। इंशाल्लाह ताला शाम को ही हम प्रोग्राम करेंगे।
1: ये तो सियासी पार्टियों की जब बात करते हैं, डेनमार्क की बात करते हैं, तो डेनमार्क में जो है ये सियासी पार्टी पीटीआई भी यहाँ मौजूद है, ये इश्तिहार भी निकालते हैं, नंबर लिखते नहीं है, ये बड़ा अच्छा करते हैं, जमहूरी आदमी है, चूंकि इश्तिहार निकाल दिया, टेलीफोन नंबर नहीं रखा, डेट दे दी, टेलीफोन नंबर नहीं लिखा, टाइम बता दिया, टेलीफोन नंबर नहीं लिखा। तो मैं भी कोशिश करूंगा, मुजीब साहब भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें कि पीटीआई का कुछ जो है जिम्मेदार बंदा वो भी प्रोग्राम में शामिल हो।
0: देखिए जी पीटीआई जो है, मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं, ये सारे बच्चे मेरे हाथों में बड़े हुए हैं, सियासत इन्होंने यहाँ शुरू की है। जब पीटीआई पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान में खत्म हो गई है, तो इनको चाहिए था कि एक जमहूरी तरीके से अपना नाम रखते, इमरान खान की पार्टी का नाम रख लेते, अपना जाति या कुछ और, जैसे पीपी ने किया था, पहले 3 पीपी थी, वो बैन हुई तो इन्होंने 4 पीपी रख ली है, आज 4 पीपी भी जिंदा है और 3 पीपी भी जिंदा है। तो ये चीजें सामने आनी चाहिए और इनको चाहिए कि अपनी मुनज्जम जो है, अपने कायदीन को, हर एक आदमी को जमहूरी और हमारा दीन याद देता है कि उसके बारे में ये बात जरूर करे, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म है, आगे बात करे। अब जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के खानदान पे कीचड़ उछाला जा रहा है, अस्तफा रसफुल्ला और इलामा इकबाल के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि मुझे तो इतना दिली सदमा हुआ ये चीजें सुन के फेसबुक पे और दूसरी जगह पे, कि जिन्होंने हमारे लिए हमारे हमारे हमें ये दीनी जगह दी जिसका नाम हमने लाला के नाम पे रखा, اور اس کو ہم اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم دین سے ہی ہٹ گئے ہیں اور اپنے بڑوں کے مذاق ہم اس طرح اڑا رہے ہیں.
1: صاحب آپ سے چلتے چلتے سوال کر لوں, چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے اس بات پر, تو شاہ صاحب یہاں جو بندہ سیاسی بندے ہوں, یہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, یہاں یہاں بھی تو آرمی کے چیف ہیں, کیا اسٹیٹ کے خلاف یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ اجازت ہے یہاں اس ملک میں؟
0: نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ جتنے بھی بس ختم ہونے لگا, جتنے بھی یہاں کے ادارے ہیں نا, جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پولیس کا ادارہ ہو, کوئی بھی منسٹری جو آتی ہے, یہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اور آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ وزیر اعظم کے خلاف بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسٹیٹ کا جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں اور ان کے اوپر کسی بھی ملک میں بات کرنا جو ہے وہ غداری کے ذمرے میں آتا ہے. لہٰذا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کے ایک آرمی کے آفیسر چیف کو آپ گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سولجر کو گالی دی ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہمیں سوچنا پڑیں گے. آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور کھل کر اپنے جو محبت ہے, اپنا جو ہماری جو پاکستان سے محبت ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور آپ امید ہے کہ سب لوگوں کو ٹائم پہ لے کے ساتھ چلیں گے اور ان کو کھل کے بات کرنے کا اپنے پوری مثلا مجیب قریشی صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں, میں ہوں, شوکت ہو, چودھری بلال, کوئی بھی جو بھی سیاسی بندہ اس پہ ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ حرمت پاکستان پہ, فوج پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال پہ کھل کر بات کرے, اور ان کی جو حرمت ہے وہ ہمارے ہم سے بڑی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی راجہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے
1: مجیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اطران, آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی ٹائم, بچوں کا ٹائم جو ہے, اپنے سامان کے ساتھ گزارتے. سامان ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, چونکہ ہم لوکل ہیں. لوکل جب بات کی جاتی ہے, لوکل انوائرمنٹ بنتی ہے, تو پھر لوکل انوائرمنٹ میں باتیں کی جا سکتی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے اندر رہتے ہیں, کوپن ہیگن کے اندر رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, لیکن پاکستانی لوکل تنظیمات کیا کر رہی ہے, لوکل لوگ ہمارے کیا کر, لوکل سوسائٹیاں ہماری کیا کر رہی ہے, لوکل ہماری پالیٹکس کیا کر رہی ہے, ہم کس طرح کوکی فائٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ڈینش شہری ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ڈینش پاسپورٹ رکھنے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو قانون قاعدے کا آپ نے اگر احترام نہیں کرنا, تو دوسروں کو گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو بھی آنا چاہتا ہے, اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے, ہمارے لیے ویلکم ہے, لیکن ہمارا کسی سے رضامند ہونا ضروری نہیں ہے.

0: 10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो खुद तो नहीं बन गए, उनको हमने बनवाया हुआ है और हमारी वजह से वो बने हुए हैं। तो अगर उनको अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भूल जाए। मैं तो एलानिया रेडियो पर कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं नहीं, कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उनको चाहिए कि एक साल तो गुजर गया है, तो बाकी जो टाइम रह गया उसको अपने आप को सामने लेके आए और जो छोटा मोटा काम हो रहा है, जो भी उनकी चीज है, उसको उजागर करें। आपका प्लेटफॉर्म हाजिर है और मीडिया है, जिस पे मर्जी आए आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने एरिया में लोगों को बताएं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, आपके लिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए नहीं, जिस कम्युनिटी से वो मुंतखब हुए पूरी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। ताकि ये तो नहीं कि खाली हम लंदन जा रहे हैं या हम पेरिस जा रहे हैं या हम बोसिनिया जा रहे हैं या हम स्पेन जा रहे हैं, शहरों पर लग जाए, ऐसा काम नहीं चलता। आप काम वो वाले खत्म हो गए, यंगस्टर माशाल्लाह सब सियासत को समझते हैं, और जो नेक्स्ट यंगस्टर आएंगे हो सकता है फिर जो भी यंगस्टर है उनको फिर वो छुट्टी करा दे। तो इनको चाहिए कि अपने काम की तरफ तवज्जो दे और जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दे। राज साहब ऐसे है कि मैं भी थोड़ी देर टेलीफोन से निकलूंगा, आप मुझे इजाजत दे दें तो इंशाल्लाह आप बात करें, मैं आपको रेडियो सुनूंगा जरूर, लेकिन मैं एक बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बंदा खड़ा है उसको मिलने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपका रेडियो सुनूंगा
1: चलें, अपना
0: लेकिन मैं टेलीफोन से
1: अपना
0: बाहर जाऊँ।
1: अदनान भी आ रहा है, तो अपना शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब हमारी तरजीहात
0: अगर मैं
1: क्या है?
0: दोबारा जल्दी फारग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊँ। ठीक है,
1: ठीक है,
0: ओके जी, खुदा हाफिज़।
1: शाह साहब हमारी तरजीहात क्या है?
2: जी
1: हमारी तरजीहात क्या है?
2: हमारी तजियात जो है वो गबियत करनी, शो ऑफ करनी, माजरत के साथ। मसाइल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी डिस्कस नहीं करता। जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी सियासी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, तो वहाँ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप किसी दोस्त को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं, यहाँ के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मसले मसाइल है, ये कह देना कि देखो जी मैं तो, मेरे पे तो ये बात नहीं फिक्स हो रही, लेकिन दूसरे पे, लेकिन ये देखें कि जब एक कानून बनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा सही काम कर रहा है या ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, वो तो सब के लिए है। और हादसा किसको कहते हैं? हादसा वो होता है जो सडनली होता है। ये शोर बहुत हो रहा है अदनान के रेडियो में।
1: अदनान गाड़ी का या माइक बंद करें, माइक आवाज आती है, डबल होती है।
2: और मसला ये है कि हमने जो चीजें हाईलाइट करनी है, अब आप ये देखें कि जिस पे चीज पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो नई टैक्सी आई है यहाँ पे, ग्रीन टैक्सी, ये अब
1: और ड्राइवर भी मिल रहे हैं अभी।
2: जी नहीं, ड्राइवर उनको काफी मिल रहे हैं। वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ड्राइवर्स का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। अब नुकसान में जो दूसरे जाएंगे, देखे एक, मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तो फिक्स रेट मिल रहा है, मुझे तो ये परवाह नहीं कि सवारी बैठती है नहीं बैठती, पैसे देती है नहीं देती, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। ये चीज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर ये है कि अगर मैं जाता हूँ और मेरे मुझे कोई ऐसा टूर मिल जाता है, ऐसी ऐसी सवारी मिल जाती है, दे देती है कंपनी, जो कि टाइम ओवर हो जाता है, तो उसको मुझे बोनस मिलेगा कि भाई तुमने ये काम जो है ओवर टाइम लगाया, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो ये ज्यादा ज्यादा जो है बेहतर है। और ये आगे, और अब एक नई बहस चली शुरू हो गई है कि जो टेस्ला और ये दूसरे जो कंपनियां हैं ऊबर वगैरह, अगर ये बगैर ड्राइवर के गाड़ियां जो है, ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस में या न्यू ईयर के बाद यहाँ पे फेंक देते हैं, सड़कों पे ले आते हैं, तो फिर ये हमारे वॉनमैन हजरात क्या करेंगे? देखे एक वॉनमैन का कम से कम जो है 30 से लेके 40 हजार करोड़ जो है सिर्फ गाड़ी का खर्चा है। और अगर उसकी गाड़ी का इतना खर्चा है तो वो कम से कम 70-80 हजार करोड़ कमाएगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे। और अगर उसको दो दो तीन तीन घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टोल मिलता है तो वो उसको वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बुलाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्स्टोन से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आर में गाड़ी मिल जाती है तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्स कैप जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा? तो इस तरीके से आबादी बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असाइनमेंट बढ़ेगी, और ये चीजें जो है ये कम्युनो

0: पे बड़ा असर डालेंगी। और कम्युनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्युनों पे इस पे बात उठाएं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्ट्स रिलेटेड जो हैं, उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दे कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दे। अब मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है, वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं, अब उसने गाड़ी को गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसके उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसका वो किस तरीके से उसे
1: शाह साहब, आप गाड़ी की
0: तीन महीने
1: बात कर रहे हैं शाह साहब, एक आप कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखें ना, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आप वाई हेल्प को फ़ोन करते हैं, वो बंदा आता है, वो आपके टायर पे सुराख, खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ, बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉपों में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हज़ार का है, तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब, ये पहले होता था, आते थे वो पंच टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंच लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब, ये जो खेल हो चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की समझ से नहीं, आप क्या कहेंगे?
0: कि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो अक्लमंद है वो अभी से ये सोच ले कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है, कि अगर मैं 30 हज़ार तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ, तो कई दफा मैं 30 हज़ार भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30 हज़ार की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है। ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है, मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए, वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है,
1: चले
0: कंपनी उसको
1: अदनान से
0: देखेगी।
1: शाह साहब पूछते हैं अदनान से, चूंकि अदनान भी काफ़ी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान, ये नई कंपनियां आ रही हैं, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी ज़ात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो अदनान आ रही है, आप क्या कहेंगे?
2: साहब ये तो आ रही हैं, और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे ये पता नहीं, अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में, और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका सीधा क्या होता है, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, या जैसे ये फॉस्टेनमार्क बंद हुआ था तो पत्तों का बिरार कोई थी, तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए कि किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है, क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना। जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं ये हमिसन कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेज पूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन जब ये सारे हमारे मकान वगैरह सब कुछ बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर 100% बजट हमारा बनता है। तो इसी तरह बाकी की कम्यूनों में मसाइल हैं, ब्रॉनबी में भी होंगे, रेफिनरी कुछ मसाइल हैं वहां पे भी, क्या कहते हैं एक पॉन पिस्ता नाम हो जिसको वो पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उधर भी मसलन मसाइल थे। तो इस तरह की चीजें बाहर निकल के हमारे काउंसलर को बताने की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है 14 दिन पहले, और देखा है कि जितने मैंगो फेस्टिवल पे और जिधर जिधर हम लोग गए हैं, जिन जिनों को पता है वो डेफिनेटली सवाल पूछते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछे, मैंने कहा देखिए हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी क्या कहते हैं छाव से स्प्लिट होती है, मगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लीगली होती है और मुझे पता होता है कि मैं बता सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और मैंने जैसे अभी भी कहा है कि मेरे पास काफी हमारी जो व्यवस्था इनकी कमूनों में مین بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ تلاوے ہیں, پھر وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم ان کو بتا سکتے ہیں اور کیا ہے, کیونکہ کافی کیا کہتے ہیں چیزوں میں تبدیلی آئے گی, کافی چیزوں میں بدلے گی. جیسے اب آپ دیکھیں بڑے لوگوں کو, ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گلوس تو سوئی میں ہے, ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مجھے ایک بندے نے اس دن پوچھا, کہتا ہے کہ یہ پورا یہ جو باندھ رہا ہے یہ کیا سسٹم ہے؟ میں نے کہا یہ ڈیم بن رہا ہے. کہتا ہے یہ کیوں ڈیم بن رہا ہے؟ میں نے کہا ڈیم اس لیے بن رہا ہے کہ انہیں پانی بچانا ہے. کہتا ہے یہ ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ تو پھر ہم لوگوں کو, آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگ ہم سے سوال کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا یہ گلوس تو کمون ڈیم بنا رہی ہے کیونکہ فیوچر میں پانی بچانے کے لیے, جب پانی کی کمی ہوگی تو یہ ڈیم جو ہے یہ بارش کے پانی کو بچائیں گے. میں نے کہا اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں بہت سارے, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بڑی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں.
1: عدنان آپ یہ ان چیزوں کی باتوں کر رہے ہیں تو یہ آگے مینگو فیسٹیول کتنے آ رہے ہیں؟
2: مینگو فیسٹیول ابھی دو آ رہے ہیں, ایک مینگو فیسٹیول ہفتے کو آ رہا ہے اور ایک آ رہا ہے زادی کے ساتھ مینگو فیسٹیول 8 اگست کو, جو ان نے آزادی کا پروگرام کے ساتھ مینگو رکھ دی. تو دو مینگو فیسٹیول رہ گئے ہیں, اس کے بعد تو مینگو کا سیزن ہی ختم ہو جانا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں مینگو کے اتنے نہیں رہنے, تو اس لیے.
1: عدنان یہ جو سٹال وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو کیا یہ جو صحت والے ہوتے ہیں, محکمہ ہوتا ہے صحت والا, تو جس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں تو کیا یہ الاؤ ہوتی ہیں ساری چیزیں لیگلی؟
2: اس کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کمون کے اندر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کی اپلیکیشن پروف کر دیں تو پھر کوئی مسائل نہیں ہوتا. اور آبسری وہ 100% زیادہ تر اپروو کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ابھی تک تو یہ ان نے پہلے تو پتہ نہیں کس طرح سے ہے, مگر آگے وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کس کا کیا کہتے ہیں لو کی ایوننگ بدلنی ہے کہ نہیں. تو میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا,
1: میں شاہ صاحب آپ پروگرام کو کلوز کریں اور مہمانوں سے اجازت بھی لیں,
2: ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی.
1: جی
2: جی, میری طرف سے سب کو اللہ حافظ.
1: تھینک یو تھینک یو.
0: جی راجا صاحب, لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کا شکریہ کہ وہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں اس گرمی کے موسم میں, لیکن انفارمیشن بہت ضروری ہے. یہ کونسلرز حضرات کا کام ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جو پینشنرز ہیں یا بیفور ٹائم جنہوں نے پینشن لی ہوئی ہے, یا وہ فیملی والے جن کی لو انکم ہے اس ڈنمارک کے اندر, اور وہ جو لیوسٹ انکم کے یعنی کہ سب سے کم تر انکم کے اندر گزارا کر رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے کمیونٹی سپورٹ کر سکتے ہیں, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر کوئی بھی کونسلر بات نہیں کرتا, کوئی انفارمیشن نہیں دیتا. پھر جتنی نئی بولی بن رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپینسو اور اتنی زیادہ چھوٹی اور کم اور تنگ کمروں والی بنا دی انہوں نے کہ اگر کسی کو مجبوراً وہ کمرے لے لیتا ہے تو پہلے تو وہ وہاں پہ ان کو سونے کے کمرے میں ہی بیڈ ڈبل بیڈ بھی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر جو اس کا رینٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کا گزارا جو ہے بہت مشکل. اور
1: بچوں والے لوگ جو بن سکتا کرایہ, ہر آدمی ہر کمپنی اپنی مرضی سے کرایہ رکھتی ہے.
0: جی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ 85-86 میں ہم نے کوپنہیگن میں اس کے اوپر ڈبیٹ کی تھی, لیکن وہاں پہ پھر وہی بات ہو گئی تھی کہ جو ڈپلومیٹس تھے جو بڑے بڑے امبس مین تھے وہ کمیون کو چکرا گئے تھے اور چکر دے کے تو ایکسائٹ ہو گئے تھے, تو سیاستدانوں کو جو کونسلرز تھے ان کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی. تو یہ ڈبیٹس جو ہیں یہ ہونی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہر کمیون کے اندر جو پینشنرز ہیں اور جو فیملیز والے ہیں جن کی اتنی ہائر انکم نہیں جس طرح کہ ڈنمارک گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے, تو ان کو سستے جو ہے وہ فلیٹس جو ہیں وہ دینے چاہیے اور مہیا کرنے چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ بجائے ڈومسٹک وائلیشن یا کرائم کی طرف جائیں یا ترسے کہ ہمیں باہر گرم موسم ہے ہمیں آئس نہیں مل رہی فلانی چیز نہیں مل رہی. تو راجہ صاحب یہ چیزیں جو ہے یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت آپ بخاری صاحب کو بھی لائیں, کسی کونسلر کو لے کے آئیں جو بڑے ٹھنڈے دماغ سے ہماری باتوں کا جواب دے اور ہمیں اچھے طریقے سے یہ بتائے کہ کون سی کمیون میں وہ کام کر رہے ہیں اور کیا ان کی کمیون میں یہ فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्राइम रेट को रोकने के लिए।
1: वोटर सपोर्टर को भी ये पूछना चाहिए ना कि हमने आप लोगों को वोट दी, जिस तरह मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमने वोटें दी हैं, तो वोटर सपोर्टर को भी चाहिए ना भाई आपको वोटें हमने किस लिए दी थी, आपको मेंबर बनाने के लिए दी थी, आपका कैरियर, आपके जॉब बड़े अच्छे, आपका कैरियर बनाने के लिए हमने आपकी वोटें दी थी।
0: वो आगे से क्या दे दी, अंकल जी अगली दफा मत दीजिएगा वोट, आपने दे दिया आपका शुक्रिया, अगली दफा ना दीजिएगा, हमने आपको समोसे चाय खिलाई थी, बस शुक्रिया आपने इस दफा वोट डाल दिया, अगली दफा बेशक आप ना दे। तो बात में असल में ये होती है कि अगर ये लोग आके लोगों को ये बताते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इससे इससे सहूलियात जो है वो बढ़ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि 85% या 86% लॉज जो बनते हैं यहाँ पे कम्यूनों के अंदर, उनका किसी को भी इलम नहीं, और लोग बाहर आके बात नहीं करते क्योंकि लोग उसके अंदर बैठते नहीं है, बताते नहीं कि कौन सी डिबेट हुई है। आप यकीनन किसी से भी टेलीफोन पर कोई कह दे कि आए मुझे ये बताएं कि आज आप इस हफ्ते आपकी किस चीज में डिबेट हुई है, तो वो आपको गुड़बड़ बात करके तो भाग जाएंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें ये बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपने हमें अलग किया है, हम इस कम्यून में गए हैं, इस कम्यून का मंशूर ये है। अब जिस तरीके से कोपेनहेगन कम्यून को आप ले लें, वहां आपको जो इलेक्ट हुए हैं उनको चाहिए था कि आपके जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बताते कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अवाम के लिए, सड़कों के लिए, पार्किंग के लिए, हाउसेस के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वो पूरा साल वो प्रोजेक्ट पे बैठे, पूरा साल वो उनके चलता रहे, लेकिन मेजर चीजें उनको बतानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप किस तरीके से अमल कर सकते हैं, अगर खुदा ना हादसा आप बीमार है किस तरह आपने रायजे लेना है, किस तरह आपने करना है, ये इन चीजों पे वो तो बात ही नहीं कर रहे। जब तक लोगों को ये चीजें इलम नहीं होंगी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हर मिनिस्ट्री ने बहुत सर्विस बनाई हुई है, ये वायद कोपेनहेगन की बहुत सर्विस है या वेस्टर्न की बहुत सर्विस है, जिसके अंदर सिर्फ तीन चीजें आप जाके उनसे हल करवा सकते हैं, बाकी का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने अगर क्यू आर कोड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या कम्यून से किसी के, तो वो बाकी है उनके लिए कोई रिलेटेड ऐसा नहीं कि कोई आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, वो नहीं ले सकते। और आपको इवन आप एल्बर्सोन बॉमिस्टर को टेलीफोन करें ना, तो उसका उसका नंबर ही कोई नहीं है। तो ये कैसी कम्यून है जिसके अंदर कोई बॉमिस्टर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप कहीं जाकर टाइम नहीं ले सकते, आप किसी काउंसलर से नहीं मिल सकते, आप पूछे कम्यून से पूछे कि कोपेनहेगन ये अपना एल्बर्सोन कम्यून के अंदर कौन कौन से काउंसलर है, उनके टेलीफोन नंबर हमें दे, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये अवाम को मिलनी चाहिए। जी राजा साहब,
1: मैं मजीब साहब की तरफ पढ़ते हैं। मजीब साहब, आप चूंकि ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, आपके घर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डिप्लोमेसी डिप्लोमेट जो मिलती रहती हैं, लेकिन हम किसी काम की तरफ नहीं जाते मासवाय तनकीद के अलावा।
3: आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह आप देखें ना मुतरम शाह साहब बहुत से तजिया करते हैं, लेकिन हम कह कह कह के कह कह के अपनी जुबानें भी थका ली हैं, अपने गले भी खुश कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है असर नहीं ना, इस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। और इसका एक ही इलाज है, मैं जो समझ रहा हूँ कि बेहतर जो इसकी दवाई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर कम्यून के अंदर कोई भी काम हो रहा, कम्यून के देखें जो अपने हमारे कैंडिडेट मुंतखब उनके प्राइवेट नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको ऑफिस वाला नंबर ही हमें चाहिए, वो भी नहीं उठाते। लोग कहते हैं जी आपकी खातर वोटें दी थी तो बंदे किधर है, तो हम कहते हैं जी फिर आप इस सफर तो आपने हमारी खातर दे दी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कारकर्दगी पे दें, जो बंदा कारकर्दगी दिखाए उसको आप वोट जरूर दें, और जो बंदा नहीं दिखाए आप उसको बिल्कुल वोट ना दें। और बेशक मैं आ जाऊं, बेशक आपके पास शाह साहब आ जाए, बेशक आपके पास राजा गफूर साहब आ जाए, आपने वोट नहीं देनी, आपने वोट उसी बंदे को देनी है। और यही देख लें आज माशाल्लाह अब अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी नवंबर तक तो एक साल हो जाएगा, तो अभी एक साल में कोई चीज मुझे किसी कमों से मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी काउंसलर ने या रीजन के बंदे ने या कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया है कम्युनिटी के लिए या कोई काम हो रहा है। या कोई ऐसी चीजें जो कि पाइपलाइन में है, किसी का वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ऐसी बातें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो हैं, जो हमारे नए कौंसलर बने थे, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड को और मजबूत करने के लिए मैदान में आए और अपने मीडिया पे आकर लोगों को बताएं कि भाई ये काम हो रहे हैं, ये काम पाइपलाइन में, ये काम
1: मंजीव साहब, ये बात तो जज्बे की होती है। बेचारे मेहनत तो करते हो गए, फिर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो इनको पहले कहा जाता है सियासत में बंदे के पास टाइम नहीं, तो उसे सियासत में आना ही नहीं चाहिए।
3: देखिए जी, फैमिलीज के लिए टाइम जरूरी है, अपने काम के लिए टाइम जरूरी है, अपने दोस्तों के लिए टाइम जरूरी है, लेकिन अगर आपने सियासत में हिस्सा ले लिया है और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपका तल्लक है, तो फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपको उसके लिए टाइम निकालना, आप अपना एक प्रोग्राम बनाए, एक प्लान बनाए, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप उसमें से कह दें जी बस हमने 3 दिन जो है ना वो सियासत पे काम करना है, 4 दिन हमारे जो है ना फैमिली दोस्त है हमने उनके साथ गुजारे, तो फाइन। लेकिन 3 दिन जो है उसके अंदर कम अज कम इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं।
1: तो शाह साहब से पूछें, शाह साहब ये मीटिंगों में जाते हैं, ये मुफ्त जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं?
0: नहीं जी, मैं अपना मजीब कुरैशी साहब से भी एक सवाल करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। देखिए, उडनसा में आज उसमें यूलैंड में इनसम बनी हुई है जमातें, जहां जैसे यहां पर 70s-80s में कोपेनहेगन में होती थी इनसम, यानी कि आप अकेले हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आप जाके इकट्ठे बैठे और आपने जैसे लोगों से जो है वो बैठ के तो आप बात करें, खाना खाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ना वेस्ट आइन में कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोपेनहेगन में ऐसी चीज है, वो पैसे कहाँ गए वो बोलिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं था, क्या नाम है, वेंसा की तरफ से मैं इलेक्टेड था, इसके अंदर इंट्रोगेशन हुआ कोपेनहेगन के अंदर, तो वहां पे कुरैशी साहब के बड़े भाई भी थे, तो हमारे सामने बजट आता था कि कौन कौन सी तंजीमात हैं, किन किन को ये पैसे जो है वो मिलते हैं, और ये सारा कुछ जो था वो हमारे थ्रू हमारे से बहस करके तो वो लेके जाते थे। तो अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने देखना है कि ये चीजें कहाँ गई, ये पैसा सरमाया कहाँ लग रहा है, आखिर कोई ना कोई इसको उद्म्यूट कर रहा है, कोई ना कोई इससे फायदा ला रहा है, ले रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये है कि मैंने ये सोच रखा है कि छुट्टियों के बाद मैं इनको लेटर लिखूंगा और मैं ये जो है फलकित सिंह का ओम्बसमैन और जो कोपेनहेगन कम्यून है उससे मैं ये इंफॉर्मेशन मांगूंगा कि मुझे ये ऑफरली बताया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर जमाते हैं और कौन कौन से कल्चरल सोसाइटीज हैं जो किसी ना किसी बहाने में जो है वो फॉरनर्स के लिए कल्चर सिस्टम के लिए पैसा लेते हैं। तो इनको इनको जरा मुझे ये बताएं, और ये मेरा राइट है सियासतदान यहाँ पे, तो वो बताएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, और ये मैं लूंगा क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनके पास पोली होता है। मैं आपको बताऊं कि 1997-98 में तकरीबन 24-25 मिलियन करोड़ जो था सिर्फ ठिंगबिया के लिए गिना गया था। अब ये हिसाब लगा ले कि ठिंगबिया जो है उसके अंदर 63% जो है वो फॉरनर्स हैं और 37% जो है वो डेनिश हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, वहां पे जो पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है। शाह साहब,
1: बेसिक बात तो यही है ना कि जो कम्यूना में काउंसलर हजरात बैठे होते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वही माने जाते हैं ना।
0: अगर वो वहां डिबेट लेते हो, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मजीब साहब बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इदलान कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, अगर ये हिस्सा लेते हो, जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे साथ आके बात करें, हम इनसे सवाल करें कि भाई वो फलानी फलानी थी बात, वो उसके ऊपर आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, हम एक कल्चर फ्रेमिंग बनाना चाहते हैं, हम कहाँ अप्लाई करें, कौन से कितना हमें जो है वो बजट मिलेगा, किस तरीके से हम उसकी एक हिस्से और दूसरी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको कम्यून वालों ने देनी है, और अगर वो जो काउंसलर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो अपने अपने दोस्तों अहबाब में और अपनी फैमिलीज में ही वो ये सब कुछ अगर लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए कि ये सामने आनी चाहिए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये तो मजीब साहब को भी पता है और मुझे तो 100% पता है कि मैं इतने सालों से डेनिशर सियासत में हूँ, ये तो मुझे 100% यकीन है कि हर कम्यून के अंदर ऐसे बजट रखे जाते हैं जो मुख्तलिफ जो फॉरनर्स है उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनकी मीटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो इस पर कोई दो राय नहीं।
1: मुजीब साहब आपने शाह साहब की बातें सुनी, मुजीब साहब एक सिस्टम तो होना चाहिए। आज पुराने वक्तों की अगर आप बात देखें तो काउंसलर बड़े मेहनत करते थे, अब भी करते हैं, अब नहीं, ये नहीं कि अब नहीं करते, करते हैं सारे अपने अपने तरीकेकार से करते हैं, बाज का नजर आता है, बाज कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम नजर नहीं आता, बात तो वैसे आपकी रिकॉर्ड चलती रहती है, लेकिन मुजीब साहब नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पैदा हुए, उनको भी कानूनी राइट्स हैं, उन्हें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए, और चूंकि ये यहाँ पैदा हुए इनकी सोच जो है वो दूसरे बच्चों की जरा हमारी तरह तो सोच नहीं है, ये अपने आप को डैनिश समझते हैं, डैनिश शहरी समझते हैं, तो हकूक लेकर देना सियासतदानों का काम होता है, आप क्या कहेंगे?
3: मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ, जैसे मोहतरम शाह साहब ने कहा कि किसी ज़माने में इंसान हुआ करती थी, मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप है एजरा ग्रुप जो जिसका नाम है सीसा, और वो जो 67 इयर्स के बाद जो जो लोग हैं उनका उस अबव जो लोग हैं उस उनका ये एक ग्रुप है, और उसमें तकरीबन अगर नैरो ब्रो में देखा जाए तो ये खाली जो है फॉरनर्स लेडीज जेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के कोई वो 60 से ऊपर उनके मेम्बर हैं, वो हर ट्यूजडे को बैठते हैं काफी के लिए बातें करने के लिए, हर महीने में एक दफा वो या दो महीने में एक टूर लगाते हैं चुवाली का, या एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी और जगह का, ये पिछले दिनों बोनो को गए हुए थे ये बैरारूप में को म्यूजियम में, उनको बाहर लेके जाते हैं, फिर कभी कभी उनको खाने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनको कभी कभी फिल्म के लिए लेके जाते हैं, कभी कभी उनको थिएटर में लेके जाते हैं, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग्स तो है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे शाह साहब ने कहा है कि हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए जी ऐसी आप फ्रेंड बनाएं और ऐसे कामों के लिए वो चीज है और उसके लिए आपको आखिर उनको बजट मिलता है तो वो खाना भी देते हैं, काफी भी पेश करते हैं, फ्रूट भी देते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेके भी जाते हैं, तो ये पुलिया हर जगह मौजूद होता है, हर कमून में होता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे में वो बात आती है कि वो जो चुदराहट है ना हमारी वो हमारे में लेके डूब जाती है। अगर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इंसान की तरह को फ्रेंडिंग बनाए तो क्या होगा, पीछे दो बंदे खड़े हो जाएंगे, ना जी शाह साहब मुझसे क्यों बढ़ाते हैं, असि आप उन्हें बढ़ा लीजिए, शाह साहब की तरह मुस्बेर आ गए। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि हमारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मैं भी ये कहूंगा सबको कोपेनहेगन कमून वाले कोपेनहेगन में एल्बर्टसोन वाले अपनी अपनी एक ट्रेनिंग बनाएं और ट्रेनिंग बना के बैठने की जगह लें, आपस में बैठ के बातचीत किया करें, कानून को आपस में शेयर किया करें, अपनी दूसरी जो तरजीहात हैं उस पर बैठ के बात किया करें, तो ये एक हमारे लिए जरूरी है।
1: दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूँ, चूंकि आप खुद भी सियासतदान हैं लेकिन आप ज्यादा सियासत जो है वो डैनिश सियासत करते हैं, तो मुजीब साहब आप सियासतदान आपस में बैठना ही नहीं चाहते, पहले लोग सियासतदान सारे बैठते थे आपस में, ये बड़े लोग देखे ना कि ये सारे आपस में बैठते हैं, जो नीचे होते हैं उनको नहीं, ये आपस में इकट्ठा बैठे, ऐसे हालात बना देते हैं कि लोग एक दूसरे को जो है ना वो सियासी दुश्मन तसव्वुर करते हैं।
3: लेकिन मैं समझता हूँ कि नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे कौंसलर रीजन में लोग हैं, उनको मिनिस्टर की तरफ नहीं देखना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ, उनको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। बार पिछली दफा भी हम कितनी दफा कह चुके हैं कि कम से कम जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो ये अपना एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप में मतलब लोगों को शामिल करें, पढ़े लोगों लोगों को शामिल करें, उसमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, कोई कानून आता है उसके अंदर डाल दें। लेकिन जो मैं फ्रेनिंग की बात करूं, मैं बता रहा हूं कि वो फ्रेनिंग क्योंकि उस जो सिस्टम है उसका जो स्टूडेंट जो ग्रुप है ना उसका मैं उस सिलसिले में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको फंड भी मिल रहा है, उनको हर चीज मिल रही है और वो चला भी रहे हैं, और उनका मतलब के लोग जो है उसके अंदर आते हैं बैठते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे तनाई है और लोग जो मतलब के इस उम्र में चले जाते हैं वो चाहते हैं कि हम बैठे आपस में कोई बातचीत करें, कोई मुल्की हालात देखें, कोई वैसे बातचीत।
1: जी शाह साहब, इसको जरा आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, आखिर में कोई शाह साहब हाल भी होना चाहिए, हमारे पास 5 मिनट
0: जी, जी इसका हाल बस यही है कि लोग सामने आए और आकर खुलकर बात करें। ये जो मुजीब कुरैशी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखें कि हर फ्राइडे को वहाँ पे मुख्तलिफ फाइनिंग जो है, किसी का फ्राइडे को है, किसी का ट्यूसडे को है, किसी का वेडनेसडे को है, ओडेंसे के अंदर, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर, ये सारे बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है, वहां किसी में, जैसे मजीद प्रेजी साहब ने बोला, किसी में चौधराहट नहीं, सारे मुल्कों की, कोई टर्किश है, कोई मोरक्को का, कोई अल्जीरियन है, कोई अफ्रीका का, सब भाइयों की तरह है और खाना भी खा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, किसी के जुम्मे ये चीज है, वो कोई काफी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वियतनामीज भी है, सब इकट्ठे मिलके, और ये सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठे बैठते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके, तो उनमें काफी कन्वर्सेशन होती है।
1: कहीं अपने पाकिस्तानी सियासत में मुलव्वस तो नहीं हो गए
0: राजा साहब? उसके अंदर काउंसलर भी आगे बैठते हैं, जो वहां पे इलेक्टेड काउंसलर है ना, वो भी आगे बैठते हैं, वो भी उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई आगे मसाइल क्या है, आप बताएं, आप फलाने जगह
3: नाश्ता करते हैं, सारी बातचीत होती है।
0: तो अगर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा, कौन?
1: तो शाह साहब यहाँ आकर जो पाकिस्तान में मुजीब साहब बेहतर समझते हैं, जो जिनके लिए हम डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें आकर क्या देते हैं?
3: वो आपकी बात दूर है, लेकिन राज साहब देखे, मैं अभी जो सीसम की बात कर रहा था ना, उसका एक न्यारब्रो का ग्रुप है, एक उसका सूद है,
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप जाते हैं, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है,
3: और उसके बाद एक आमा का ग्रुप है, अभी अभी अगस्त के आखिर में एक नॉर्थ वेस्ट का ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं वहाँ, हालांकि आमा में और सूद में ज्यादा लोग नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप न्यारब्रो, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं, बैठते हैं मुख्तलिफ, लेकर सारे फार्मर और 67 से ऊपर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा दो से तीन घंटे का प्रोग्राम होता है वो, दो से तीन घंटे तो कम से कम लोग बाहर तो निकलते हैं ना, बाहर निकल के ये बड़ी जरूरी, घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको घरों में बैठ के बीमारियां लगती हैं, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप बाहर निकले। तो मेरा ख्याल है इस पर सबको काम करना चाहिए अपने अपने कम्यूनों के अंदर, और जो कम्यूनों के अंदर मुंतखब हुए हैं उनको थोड़ी सी अल्लाह ताला हदायत दे दे, और उनको पता होना चाहिए कि हमारी वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, वो कम अज कम इन चीजों के लिए अप्रिशिएट आगे आए और कहें जी आए 15-20 बंदे इकट्ठे हुए हैं, हमें फ्रेनिंग बनाते हैं, फिर उसमें आस्था से लोग बढ़ते जाएंगे, तो उसमें एक ही चीज होगी कि भाई चौधराहट किसी की नहीं है, ये सबकी फ्रेनिंग है, और सब आए बैठे काफी पिए बातें करें, दो तीन घंटे मखसूस हो हफ्ते में एक दिन, सबका दिल भी खुश हो जाए और सब अपना आके एक दूसरे के साथ बेशुमार चीजें शेयर कर सकते हैं, हम टेलीफोनों पर भी शेयर करते हैं, जब एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
1: बड़ी अच्छी तजवीज है शाह साहब, आप क्लोज कीजिएगा।
0: जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, एक्चुअली बात यह है कि इन सम का मतलब होता है कि जो आप बहुत ही समफोन में बिल्कुल माशरे में अकेले रह जाते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ सकते हैं और उनके साथ फंडिंग में मेंबर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है, ये कम्यून जो है, वो उसकी सपोर्ट करती है, उसके पैसे वो देते हैं, जितने ज्यादा मेंबर आपके बनेंगे उतने ज्यादा मेंबर लेडीज हों जेंट्स हों ये उनके लिए वो करते हैं। मसला भी यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने, जिनका मुझे इल्म है कि कई लोगों ने ऐसी फेनिक्स बनाकर वो पैसा अपने तीन चार बंदों में चौधराहट में बांट लेते हैं, और उसके बाद मसला जो है वो वहीं का वहीं रहता है, वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी जो है वो जंप करके इस तरह की चीज बनाए, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काउंसलर क्योंकि उन लोगों के अपने होते हैं वो उनको आगे नहीं आने देते, और इस तरह की फाइनिंग नहीं बन रही। लेकिन अब क्योंकि ये फेसबुक पे भी आ रहा है ये, तो ये इस चीज को डैलिश जो है सियासतदान वो भी ये चाहते हैं कि इंटरग्रेशन जो है ये स्टॉप हुई हुई है इन वांदा की तरफ से, इसको बहाल करना चाहिए, और ये इसको बहाल करने का यही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोनिक्स बनानी चाहिए जिसके अंदर डैलिश भी आए, दूसरे भी आए, अपने लोग भी आए। ठीक है आप उनका टेबल, आधा टेबल पर वो बैठे हैं, आधा टेबल पर आप बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़हनी तौर पे जैसे मजीब कैशी साहब ने कहा, आप बहुत अपने आप को हल्का और चुस्त महसूस करेंगे, और ये आपका सिलसिला बन जाता है। अब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि यहाँ से हम फोनियों के नाम पे पैसे लेके पीछे महल बनाए, इनको अब खत्म होना चाहिए। अब हमें यह काम करना चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें गालियां देने या बदवाएं देने की बजाय हमें यह कम अज कहें कि हमारे बड़ों ने हमें ये जो चीजें हैं, ये जो बयानात हैं, ये जो लॉज है, ये हमें बता कर गए थे, और इससे हम फायदा जो है उन्यूट हम कर सकते हैं। जी राजा साहब,
3: मैं एक चीज मेंशन करूंगा क्लोज करने से पहले, ये जो मैं सीसम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये क्या इनका रोग व्यू आते हैं, ये आके आपको कमून का बताते हैं जी, आप कमून के अंदर आपको क्या क्या सहूलियात हैं, آپ کیا کیا مدد لے سکتے ہیں. باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو میڈیسین میں کیسے ہے. یعنی کہ جو کام ہمارے کونسلروں کے ہیں وہ یہ آ کے کمون سے بندے بلوا کے باقاعدہ ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ ایسے ہے ایسے ایسے ہے, یہاں تک کہ آپ نے جو فل وقت دینا ہوتا ہے وہ کیسے بنانا ہے وہ کیسے کرنا ہے. یہ ساری انفارمیشن آ کے نا وہ ان گروپوں میں آ کے دیتے ہیں, جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو مزید معلومات ملتی ہے. تو ایسی چیزوں میں اور ایسی ٹریننگ میں حصہ لینے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اکتوبر کے بعد میں اگر ایک ایس ایف سے میری میٹنگ ہو جائے نیرو برو میں, جو نیرو برو کی ہماری کریس ہے, تو میں ان سے کوشش کروں گا کہ آپ ادھر نیرو برو کے اندر ایسی ایک کوئی انسان کو بنائیں کہ جس میں ہم کم از کم جو لوگ ہیں نا ان کو اکٹھا بٹھا سکیں اور اس کے اوپر مختلف چیزوں پہ بات کر سکیں. میں کوشش کروں گا کیونکہ آلریڈی یہاں پہ سیسم ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے زیادہ نہ بن سکے, لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. اور اس سے نقصان کوئی بھی نہیں ہے, بے شمار آپ کو معلومات.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वालेकुम शाह जी।
2: वालेकुम सलाम
1: शाह जी, क्या हाल है? ठीक हो?
2: ठीक, तुसी सुनाओ?
1: बस शाह जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। मैं के मैसेज भेजे से टैक्सी वाला केड़ा सी कार वाला
2: जी।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर अपनी टीम के साथ हाजिर है। तमाम मौसम अच्छा है, बादल भी छाए हुए हैं और ऑन द होल बारिश भी जो है वो साथ साथ लगी रहती है, ज़ोरदार बारिशें, चूँकि सावन का महीना जो है वो गस चलती शुरू होने वाला है। तो शाह साहब से हम बहुत सारी खबरें शेयर भी करते रहते हैं, वो भी सबके साथ शेयर करते हैं, हालात हाजरा पर तबसरा भी करते हैं। तो हम आपको अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब की तरफ लेकर चलते हैं। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फोर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके जितने लिस्टनर नाज़रीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौसम बहुत प्यारा है इस वक्त, 18-19 डिग्री गर्मी है और हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और कभी धूप कभी बादल, लेकिन जो पेश हुआ ही है कि मौसम जो है शाम को हो सकता है कि यहाँ पे बादल बरसे, लेकिन किस वक्त बरसे ये कोई भी नहीं जानता कि किस वक्त वो आएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि तूफान आने वाला है और जब वो थोड़ी सी हवा चलती है लेकिन तूफान नहीं आता। तो ये सब कुछ अल्लाह पे डिपेंड करता है कि कौन सा उसका दुनिया उसकी है, कैसा मौसम होता है। तो राजा साहब, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अब छुट्टियां जो हैं, काफी लोगों की छुट्टियां जो हैं कल से खत्म हो रही हैं, काफी बान हेमन जो है वो दोबारा खुल रहे हैं, तो काफी लोग जो है वो क्योंकि लोगों ने मुख्तलिफ टाइमों में छुट्टियां ली हुई हैं, कुछ छुट्टियां जो है वो कल मंडे को खत्म हो जाएंगी, लोग बान हेमन में बच्चे जाने शुरू हो जाएंगे, कुछ जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में खत्म होगी, कुछ स्कूल वगैरह जो है वो 3 या 5 अगस्त तक ये स्कूल वगैरह भी खुल जाएंगे। तो इस तरह फिर जो जिंदगी का एक पिया है वो दोबारा चल पड़ेगा। जी राजा साहब।
1: तो शाह साहब, सियासी पहिया कब चलेगा?
2: देखिए जी, इस वक्त तो दो सियासी पीए यहाँ पे गर्म है, एक डेनिश सियासी पीया और दूसरा जो है वो मैंगो सियासी पीया, और जो मैंगो सियासी पीया है वो तो 8 को यहाँ पे एल्बर्सलोन में दोबारा लगने जा रहा है और वो 8 अगस्त को, और उसके बाद एक जो है वो 14 अगस्त मनाई जा रही है, और इस तरीके से ये सारा सिलसिला जो है आगे तक चलेगा। और उसके
1: तो
2: बाद
1: मेरा सब सारा नाम जो है पाकिस्तान फेस्टिवल के नाम से आता है।
2: ये मैंगो जो है ये पाकिस्तान फेस्टिवल के नाम पे है, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी 14 अगस्त को मना रही है, और बाकी जो है वो मेरा ख्याल में 19 अगस्त को दोबारा जो है वो एक फेस्टिवल होने जा रहा है, तो उसका मुझे नहीं पता कि वो कौन कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर से गुजरा था कि 19 को भी एक मैंगो फेस्टिवल होगा।
1: तो 16 अगस्त भी मनाया जा रहा है
2: जी। अब लोग दिन मनाएंगे कोई 12 को, लेकिन जो ऑफिशियल जिनके अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, जिनका फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आ गया है, तो उनका तो हमें इल्म हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ अभी अंदाजे लगा रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना।
1: तो चलें शाह साहब, ऑफिशियल तो 14 अगस्त को पाकिस्तान एम्बेसी में होता है, परचम कुशाई होती है, तो वो तो हर साल की तरह उसी तरह होगा। तो शाह साहब, अब जो सियासी मौसम है ये बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, छुट्टियों पर चला गया है, खाली सोशल मीडिया पर जो है वो जिंदा रहना चाहते हैं सियासतदान।
2: जी, इस दफा सियासतदानों के बारे में जो है वो काफ़ी लेदे हो रही है, सिर्फ ये नहीं कि हम रेडियो पे ही उनसे बात करते हैं, बल्कि अब अवामुल नास जो है, आम लोग जो हैं वो भी बात कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे यंगस्टर्स का, क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का जो अहले ज़बान होने के बावजूद हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये चीजें जो हैं ये काफी गड़बड़ है। आप ये देखें कि 11 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर यहाँ पे 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपेनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना, और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स हो गए, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
1: ये
2: जो
1: है, जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
2: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजिश की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र
1: तो
2: के हैं।
1: इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है, वो भी तरबियत करें। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता तो बच्चे जो हैं वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
2: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाए, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान है, जो यहाँ कहते हैं जी और जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहाँ पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहाँ पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं नहीं, बाहर तो निकले अपने। ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
1: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की आपने बात की है, तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा, बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1,000-1,200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगहों पे चले जाएं, झूलों वाली जगहों पे जाएं, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नजर आती है? किसी मेले में चले जाएं, कोई आपको गुर्बत नजर आती है?
2: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का, ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने।
1: शाह साहब महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
2: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
1: तो
2: कर लेते थे।
1: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
2: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ी रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है, उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं, अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाए, आप जर्नलिस्ट हैं, बाहर निकल जाए, जाके बच्चों से पूछे आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की। वो ऐसी बातें आपको बताएंगे, तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पर जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाता है, तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है। वो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीज़ों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं, ड्रामा आपने लगाया देखा है, स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक कैसे, किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है।

0: जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब, जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर तवाज़ा होती है। तो शाह साहब, जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है, फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। शाह साहब, अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। शाह साहब, इसकी क्या वजह है?
1: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपना अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए, जो उनके जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, वहां पे एक डॉक्टर, एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25-30 लाख रुपया है। अब वो 25-30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर, इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो हैं और बस शोशा और कुछ। सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूं। हम लोग जब वहां जाते हैं, बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं, एक महीने के लिए हम जाते हैं, टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये है ये हमारी कोठी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पर यहाँ पे लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था।
0: लेकिन शाह साहब, आप जानना चाहेंगे, आपके शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रखकर रोशन करें। शाह साहब, क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
1: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ख्वाह वो पाकिस्तानी जमाते क्यों ना हो, ख्वाह वो पाकिस्तानी जमाते यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर वन समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90% बल्कि 90% 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं, तो उनको ये नहीं पता कि ओम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में या अपने मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनका उनको तजर्बे थी, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कहीं अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। ये याद रखें कि हमारे लोग मेजॉरिटी जो हैं वो दो मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वही काउंसलर हैं जो पाकिस्तान में काउंसलर होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात ये होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए

0: इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखें कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाव सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनी डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विज वहाँ उलेनी डॉक्टरेट में खुद जाना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्यों नहीं लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे।
1: तो शाह साहब, इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत डैनिश की सियासत से।
0: जी एक दफा फिर कहिएगा।
1: तो शाह साहब, इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा सहूलियात है, डैनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
0: जी डेनिश सियासत में सहूलियात हैं, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखें। सियासत जो है, आप जब आवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की, जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो हैं उनके लिए काम करते हैं। क्यों, वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं, आप उनके लिए काम करते हैं। तो ये चीजें जहाँ सियासत में
1: तो
0: दो
1: शाह
0: मुख्य
1: साहब, चलें
0: तत्व।
1: आते हैं ये टेक्सा की तरफ। ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुकी हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं, तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब, इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
0: ये बिल्कुल, ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए, रख लिए हैं ड्राइवर। और देखें, बेशक ये कानून की खिलाफ वर्दी है कि ये 34-35 हजार जो मिनिमम, जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लुजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है, ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पॉज भी होगा, आपको फोकस पॉज भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की जो 7 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहाँ उनका लैगर है, जहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉस किल्डे से 552 क्राउंड के अंदर जो है वो रॉस किल्डे से लुफ्तावन, कोपेनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया, और वो भी म्यूर चीज के अंदर। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है, अगर वो वोन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशीर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है, और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात
1: तो
0: करते
1: शाह साहब,
0: थे कि
1: इसका
0: खुदा
1: फायदा
0: रहा
1: मालकान को होगा या पब्लिक को होगा?
0: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को यह है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर यह है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ कर जाना चाहते हैं। आप पहली दो तीन आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैलियर कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1000 में, तो वो बंदा जो है वो 1000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाएं, फ्यून में चले जाएं, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो हैं, इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं। इन्होंने कहना जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1000 का टूर मिले 2000 का टूर मिले, नहीं
1: टूर का मसला नहीं है। शाह साहब हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ अगर आपके पास 5-6 मिनट है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटे करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% पक्ट है इसके ऊपर फॉरनर जो हैं वो डेनमार्क में हो जाएं या यूरोप में हो जाएं, खासकर डेनमार्क की चलो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपनहेगन की बात करते हैं तो कोपनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी है, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं, तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको, बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे, बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं, सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एसएम ग्रीन। एसएम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी चीज मंगवाई है जो हमारे अपने लोग हमारे जो है जिनको पता कोई सी बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी यही कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगले उन्होंने आपके यहाँ आके जबकि आप लोग को कि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फाइनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिशों ने डेनिश वॉनमैनों ने जो स्टैक थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यारी बात है 10 साल फिर आ गए, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है डेनिश, मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहाँ उनको देखा कि इसके पर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है ना स्टैग यूनियन कुछ भी नहीं है, वो उनको पता था कोई चीज नहीं इन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही, मैं खाली पक्षों की बात नहीं कर रहा इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं सबको ले लेता हूँ, अपना अपना सोचते थे अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे, जहरी बात है बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले उबर ने किया है अब वैसे में आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं, वो 1000 भी लेके आ सकते हैं। और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया। अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है। पहले ये छोड़ा गया मार्केट में, क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसा ही है। 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है। आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के, वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा। और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो उसके कहते हैं डैनिश में होनी, वो बात की बात है। अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कोई ऐसे नहीं है। लोगों वो जो बड़े बड़े जिनके जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में। और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास। उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है। उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डैनिश है, वो तकरीबन सारी वो ली है। उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं। और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है, वो मैटर नहीं है। लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना या साल तक। वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी, ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप। और मैं आपको ये भी बता दूं, SM ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है। ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है, ऐप और छाक साफिया कंग फेमस खालबो हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लैदा चीज है, ऐप एक लैदा चीज है। ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन उबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है। वो उबर ऐप जो है, जिसने बनाया था, जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी उबर, उसने वो बेच दिया था। उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो जो जो उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये उबर उबर से खरीद लिया, जिसने ऐप बनाया था। वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला नहीं सका था उस तरह पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था, उससे खरीद लिया था उन्होंने। गालिबन 2008-09 को ये अमेरिका में आया था, 2016-17 को ये खरीद लिया गया था, उसके बाद ये फिर बाहर निकले थे पूरी दुनिया में। ये तो ऊपर की कहानी होगी मुख्तसर। अब SM ग्रीन, मैंने फिर कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो सारा कुछ होमवर्क करके आए हैं, अब उन्होंने ये काम करना है। और यहाँ से आपकी जो बालादस्ती, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बालादस्ती जो थी हमारी वॉन मैंने की, वो आपकी इसको ले पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा वहां पर, जो ड्राइवर काम करेगा वो फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है। कस्टमरों की तो बात जो कहते थे शाह, वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बॉल्ट से भी। अब इनका मुकाबला होगा, वो एक लहदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमन आपके खत्म हो जाएंगे,
1: खत्म हो जाएंगे। शायद
2: वो वॉनमन, अच्छा, मैं
1: जाने एक, से पहले शाह अपना कह रहा हूँ, शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में।
2: जी मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शाक्षा नेऑन थी 2018 तक, तो अब तब वो, आपने ये पार्क का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमन पीछे थे, स्टैक फाइनिंग थी वॉनमनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसके मतलब था कि वो हर साल या 2 साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे। और तब ये हमारे पाकिस्तानी हम लोग रोते थे, यार सानू बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें, बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है रोड के ऊपर, गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें। इस टाइम 4300 गड्डी है तुहाडी कोपनहेगन दे विच, डैन टैक्सी उबर और ड्राइवर और आमा और ये बोल्ट और ये सारा कुछ ये अपना खिपना उन चक्सा मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है, और हर रोज मॉनिटरिंग होके आपकी 10-15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही है क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है। और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा, ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है आप यार, डनवारक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी ओवर 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन एसएमबी आ गई है, उसके नीचे लाके आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो पढ़े चला रहे हैं ठीक है उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया है, मैं देख के हैरान हो गया, मैं यार ये डेनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको। उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं, जो पहले थे चंद शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया। उस जो है जो जो जो दूसरी जो ओवरसीज हैं जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन योगोस्लावियन और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा अच्छे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं। लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है ना असी पिज्जा छटना है, यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी, डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का।
1: लेकिन इसमें ये भी शामिल करना था पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी,
2: वो तो चलो एक पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी, ये भी ठीक हो गया, चलो शाह साहब को मौका दें, उनको भी जाना होगा।
1: आपने शायद की बातें सुनी, उसने बड़े तफसील से बातें बताई, आप करते भी रहते हैं, आप क्या कहेंगे शाह साहब?
0: जी मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ शायद की बातें सुन के, कि मेरे बात अगर कोई यहाँ पे अपनी आवाम को कोई एजुकेट कर रहा है तो वो ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। देखें अब फ्यूचर क्या हो गया, हम फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर ये हो गया है कि जैसे ग्रीन टैक्सी ने ड्राइवर जिनको शौक है गाड़ी चलाने का उनको फिक्स पे कर दिया है। अब जब ये फिक्स पे हो गया तो इसमें ड्राइवर को वाकई ही बहुत ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वॉन में अपने आप को वॉनमैन समझते हैं लेकिन वो वॉनमैन नहीं है, उनको एक ट्रिलैल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है, जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस ट्रिलैल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो पुलिस को कह देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार लेते हैं, आपका ट्रिलैल से खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए, मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए, अब वो आ गए हैं, ये अमीर आदमी हैं, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया है, तो अब इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वोमेनशिप जो है जो तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही है, जर्मनी में चल रही है ऐसी, तो मैंने कहा वो उसके साथ उबर भी चल रही है, दूसरी कंपनियां भी चल रही है, तो आप ऐसा करें अपनी वॉनमैनशिप जो है पुरानी इसको रखें, और बकायदा कम्यून जैसे ह्यूमन नेवन देती थी ह्यूमन नेवन रहे, और वो जो है वो जो बिविलिंग्स है या वो टिलहाल से जो है वो इशू करें। लेकिन इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, हम लोग लालच में आए कि हम तो बहुत ज्यादा गाड़ियां रखेंगे उनको बेचेंगे और इस तरह, लेकिन आगे से उल्टी जूती जो है वो हमारे चेहरे में पड़ गया। मैं 50 साल से ऊपर मैंने टैक्सी चलाई है डेनमार्क के अंदर, और मैं तो इस चीज से दुखी हूं कि उस वक्त एक वॉनमैन जो था, एक कैब ऑनर जो था, उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी स्वाय अदालत के, उनका वो ग्रीन नंबर प्लेट कोई फ्यान नहीं कर सकता था। अब जो है ये सिर्फ जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो जिस वक्त दिल चाहे बंद कर दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये डैनिश कानून है। तो सबसे बड़ी शायद उन्होंने ये बात की कि जब उबर को इन्होंने कहा कि आप ऊल ऑडिट हैं और आप यहां से चले जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो उस वक्त उबर जो थी वो ड्राइवर के रंग में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी और उसके बाद दूसरी सेल्स के भी इसी तरीके से ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। ये इनकी मन पर इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक मिनिस्ट्री ने उसी दिन जिस दिन उबर को बैन किया गया उसका हाइपर प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल जो है को बंद किया, उसका जो डायरेक्टर था वो ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसने जॉब ले ली और वो उसको डायरेक्टर टिल्स्यून ट्रैफिक टिल्स्यून का जो था उसको अपना डायरेक्टर बना दिया गया। उसके नीचे ये सारे लॉस वोन और ये वाव वोन और ये सारी टैक्सी सेल्स के उसके नीचे आती थी। उसने कानून ही ऐसा बनाया, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 2019 से लेके 2023 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये देते हैं कि अगर आप वॉनमैनों को इस कानून के को पसंद नहीं तो आप आए हमारे साथ बात करें, हम इसको चेंज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें यह कानून ज्यादा मंजूर है क्योंकि अब हर कोई आदमी जो है वो टैक्सी ले सकता है। तो उसकी वजूहत जो है वो अब सामने आ गई है और अब बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे मैं तो अपने जितने पुराने वॉनमैन चल रहे हैं या नए यंगस्टर उनको ये कहूंगा कि खुदारा मत बने वॉनमैन, बल्कि आपको अगर फर्स्ट जॉब मिलती है शोफर मिलती है तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अप हुई नए कानून में आप फंस जाएंगे और वो आपकी टैक्सी भी जब्त कर लेंगे। बहुत सारे वॉनमैनों की यहाँ टैक्सी जब्त भी हुई है तो वो आपको लॉस होगा, आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। यहाँ आपने शौक पूरा करना है, जाए फिक्स तनख्वाह ले, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये जो ग्रीन टैक्सी आई है मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है।
1: और चलें शाह साहब आगे, हमें मियां मुनीर साहब बड़ा तजुर्बा है एक ब्रांच के, ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे सदर रहे, उनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियाँ साहब आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रहा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम,
0: आप वालेकुम सलाम को
3: सुनने वालों को। मेरे मोहतरम शाह साहब, मैं पिछले कोई आधा मिनट सुन रहा हूँ इनकी गुफ्तगू, आपका मौजू मैं समझ गया हूँ स्टार्ट में, दोबारा आप सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
1: शुक्रिया मियां साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा इस फील्ड में, नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फायदा होगा नुकसान होगा, ड्राइवर को फायदा होगा पब्लिक को फायदा होगा, शहर में ये गाड़ियां आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना दो दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियां साहब ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियां साहब आप बताएं हमारे सामने नाज़रीन को।
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ट्रांसपोर्ट टैक्सी बसेस जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, एक टांगा से लेकर और अब जो चीज़ों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न ज़माना हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा शाह साहब ने मैंने, कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी कंप्यूटर सारी चीजें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात अब कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है, कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है, कभी भी इतना क्या कहते हैं आप ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपेनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में। डेनमार्क में मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ, शाह साहब मेरे استاد بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں. میں نے پہلے دن سے ان کے ساتھ ٹیکسی شروع کی تھی, اور ٹیکسی میں یعنی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کتنی تبدیلیاں آئیں. بہرحال ان جو فکر کی ہم بات کریں گے, نیا جیسے ایک گروپ آیا اس کی بات کریں گے, تو پھر اس طرح ہی ہے کہ کوپن ہیگن میں کسی زمانے میں 1800 اور کبھی 2100 پھر 1800 پھر 1850 اس فکر میں بہت عرصہ ٹیکسیز رہیں. وہ ضرورت تھی, وہ کنٹرول تھا, وہ نظام تھا, یہ 13 کمونے جو ہیں ان کا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی آئی. آج سے کوئی 5-7 سال پہلے یہاں اوبر آئی, یا 4-5 سال پہلے. ڈینمارک کا ایک ٹیکسی سسٹم ہے, ایک قانون ہے, پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے اور آج بھی ہے. اب آج بھی ای یو سے ہٹ کر باقی لوگوں سے یا ملکوں سے ہٹ کر ڈینمارک کا ایک اپنا ٹیکسی لو ہے, جو اسے فالو کرے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. جو اسے فالو کرے گا وہی یہاں ٹیکسی چلا سکتا ہے, اور اس میں کچھ بالکل کنڈیشنز ہیں. لیکن جو ہوا یہ ہے, میں انفارچونیٹ کہوں گا, بدقسمتی سے اس میں جو تبدیلی آئی اس میں یہ مثلا اوبر یہاں آ گئی, بولٹ یہاں آ گئی, اب یہ نئی جو کمپنی آئی اس کی ہم بات کریں گے. اس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں. میں کل کی بات کرتا ہوں, میں نے کل میں یعنی کہ کل شام کو ٹیکسی سے میں نے چلائی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ روڈ پر جب انسان ہو اس فیلڈ کا ہو تو پھر وہ دیکھتا کہ کیا ہو رہا, یعنی کہ سروس کس طرح دی جا رہی ہے. اور شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ ہول واکس گیٹ اسے کہتے ہیں, کفی بکچا, اس کے سامنے میں ہوں, گزر رہا ہوں تو دو ترکی کھڑے ہیں ایک لائن میں. جناب اس طرح ہو گئی, نکل گئی منہ سے بات, کوئی بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے مجھے روک کر, تو ایک بندہ جو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا وہ مجھے کہتے ہیں قدش آپ لے جاؤ, اس لیے کہ وہ چھوٹا ٹور تھا. اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ جو چیزیں میں نے اس لیے مثال دی کہ اب وہ لوگ جو نہ سروس مائنڈ تھے نہ انہیں وہ اس قانون یا اس نظام کو سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں, اب وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں. افراتفری پھیل گئی ہے. جن لوگوں نے اسے ایز اے ایک بزنس, ایک اچھی انویسٹمنٹ کی تھی, ایک اچھا نظام بنایا تھا اس ملک کے اندر, ان چیزوں کو وائلیشن بھی کی جا رہی ہے, ان میں بہت سارا اپنا بھی وہ نقصان کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ یہاں کے پولیٹیشین نے, آپ بالکل بات کرتے رہے, میں سنتا رہا, میں بھی جانتا تھا, میرے پر ایک ذمہ داری بھی رہی. ہم نے دیکھا کہ یعنی کہ یہاں جس طریقے سے یہ دوسری کمپنیز آئی ہیں ان کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں. وہ پیپروں پر تو وہ پوری کر رہے ہیں جو یہاں کا وہ ہمارا ٹیکسی لو ہے, جس کے لیے ڈرائیور کے لیے کنڈیشنز ہیں اور وومین بننے کے لیے. لیکن ان سائڈ میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت ساری دو نمبری ہو رہی ہے, وائلیشن ہو رہی ہے, غلط ہو رہا. ڈرائیور سروس مین نہیں ہے موسٹ آف دیم, میں کہوں گا تھوڑے نہیں بہت سارے. ابھی ہم نے دیکھا روسکل فیسٹیول تھا, میں بھی فیلڈ میں تھا, کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر, پھر میں مثال اپنی دیتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا مجھ سے 11 لوگوں سے پہلے جا کر, تھوڑا سا پاج تھا, سٹک کے ساتھ چلتا تھا, پہلے 11 لوگوں نے اسے بٹھایا نہیں گاڑی کے اندر, اپنی ٹیکسی کے اندر, اس لیے کہ اس نے وہاں سے روسکل اسٹیشن پر جانا تھا جو لیس دین 100 کرون کا ٹور تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے وہ کہ جو بے ترتیبہ اور بغیر کوئی یعنی کہ سسٹم کو صحیح مینو میں وہ آرگنائز کرنے کی یا بنانے کی کوشش یا ایک سلسلہ تھا, اسے ہٹ کر چیزیں چلیں گی.
1: اب اس کا حل بتائیں.
3: اس کا حل یہ ہے کہ ان چیزوں میں یعنی کہ ہم تو اپنے کمپنی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, ٹیکس آف ایئر کا فیمس ہاؤس جو ہے اس کی تو ایک کنڈیشن ہے ابھی تک. ڈرائیور جو ہے ایک تو اتھارٹی کی طرف سے آپ کو لائسنس جو لینا ہے, پھر وہ جو ہمارا فیو کارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد شاہ صاحب بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, ہم خود ٹاکسا کے اندر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. जिसमें हर ड्राइवर को, और ड्राइवर ही पहले बनता कोई या वॉनमैन बनने से पहले भी सेम कंडीशन है कि वो यानी कि पहले टेस्ट देता है जिसमें जुबान का होता है, कम्युनिकेशन जरूरी है, हम डेनमार्क में रहते हैं, डेनिश आनी चाहिए, और दूसरा जो है वो उसे कोरस करवाया जाता है जिसे कि आपने किस तरह हैंडल करना है, सर्विस देनी है। ये तो थी वो, और मैं भी अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम यहाँ। अब मैं जो थोड़ा सा सुना आधा मिनट वो था शाह साहब वो ग्रीन MS जो है टैक्सी उसके बारे में बात कर रहे थे, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, एक नई चीज है वो जो आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ियां आ चुकी हैं रोड में। मैं पिछले दिन भी कहा था मेरी वर्कशॉप की सेकंड गली में उनकी गाड़ियां तकरीबन 250-300 गाड़ी पार्क है, पूरी तौर पर तैयार है, अभी उन्हें ड्राइवरों की कमी है, ड्राइवर वो अब पाइपलाइन में होंगे तो फिर ही वो आएंगे ना जो मतलब गाड़ी चलाएंगे उनकी, पर वो काफी कोशिश में आ जाएंगी, कोशिश उनकी बहुत सारी है कि, और उन्होंने तनखा वगैरह फिक्स और वो अच्छी अमाउंट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ सारा सिस्टम, लेकिन ओवरऑल ये क्या होगा। उबर का किसी को पता था आज से 20 साल पहले उबर शुरू हुई अमेरिका में, वो यूरोप में आ गई, इंग्लैंड में उसने यूरोप में सबसे पहले आए, आस्ता आस्ता फिर आज यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर मुल्क में चल रही है। उसके पीछे कौन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने सिस्टम को मार्केट को कैचर कर लिया, आस्ता आस्ता यानी कि होगा यही कि वो सारी सिस्टम को कैचर कर लेंगे, फिर वो सर्विस जो मैंने कह दी है पहले जो इस वक्त चल रही है, और फिर यानी कि वो मार्केट को कैचर करके फिर ना वो डिस्काउंट रहेगा ना वो सर्विस रहेगी, सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि कितनी गाड़ियां हैं और कितनी परसेंटेज वो लेंगे, जो आज वो लेट्स है 15% ले रहे हैं, कल को वही 25% लेंगे जो किसी और ने नहीं पे करनी, मैंने और आपने एज ए कस्टमर पे करनी है। इसी तरह एक बंदा जो वियतनाम का है जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है, उन्हें पता नहीं कि कहाँ क्या, उसे किसी ने आइडिया दिया है, उसने जाकर एक कंपनी से एक कोरियन कार खरीदी है जो डेनमार्क की टैक्सी का मतलब है कि कार साइज जो कंडीशन है वो भी जरूरी है वो पूरी करती है, वहां से उसने बहुत बड़ा फेयर लिया है, फिर वो सबसे पहले उसने शुरू ही दुनिया में कहीं और नहीं है ये ग्रीन टैक्सी, उसने एक आइडिया अपना बनाया कि यूरोप जो है उसके अंदर मैंने जाना, क्योंकि यूरोप का एक सिस्टम है, यहाँ एक जिस तरह क्या कहते हैं एक निज़ाम चलता है, निज़ाम जिंदगी चलता है जिसके जिसकी जरूरी जरूरियात है, उस मार्केट में उसने जाना। वो हॉलैंड पहले गया, वहां के कानून जो है उसे इजाजत नहीं मिली, तो उसने जाहिर प्रोफेशनल तरीके से उसने पढ़ा कि ये डेनमार्क की चीजें जो है ना पूरी कर सकता हूँ, यहाँ जरूरत भी शायद है, तो उसने डेनमार्क आकर अप्लाई किया, उसे इजाजत मिल गई है। अब वो टैक्सी जो यहाँ 600 टैक्सी की तैयारी में फिलहाल जहां तक मुझे पता है 400-350 गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी है, जिनमें से अभी तो चंदे की चल रही है, हमें पता आ जाएंगी वो भी रोड पर।
1: लेकिन मियां साहब ये कोपेनहेगन में होगी, पार्क कहाँ करेंगे?
3: पार्क जो टैक्सी पार्क होगी रोड पर नहीं चलेगी, वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा, इन्होंने चलना है टैक्सियां तो मतलब पार्क तो फिर यानी के थोड़ी देर के लिए वो घूमे फिर रहे हैं जैसे हम घूमे फिर रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, बुकिंग हो रही है, होता ही है। राय साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपेनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना मसलन लेट्स से 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती हैं, जिनमें से लेट्स है कि 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी जहाज और वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो اور ٹیکسی جو ہے وہ کسٹمر کے بغیر اگر خالی چلتی ہو تو نقصان ہی نقصان ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں.
1: میاں صاحب یہ تو کاروباری بات ہوگی نا, لیکن اس نے دائیں بائیں مڑنا بھی ہے تو باقی ٹریفک بھی ہوگی, ٹریفک کے مسائل کیسے ہوں گے؟
3: دیکھیں ٹریفک کے مسائل تو پھر جسے ہم کہتے تھے کہ کوپن ہیگن ایک بہت خوبصورت شہر ہے, اس میں وہ لندن پیرس کی طرح باقی ملکوں کی طرح ٹریفک نہیں ہوتی یہاں, یعنی کہ بڑا ایک سسٹم بڑا مطلب ایزی چل رہا ہے, ماحولیات ساری چیزیں بڑا کنٹرول ہے, تو وہ تو چیزیں پھر ظاہر ہے ٹریفک میں نہیں رہیں گی. بیزی آور میں تو بہت زیادہ اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو یہ چیز
1: چلے میاں صاحب آپ کا ورژن آ گیا, شاید آپ نے باتیں سنی میاں صاحب کی, شاہ صاحب کی بھی, شاہ صاحب کی بھی طرح چلیں گے کلوز کریں گے بعد میں وہ, تو شاید آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی باتوں کو, کوئی اور کیا اضافہ کریں گے آپ؟
2: راجہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا مجھے سوال ایک سمجھ آیا تھوڑا سا میری بھی ذہن میں, کہ آپ نے کہا پارکنگ کہاں ہوگی, وہ چھوڑو میں اس کو ایسے لے لیتا ہوں. ایوزو ہولمن میں جہاں پر میاں صاحب کا دفتر ہے اس کے قریب ہی کنیل ہولمن ہے, ادھر ہے ان کا بہت بڑا جہاں پر ان کی 600, 400 یا 350 گاڑیاں کھڑی ہیں, اس سے زیادہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں, اور اس کے بعد جو انہوں نے جو پرائیویٹ پارکنگ جو ان کی اپنی ہے وہی ادھر بھی 200-300 گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے پرائیویٹ, اندر ٹیکسی ہیں, اور جیسے گرل کے اندر جو پورٹ بنا ہوا ہے جیسے پورٹ کھلتا ہے اس کے بعد ٹیکسی ان کی پارک ہیں, ادھر پارک کرنی ہے آپ نے ٹیکسی. جب میں نے انفارمیشن لی تھی جس ڈرائیور نے کام ختم کرنا ہے گاڑی ادھر پارک کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی گاڑی وہاں سے اگر لایا ہوگا چلا کے لے جانی ہے, اور سٹارٹ میں یہ بھی ہے کہ اف دا آؤٹ ہیل اگر ان کے پاس ڈرائیور نہیں ہے ابھی گاڑی میں تو وہ گاڑی اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے, وہ اس کا پہلے اسے پوچھنا ہوگا گھر کدھر ہے کس نوعیت کا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی اور سٹارٹ میں جو ایک گاڑی کے اوپر ایک شوفیر ہے تو وہ پھر گاڑی گھر لے کے جا سکتا ہے اور گاڑی کو جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ میاں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ان کی باتوں سے میں متفق ہوں, ظاہری بات ہے وہ اس برانچ سے 40-45 سالوں سے منسلک ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ آپ کی میں پھر بتاؤں گا 66 نے ان کے ختم ہونے کے بعد ہوئی ہیں, یا اس کو ختم کروایا گیا ہے جیسے بھی کروایا گیا ہے, اگر وہ ختم نہ ہوتا تو آج اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بھی بتاتے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے بتاتے تھے کہ یار وان مین تھے وہ بھی, تو وہ بتاتے تھے کہ 1600 گاڑیاں ہیں, 1800 گاڑیاں ہیں, 1700 ہیں, کبھی زیادہ سے زیادہ 2100 ہوئی تو تب, اور ان کے کنٹرول میں اسی لیے تھا کہ آپ کی 13 کمونیں تھیں کہ اس طرح کا جو ہے جو وہ گند نہ مچ جائے. چھوٹا سا شہر ہے, چھوٹا سا ملک ہے, اور آج دیکھ لیں 4000 کے قریب گاڑیاں ہیں اس وقت, اور اس میں اور گاڑیاں بھی ہونے جا رہی ہیں, اور یہ سارا خود کچھ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. کیسے کیا ہے یہ ابھی شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ تیار کر لیا تھا, جو بندے تھے اس کے اندر ڈینش بش انوالو, جیسے بتایا کہ ہر ملک میں ہر چیز ہوتی ہے, یہاں پر جو ہے مل بیٹھ کے پیار محبت سے غائسہ کرا کے دو دو پانچ پانچ لاکھ کے غائسے بھی ہوتے ہیں, وہ غائسے اس طرح کے کروا کے پیار محبت کے اندر سارے کام لیے جاتے ہیں, اور اوبر نے ایسے ہی پیسہ پھینکا ہے. میری بات کو آپ ذرا کہتے ہیں فالو کر جائیں, اور اسی طرح جو دوسری آئی ہے یہ بھی ایسی کر رہے ہیں, پیار محبت کے ساتھ آپ بڑی چیزیں کروا لیتے ہیں, اس میں یہ ہمارے ملکوں کی طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہی ہو جائے ہر چیز میں, تو وہ پھر آپ کا جو ہے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں پیار محبت کے ساتھ جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پیار محبت کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا, اور اس نے یہ مناپلی ختم کرنی تھی. ڈینش کچھ لوگ تھے, کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ وون مین کی جو ہے نا فارنروں کے ہاتھ سے ختم کی جائے. اس میں ہم مانیں وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کروا کے, ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ باہر سے گاڑیاں لے کے آئیں, کبھی اوبر آ گئی کبھی آ گئی, اس کی تو اچھا بھلا چل رہا تھا, اس کی متحمل نہیں تھی. انہوں نے دیکھا یار اتنے 97% 98% فارنر ہو گئے ہیں, 80-90% وومن سارے فارنر ہیں, اور یہ پیسہ سارا ان کو جا رہا ہے, اس کی تکلیف تھی. ڈنمارک میں خاص کر میں نے یہ دیکھا ہے, دوسرے یورپ کے ملکوں کی بنسبت میری یہ رائے ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, یہاں پر وہ ایک لمٹ تک کسی فارنر کو امیر ہونے کی اجازت دیتے ہیں, اور یہ ان کا سسٹم ہے, وہ پھر سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے وہ اس کے مطابق وہ پھر وہ سسٹم جو ہے نا اس کو کرتا ہے فالو, کیونکہ یہ آپ کو آگے
1: تو شاید کیا یہ آپ لوگوں کے سسٹم میں بھی کوئی میر جعفر میر صادق تھے؟
2: یہ تو میاں صاحب بتائیں, یہ تو میاں صاحب بتائیں گے بڑے ہیں.
3: میں رائے صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے برخوردار شاہد بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں شاہ صاحب کی میں تو ابھی اٹھا ہی ہوں, جو سچی بات ہے یہ ساتھ میں گرم پانی پی رہا ہوں, آپ نے میسج لکھا تو ہم حاضر ہو گئے. شاہد آپ کو بہت بہت سلام.
2: جی میاں صاحب
3: میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, آپ کا تجزیہ, آپ کے جذبات, آپ کی سوچ میں بہت زیادہ اس کی قدر کرتا ہوں. آپ ایک دلیر انسان ہو, ہمیشہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہو, لوجک اور پڑھے لکھے انسان ہو. میرے تو آپ بیٹے بھی ہو.
1: ہمارے شاہ صاحب اس دل ہیں؟
3: نہیں نہیں نہیں, شاہ صاحب تو ہمارے بڑے ہیں, ایسے نہ کریں. یہ جو نا یہ جو سکھ ساک آپ نہ کیا کریں. میں اس برخردار کی شاہ صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں, وہ کہتے بھی ہوتے ہیں
2: راجہ صاحب میاں صاحب کی جو گود نہیں ہے اس کے اوپر میں انہوں نے مجھے کھلایا ہوا ہے, پوچھ لیں.
3: یہ مجھے فخر ہے, اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاہد ملتے تو ہم اپنی جگہ ہیں, لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ شاہد جو ہے یہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے, یہ میری گود میں یہ کھیلا ہے. گلیر سکس وائے میرے انکل اور ان کے والد, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. میرے وہ بڑے بھی ہیں اور ہم نے اکٹھے اس فیلڈ میں کام کیا, شاہ صاحب بھی جانتے ہیں.
1: مجھے پتا چلا یہ اتنا سمجھدار کیوں ہے.
3: بس مجھے وہ پیروں سے, میرے پیر ہیں شاہ صاحب, ان سے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملا سارا کچھ. شاہد سب سے پہلے تو اس کے ماں باپ جو اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, اور اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہم جیسے جو درمیان میں آپ جیسوں کے ساتھ لڑکے رہے تو پھر پیچھے رہ گئے, تو بات تو کچھ اس طرح ہی ہے. شاہد آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور راجہ صاحب نے دو تین دفعہ پارک کی بات کی ہے. اب راجہ صاحب شارٹ یہ کرتا ہوں کہ جو ڈین ٹیکسی ہے یہ گرین والی, ان کی تقریباً 1600 گاڑی ہو چکی ہے ڈینمارک میں اس وقت, پلس اس سے بھی پلس ہے میرے خیال میں, میں آخری فکر نہیں جانتا. لیکن آپ نے دیکھا ان کی پارکنگ کی پرابلم نہیں ہے, بات پارکنگ کی نہیں ہے, بات ٹیکسی سسٹم کی ہے. ٹیکسی ایک ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کے لیے ضرورت ہے. اس کے اندر جو بزنس ہو رہا تھا, جو نظام چل رہا تھا, جو سروس دی جا رہی تھی, جس کے لیے کچھ کنڈیشن تھی, ان کو کس طرح وائلیشن اس میں ہوئی ہے, اور باہر سے آ کر کمپنیاں انہوں نے اس سسٹم کو, اس بزنس کو کیچر کر لیا ہے. پہلے ایک اوبر تھا, پھر ایک بولٹ تھا, اب ایک تیسرا فار ایسٹ سے آ کر ایک کمپنی جو ہے اس نے یہاں ڈیرے ڈال لی. یہ ہے ہم لوکلز کے لیے, ہمارے لیے ایک پرابلم. اور شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اب میں کل کچھ لوگوں کے درمیان تھا جو جن کا 3-4 کا کیوسک کے ساتھ تعلق تھا. آپ کو پتا کیا حال ہے ان کا؟ یعنی کہ بہت برا حال ہے. کیوں کہ یہ ساری ٹھیک ہے اوپن. میں کہتا ہوں شاید کہ جو چیز پبلک کے لیے ایزی ہو, پبلک کے لیے اچھی ہو, وہی ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں پر کنڈیشن لگا دیں, دوسروں کو آپ ریلیف دے دیں, یا نظام اس طرح بنا دیں کہ وہ ان کا سارا کچھ جو ہے وہ جاتا رہے اور دوسرے سارا کچھ لوٹ کر لے جائیں. میں یہ سوچ ہے. جی
1: میاں صاحب آپ نے بات کی, شاہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب, میاں صاحب آپ کی سرپرستی میں, آپ کی گود سے نکلے, میاں صاحب کی سرپرستی میں شاید گود سے نکلے, تو یہ چیزیں تو بڑی اچھی ہیں. یہ 40-35 سال کا جو تجربہ, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے جب کسی انسان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, اس نے 30-40 سال پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی ہوتی ہیں. نئے آنے والوں نے تو پھر وہ 30-40 سال لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو شاہ صاحب, ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
4: دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو سچی انفارمیشن دوں کہ جب میاں منیر ڈنمارک میں آیا تھا, یہ بچہ تھا, اور اس نے اپنے بچپن میں ڈنمارک کی سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھا, اور بڑے اس ہم فون کو اس نے سمجھنا اور سننے کے لیے اس نے ہر آدمی جہاں پہ بھی یہ ایکٹیو ہوا, سوسائٹی ہو یا ڈینش پروگرام ہو, وہاں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو یہ اس کی اپنی قابلیت ہے اور اس نے سیکھا ہے, اور یہ سیکھنے سے آج یہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے. اب میں شاید کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. شاید देखे, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त 70s के अंदर यह था कि डेनिश लॉ यह था कि तुम एक है मेदर इन वन मैन स्केल, एक है मेदर टू बिगिनिंग। अच्छा, ये पूरे डेनमार्क का कानून था जिसके अंदर खाई ओल्सन ने उस वक्त सिग्नेचर किए हुए थे, और ये लॉ जो था वो ये ट्रैफिक मिनिस्ट्री की तरफ से था। लेकिन पूरे डेनमार्क के अंदर आप यूलैंड में चले जाए, वहां पे भी दो दो वनमैनों के पास गाड़ियां थी, लेकिन कोपेनहेगन के अंदर जो थी, मियां मनीष साहब को पता है कि यहाँ पे टाक्सा मोटर में, दूसरी जगह कोडन में, आगे पीछे एक एक वनमैन के पास 50-50 गाड़ियां भी थी, 40-40 30-30 गाड़ियां भी थी। तो यहाँ पे मोनोपोली थी, और ये चीज वो वाजिया कर रही है कि यहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो, जैसे आपने कहा कि राइजे ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप यंग हैं, मियां मनीर हैं, ऐसे और चंद एक दोस्त मिलके इन सारी चीजों को, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं, आप लोग आगे जाके एक्टिव हो, तो आज भी ये कानून जो है कोपेनहेगन टाक्सा जो इस वक्त बची हुई संस्केप है इस उग्र और दूसरों से, आप लोग आज भी ये मसला पुट आप कर सकते हैं कि ये जो लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉ फोर्सलेस जो है, इसको डिमोलिश किया जाए और आइन के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे वापस टैक्सी जो ह्यूमन नेवन है उसको लेके आए, ताकि यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबेसलूस होंगे, जो आजकल टैक्सी चला रहे हैं और ये जो एनसेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो क्राइम चल रहा है, ये इसको रोकने के लिए आज अगर आप इकट्ठे ना हुए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि उबर भी अनसेट करेगी, बोल्ट भी अनसेट करेगी, और ये जो ऑलरेडी है या कोई एक और कंपनी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि 200 करोड़ का टूर कोपेनहेगन कूलबैन गॉन या कहीं से भी 200 का टूर जो है मिलर चीज के अंदर आप लेके लुफ्तामन जाएंगे, और ड्राइवर बेचारे का क्या असर हो रहा है। तो ये चीजें जो है, एक ड्राइवर जो है वो 30,000 में से टैक्स दे के, हर एक चीज दे के, तो वो 20-22,000 या 20,000 करोड़ में वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसने सैलरी लेके चलना है। तो इसके ऊपर ये बेहतर है कि आप लोग स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, नए कानून के मुताबिक आप लोग जो है वो बाहर निकल के किसी किस्म की हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इकट्ठे होके कहीं समलिंग करके कहीं आप इकट्ठे हो जाए, वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर्स लेके आप फलके थिंग के जो उम्बसमैन है उनको, और फलके थिंग की जो उल्वेल है, आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है, जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या वोनमैन है, हमें क्या तकलीफ आता है, और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादा हो रही है डेनमार्क में, उसकी वजूहत क्या है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, लेकिन क्या हम
1: पेंशन वाला 8,500 पे गुजारा कर सकता है, तो ये 30,000 पे गुजारा नहीं होगा।
4: देखे जी, जब पेंशन वाला ना, उसको 8,000 के साथ उसको बोली यूज से मिलता है, उसको बड़ा कुछ मिलता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे। तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4,000 करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है, रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं मियां साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है, ये पेंशनर है, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूं, इससे असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर, बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं। तो लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें, आप अच्छाई से रहे और सच बोलें, तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: प्रोग्राम मियां साहब खत्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें, तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, आ रहे हैं, एक आज कल में काफी प्रोग्राम होंगे, उसके बाद 14 अगस्त
4: भी आ रहा
1: है, इस पर भी बात करेंगे, नए जनरल्स बने, 4-स्टार बने, कुछ सुपर सीट, इस पर भी बात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे, आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी, दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियां साहब,
5: मैं असल में जो सच्ची बात है, आप मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा, आपका मैसेज आया।
1: तो मियां साहब आप क्यों परेशानी में लेटे हैं, अब आप काम सदर नहीं रहे इसलिए?
5: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है तो जोर के फौरन बाद, तो मैंने वहां पहुंचना है। अभी कोई तैयारी नहीं, अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया। अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया, फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं बड़ा शॉर्ट सा, मैं माजरत के साथ, उसके बाद बात हो सकती है, लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी, शाहिद ने भी काफी बात कर दी, मैंने भी कर दी, ये सिलसिला इस तरह चलना। वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमंस न्यून का जो कंट्रोल था, जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था, ड्राइवर को चेक कर करने का, बैलेंस रखने का, वो अब टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब 2 नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, तरह तरह का तरीकाकार अपना लिया गया, जबान आती नहीं है, आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें, यानी के तादाद से टैक्सीज आ गई हैं। ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही, मैं 2-3 में मैं गया हूँ और 6 जो अब तक हो चुके हैं और 2-3 अभी और होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन मैंगों की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में, यानी कि एक बहुत बड़ी, ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा तलक है, वहाँ के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है। तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं, जिधर भी हुआ, ब्रॉन्बी हो या अर्बसनुंड हो, बेलरोप हो, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। मैं भी उन लोगों में हूँ कि इंटरटेनमेंट हो, सोशल गैदरिंग हो, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए, एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात, हालात, बात हो, तो ये एक अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है, देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह
1: मुंडली का हुकूमत बनाने जा रही है।
5: देखिए वो मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से, और जो सफर कर रहे हैं हर जगह, जो मुश्किल में है, मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ पिछले 40-45 साल से, वो ही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है, आपको भी पता, आप इन्वाइट भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम तरीके कश्मीर जो है वो दिन मनाने जा रहे हैं। ये आपको पता कि इस दिन स्टेटस जो है हिंदुस्तान ने 370 जो है वो चेंज कर दिया, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह कल फाइनल होगा कि किस जगह वो मेरी वर्कशॉप में होगा या कहीं किसी और जगह जो है वो इंशाल्लाह एक हम अपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जगेती और हिंदुस्तान की जो करतूतें हरकतें जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं उन पर बात करने के लिए और अपना मैसेज देने के लिए इंशाल्लाह एक गैदरिंग होगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, बाकी चीजें अगर इजाजत है तो मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह यौम आजादी का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं, बैसी में प्रोग्राम होगा मुझे पता है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी कर रही है, स्कॉलोन जो मीटअप हुआ है 9 से 13 जो जगह है उसे, वहाँ हम बहुत बड़ी गैदरिंग जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, जिसमें इंटरटेनमेंट भी होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप सब होंगे, तो हम मिलकर अपने प्यारे वतन का जो जश्न आजादी का दिन है वो इंशाल्लाह हम मनाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ने आपको पता हमेशा अपना मरकजी किरदार अदा किया है, तो तैयारी उसकी सारी हो चुकी है, मेहमान जो है वो पाकिस्तान में वो भी तैयारी में है, और यहाँ हम आपकी दुआओं से आपके
1: सामने हॉल में मनाएंगे या खुली जगह?
5: नहीं जी, हमने इस वक्त जो है यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वेदर और सारी चीजें जो है वो, और उस वहाँ कुछ कंडीशंस भी है, हम हॉल में मनाने जा रहे हैं। वो हॉल जो है वो तकरीबन 1000-1200 बंदे का हॉल है और वो हमने भी बुक करवाया हुआ था, तो अब हमने, हमारी मीटिंग थी, हमारे सदर साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले आए हफ्ता पहले,
3: کل ہماری فائنل میٹنگ تھی تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسکاٹلینڈ میں جو حال ہے اس میں کریں گے, اور آپ لوگوں کے تعاون اور اپنے اپنے پیارے وطن کے جذبات میں, پیار محبت میں, ملی نظم میں, اللہ تعالیٰ کا نام, پاکستان سے مہمان, تازہ ترین ساری جو صورت حال ہے, اور ایک بہترین قسم کا وہاں ڈنر بھی ہوگا, اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان سے کوئی سنگر جو ہے اچھے وہ آ رہے ہیں, کوالی

0: तो ये सारे प्रोग्राम तो हमारे हैं ना अपने, ये एक और तरह के हैं। पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो, मैं क्या कहता हूँ, मैं वो नहीं कहूंगा शाह साहब ने कल सुना था इस तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुआशरे में जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ की सूरत हाल
1: तो
0: से
1: मियां
0: देखते
1: साहब
0: हैं तो
1: मेहमान खसूसी जो डिसाइड हुए या नहीं?
0: जी बिल्कुल हो गया, मेहमान खुसूसी डिसाइड है। आपको पता चल जाएगा अभी हम सोशल मीडिया पर, तो वो तो शाह साहब ने कह दिया, आपने हमेशा तावन किया, आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया, मेरे अपने जहन में नहीं था अभी, तो अभी टाइम तो बहुत है। हम सारी डिटेल जो है सोशल मीडिया पर भी
1: मियां साहब
0: आएंगी
1: आपको तो मौका मिलता है, आप हमारे नौजवान सियासतदान हैं।
0: जी, आपने हमेशा मौका दिया और हम इसका भरपूर शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपना हक भी समझते हैं, और आप, हम सब मिलकर एक दूसरे का हिस्सा है। और इसी तरह पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, डेनमार्क हो, यहाँ का मुआशरा हो, अभी हमने टैक्सी पर आप इतना टाइम दिया है,
1: मियाँ
0: मतलब
1: साहब आपने एक
0: सरकार
1: बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने?
0: देखें 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा। अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब, वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। और ये भी
1: चले मियाँ
0: डिटेल
1: साहब
0: की
1: आपका बहुत शुक्रिया, शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे?
0: मैं इजाजत चाहता हूँ अब, सॉरी मैं सुनूंगा आपको, लेकिन मैं अब बात नहीं करूंगा, अभी
1: चलें
0: मैं
1: चलें
0: अंदर
1: ठीक है
0: बैठकर
1: मियाँ साहब,
0: नाश्ता
1: बड़े
0: करूँ।
1: आपका मौकफ आ गया मियाँ साहब।
0: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद शाह
2: आमीन
0: साहब और आपको और
2: आमीन।
0: सब इसको बहुत
1: शायद आखिरी
0: बहुत
1: बात करें फिर शाह साहब, आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
2: जी। अपना राजा साहब, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी जी
2: जी क्या सवाल था आपका, मेरे जहन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं।
2: नहीं, मैं थका नहीं, मैं मियाँ साहब की बातें सुन के मजबूज हो रहा था, तो जारी बात, बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं मजबूज हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया। फिर आप सवाल करें मुझसे।
1: आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई हमने सब चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी। जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का, वो ये था चाकसा वॉनमैन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है,
1: हबस
2: तो
1: मार्केट
2: इसे,
1: की
2: हाँ, मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो कि उन्होंने बैठा दी है, और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं। तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है एज ए कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन। फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा
1: शायद
2: फॉरनर थे।
1: शायद दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
2: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे, और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है, ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को आप बात तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सगे। तो आपने अपनी ही छाछा ने उनको तबाह किया, खुद ही अपने पैरों से करोड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में। और वोन मनी जो अभिषेक साहब ने बताया कि डेनिश लोग, उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना, 60 साल पहले, कि दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं बन सकते। जब फॉरनर आने शुरू हो गए, तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वोनमैन थे, जो तकाय से लेके नैरो पोर्ट तक, उससे लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को, और मेरी ये सारे वोनमैन डेनिश थे, जिनकी 40 40 गाड़ियां, 30 30 गाड़ियां, और टक्सन मोटर होती थी उसके अंदर भी, वाले बन मुझे नाम भूल गया इस वोनमैन का डेनिश का, उसकी भी 60 गाड़ियां 65 गाड़ियां होती थी और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, जब हमने कोई स्टैक

0: यानी कि जो ताकतवर, हमने कोई ऐसी फ्रेमिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपका आपने बेचारे पैसे देते हैं, और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है, और ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनके इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं ना स्कैट होल, इनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है, और वो वकील ढूंढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरनर फोनमैन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर दूर रहे हैं, तो ये फिर इसको आपको हमेशा आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाएं। ये अपने मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे अपने मारे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के, किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े, हम पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं, ये तो बात ढकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे, या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे? 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया है, हमारे इदारों को किस काम में लगा दिया इन इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं उसका सवाल का जवाब दे देता हूँ, आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से, अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, हर 4-5 साल बाद, अभी भाई साहब उनके हैं वो वजीर आजम है पिछले 3-4 साल से, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देख लें, ये यूरोप से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है, आप जाके देख लें, आपको सारी फिगर मिल जाएंगे अब गूगल में, एशिया की, एशिया में पहले तो जंग का बहाना था, ये नहीं जंग का बहाना है, जंग 3-4 माह पहले शुरू हुई, जंग से पहले भी आपके तेल के यही हालात थे, आप तेल से लेके आप डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपये की कदर देख लें, सारा कुछ ही देख लें, इसको महंगाई कहते हैं, पाकिस्तान में जाएं जाके रह के जाके देखेंगे आप, यहाँ से करोन लेके जाएंगे आपका 1,000 करोन जो है वो कैसे खत्म होता है, जो रुपए में 40-50 हजार या 60 हजार, वो एक दिन में या 2 दिन में खत्म आपका हो जाएगा, इतनी सख्त महंगाई है, और लोग वहां पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो कोई जानता है, आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले, मकान बेचने वाले, कोठियां बेचने वाले, ये स्टॉक है, बिल्कुल हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका अल्लाह हाफिज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी सी एन ए जी खुश हैं, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह
1: चले
0: अल्लाह
1: आपका
0: वारिस।
1: मौक़ आ गया शाह साहब, शायद ने कह दिया है कि जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ़ करता है, रशिया भी तारीफ़ करता है, अमेरिका भी तारीफ़ करता है, ईरान भी तारीफ़ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज़ भी करें।
2: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पर रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 4.5 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 4.5 करोड़ उसने कैश पैसे दिए। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं, क्या हमारे कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस वक्त का वो डेनमार्क आया अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किससे पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किससे पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8-9% लोग ऐसे होंगे जिन जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके। यहाँ तो जो मिलियार्ड अगर 10-12-12-20-20-40-40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्यूनों को, मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेसलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रेजा रीजन है क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात 20-20 घंटे 22-22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नलायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डैनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का, ये फलाना गुजरात का, ये फलाना पिंडी का, इसकी मदद नहीं, ये करनी है वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस से लेते थे तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पर बाय बाय, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है ये हमने यहाँ हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दे। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाए और ये सिग्नेचर कर दे तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आईन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी क्योंकि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा है मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊपर को बैन किया तो फिर किस तरीके से सांसददान सुप्रीम कोर्ट को के लॉ को वायोलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए, जब तक आपके पास भविष्य नहीं आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि यंगस्टर्स आए हमसे बात करें, हम उनको भविष्य देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखे ये आइन है और ये लॉ फौसले है और ये फौसले है, आप लॉ फौसले को आज भी खत्म कर सकते हैं लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे भी खड़े हो सकते हैं तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ڈرائیوروں کے مسائل. اب ایک آدمی کو ٹور نہیں ملتا تو وہ تو اپنی گاڑی چھوڑ کے وہ کہے گا کہ میں تو یہ جا کے جو 30,000 والی ہے جب فکس ہو جاتا ہوں تو مجھے تو 30,000 32,000 یہاں سے ملے گا, تو چلو میں اپنی فیملی کو تو سپورٹ کر رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے, آپ کو ایک چیز ذہن نشین کرنی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے تو ہمیں اس ملک کی جو قانونی ہولز ہیں جو یہاں کے, اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, وکیلوں کی بات ہو رہی ہے, وکیل سارے ہر قانون کو نہیں سمجھتے. آپ کو وہ جو ہے وہ ان کے جو پارلیمنٹ کے جو فلکے تھنک کے لاز ہیں اس کو پڑھتے ہیں, وہ آئین کو نہیں پڑھتے. اور جب تک آپ آئین کو نہیں پڑھیں گے آپ لا کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمیں یہ جو گیدرنگ ہے یہ مسٹ کرنی پڑے گی اگر آپ جو ہے ٹیکسیوں کو بچانا پڑے گا. نہیں تو کل کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گرمیوں کی چھٹی کے بعد کیا ہوگا, جب یہ 600 نئی ٹیکسی سڑک پہ آ جائے گی, حشر کیا ہوگا کہ وون مین اپنا 30-35,000 40,000 کا خرچہ جو ہے گاڑی کا وہ نہیں دے سکیں گے, اور وہ کہاں سے کور کریں گے؟ بینک ان کو لون نہیں دے گا, دوسری چیزوں پہ ان کو پرابلم ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو بینکرپٹ ہوں گے. میں نے خود کہا ہے اگلے دن کہ میں نے 1,00,000 کروڑ فیئر گان سیورٹیو کو دے کے, کیونکہ میں بیمار ہو گیا تھا, تو میں نے اپنی سیلس کیئر کو, میرے وکیل نے کہا تھا بینکرپٹ ہو جاؤ 5 سال تک کوئی, میں نے کہا میں نہیں ہونا چاہتا بینکرپٹ, میں آج تک نہیں بینکرپٹ ہوا, میں اب کیوں ہوں؟ تو میں نے 1,00,000 ان کو کیش دے کے بینک کے تھرو سے, تو میں نے اپنے آپ کو فری کیا. 62,000 مجھے گاڑی کا گھاٹا نقصان ہوا, میں نے وہ بھی پے کیا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی لوگوں کی, لوگ کہاں سے انکم لائیں گے؟ اس مسئلے کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آج آپ 5-5-6 لاکھ کی ایک ایک ملین کی الیکٹرک گاڑی کے اندر آپ بھاگ رہے ہیں, خدا نہ خاصا کل کو آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے.
1: بات آپ کی بات میں معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں, شاہ صاحب کبھی کھلاڑی بھی فیل ہوا, کھلاڑی کبھی ایک کلب میں بک جاتا ہے کبھی دوسری کلب میں بک جاتا ہے, کھیلنے والا کھلاڑی کبھی نقصان میں نہیں جاتا.
2: جی وہ آپ کی بات صحیح ہے, پر یہ کھلاڑی نہیں ہے. ہم لوگ جو ٹیکسی وان مین ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ہم نالج کی بیس پہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں ٹور ملے, ہم کام کریں, ہمیں زیادہ سے پیسہ ملے. ہم نے پاکستان کا بھی کلچر رکھنا ہے, ہم نے یہاں کا بھی کلچر رکھنا ہے, ہم نے بچوں کی شادیاں کرانی ہیں, ان کو اتنے اتنے لاکھوں کے جہیز دینے ہیں. تو یہ سارا نالج جو ہمارے اندر بھرا ہے اس کے اوپر ہم دن رات محنت کرتے ہیں, اور اس محنت سے جو ہے جو کمائی ہے اس کا اب عذاب ہمارے پہ آ رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ جنہوں نے ویلے لیے ہوئے ہیں, رائکا ہاؤس لیے ہوئے ہیں, سب کچھ دیکھیں کتنے لوگ, یہ شاید تمہیں پتہ ہے کتنے لوگ موو ہو گئے ہیں سویڈن کے اندر, کتنے لوگ چلے گئے ہیں جرمنی کے اندر. میں کیوں اپنے بچوں کو یہاں لے کے آؤں؟ مجھے نہیں روکا انہوں نے, کیونکہ میں قانون کو جانتا ہوں, میں قانون کے لاؤز ہولز کو جانتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو بات کرو, یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچے بہت پڑھ گئے ہیں. وہ جی میرے بچے بھی پی ایچ ڈی کر گئے ہیں, میرے بچے بھی بڑے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے جب میں ان سے کوئی مدد مانگتا ہوں تو وہ کہتے ہیں فا لوے ہم دے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے جب ان کو خود انہوں نے قانون نہیں پڑھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قانون ایک علیحدہ چیز ہے اور آئین ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں کا ریٹرن آئین ہے, وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. شاید کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, میاں منیر صاحب کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, مجھے بھی اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے یہاں کے کنگ کو بھی اتنی پروٹیکشن ہے, کوئی فورس کیس پینڈنگ نہیں. لیکن جو آئین ہے, جو لا ہے, جو انہوں نے قانون بنایا ہے, اس میں فورس کیس پینڈنگ ہے. یہ کیسا آئین رکھا ہوا انہوں نے؟ یا یہ آئین کو ختم کر دے اور سارے لا فورس رہے, انگلینڈ کی طرح لے آئے کہ جو پارلیمنٹ ول چیک کرتی ہے ہم اس کو مانیں گے, تو پھر آئین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم نے چیلنج کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے آئین کو مقدس سمجھتے ہیں یا آپ جو لا فورسز بنا رہے ہیں اس کو مقدس سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے بہت بڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر یہاں پہ انہوں نے پولرائزیشن پہ بات کی تھی, تو میں نے کیسے ان کا مسالے دے دے کے ان کا منہ بند کیا تھا, اور وہ پولرائزیشن ادھر ہی ختم ہو گئی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے. راجہ صاحب,
0: شاہ صاحب میں ایک بات ایڈ کر دوں اگر اجازت ہو آپ کی.
2: جی جی جی جی بالکل.
0: शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में, ये हमारे सियालकोट के, कि जी असे भी भोले बादशाह। शाह साहब ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफ्ज, मैं हालांकि
2: नहीं
0: मैं
2: भाई,
0: साजिश ही कह
2: मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ।
0: मैं साजिश ही कहना चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूं, मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है आप लोगों को, हमें वॉनमनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से, बिल्कुल ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डैनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते, क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है, अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर ही खुद ही करना था कंट्रोल डैनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के, ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सब कुछ समझ आ गई है,
2: बिल्कुल
0: हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए, जो तीसरी चौथी है ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया है, इनको हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डैनिश, जो एक थे डैनिश उनको करते हैं, हमें आप डैनिश भी कहते हैं लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते
1: लेकिन
0: हैं
1: शायद अपने
0: इसी।
1: खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
0: आपके आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर, खाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबार है ना, एक आपका काम का अड्डा है, इधर भी आप मार खा गए हैं। और
2: शायद आपको मैं एक आपकी बात में से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 87 के अंदर हमारे एक वॉनमैन थे, तो उनके बेटे ने इतनी तेजी से मर्सिडीज गाड़ी को जाके, तो कांग्रेस वाय के जो बीच में चौक था ना उसके अंदर जाके गाड़ी मारी, तो उन्होंने उसको पूछा, तो वो कहने लगा मैं तो गिमनेजियम में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी कहता मेरे बाप की है, वो फोरमैन अपना वो वॉनमैन है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब उन्होंने बाप को कहा कि भाई तुमने ये मर्सिडीज कैसे रख ली है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप की इतनी इनकम भी नहीं है, ये शो भी नहीं इतनी टैक्स में कर रहे, तो उन्होंने ये सख्ती है वहां से शुरू की। फिर कुछ हमारे अपने लोग भी थे, मैं नाम लेता हूँ, हमारी ये अपना इसी प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा ह्यूमन नेमर के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिप बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे हैं, तो वहां पे
1: तो
2: चार
1: शाह साहब
2: आदमियों
1: इसका
2: ने,
1: अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है चूंकि वो मौजूद नहीं
2: बिल्कुल
1: है।
2: प्रूफ है, मैंने आपके सामने ने लुबना ने ये कहा था कि ये मैंने ह्यूमन नेमर में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी उस वक्त, चार आदमी थे, तो उसने कहा कि प्रूफ, मैंने कहा मेरे पास है वो टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और मैं कभी ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है, और ये चीजें जो हुई इसके इसकी वजूहात जो थी वो सबके सामने आ रही है।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
3: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: बहुत सारे टैक्सी ब्रांच में नई जो ब्रांच आई है, लोकल लोग जो हैं बहुत सारे उसको ज्वाइन कर चुके हैं, और अलाउंसेस के बारे में बहुत सारी खबरें हैं जो 30-40 हज़ार जिस तरह के तनख्वाह मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, बीमारी के पैसे मिलते हैं, फिक्स काम होता है, फिक्स तनख्वाह होती है, टूर लेकर देना उनका काम होता है, तो इस पर भी बात करेंगे। और आजकल जो है वो मेले टेले भी जो हैं वो बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं, समझ नहीं आती गिले हम अमेरिका इंडिया और इसराइल से करते हैं, पाकिस्तान में जो है वो जंग जारी है, उधर जंग हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, कश्मीर के हालात को देख ले, इतने पुरअमन हम लोग हैं, रहते हैं हम सियासी पार्टियों को हम ज्वाइन भी करते हैं पाकिस्तान की पार्टियों को, और यहाँ जश्न भी बनाते हैं, गाने भी नाच गाना सारे काम हम करते हैं, पता नहीं हम क्या चाहते हैं क्या करना चाहते हैं, डेनमार्क के कानून को जो कानून कहता है उसकी तरफ भी हम सहूलियात लेने की कोशिश करते हैं, बाकी अच्छा शहरी बनने की भी कोशिश करते भी हैं और नहीं भी कोशिश करते, तो ये मिली जुली बातें। शाह साहब आप अपना रूटीन का प्रोग्राम बताएं फिर अदनान की तरफ बढ़े।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूर साहब आपको, आपकी टीम को, अदनान को और आपके लिसनर और नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। रूटीन की तरह जैसे मौसम आज भी बहुत प्यारा मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन वो बादल इतने ना बरस तो नहीं रहे, लेकिन वो आंख मचोली खेल रहे हैं और धूप भी निकल आ जाती है किसी वक्त। प्लेजेंट मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए या हम लोग जो 50 साल से ज्यादा इस मुल्क में इस वेदर में रह रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत प्लेजेंट मौसम है। लेकिन सियासी मौसम जैसे आपने कहा और काम का मौसम जो है, जैसे कि वो कहते हैं कि 3 W's पे कभी बिलीव ना करो, तो वो अब दुनिया के हर कोने में 3 W's का किसी भी मुल्क में चले जाए तो आप बिलीव नहीं कर सकते। 3 W मीन्स के वर्क, वुमेन और वेदर, ये आता है। लेकिन अब इसके अंदर 3 W के साथ M भी शामिल हो गया है, और M का मतलब है कि अब मैन भी इसमें, इस पावर में शामिल हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको इंक्लूडेड इसलिए कर रहा हूँ कि हर कोई जो है वो कहता है कि मैं तो जाति नहीं कर रहा, दूसरा जाति कर रहा है, लेकिन अपने गरेबान में हम खुद जान कर ही देखते हैं कि कौन सी फॉल्ट्स हमारी हैं। यहाँ पे इस वक्त डेनमार्क के अंदर मैंगो फेस्टिवल चल रहे हैं, दूसरे फेस्टिवल चल रहे हैं, और टैक्सियों के बारे में भी आपने बात की, वो मैं सेकंड सेक्शन में बात करूंगा। पहले तो मैं मैंगो फेस्टिवल्स के ऊपर बात करता हूँ। लोगों को ख्वाब बुरा लगे या अच्छा लगे, ये एक अच्छी रवायत थी कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगते थे या कल्चर प्रोग्राम होते थे, तो लोग जो हैं वो वहां पे आते थे और बड़े इत्मीनान से एक दूसरे से मिल लेते थे, एक दूसरे से हेलो कर लेते थे। लेकिन अब ये देखा है कि यहाँ पे नफसा नफसी हो गई है, हर कोई जो है, कल भी जो प्रोग्राम हुआ है एल्बर्ट्रोन के अंदर, वहां पे भी मैंने ये देखा है कि लोगों ने जहाँ दिल चाहा, वो जैसे कहते हैं ना, मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, जहां मैं दिल चाहूं पार्क करूं। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा कल वायलेशन देखी गई है कि सुनने में आया है कि 3 दफा पुलिस या 4 दफा पुलिस भी वहां पे आई है। तो ये इंतजामिया तो इसलिए ये ऐसे फेस्टिवल करती है कि लोगों की आपस में मेल मुलाकात हो, लोग एक दूसरे को जाने, लेकिन हट धर्मी और ये जो मजारा किया जाता है कि मेरी मर्जी मेरी गाड़ी मैं जहां दिल चाहूं मैं पार्क करूं, इसके अलावा और इंतजामिया जो है वो उनको मजबूर हो गई थी कहने के भाई यहाँ पे जगह नहीं, आप वहां पे खड़ी कर ले वहां पे, तो लोग जो थे वो कह रहे थे कि नहीं हमारी जो मर्जी, और डेंचो की गाड़ियां जो है वो पीछे ब्लॉक हुई हुई है और वो हॉर्न भी दे रहे हैं कि भाई हमने अपने गाड़ियां किसी काम पे जाना, तो आगे से गाड़ियां नहीं हटा रहे थे। हालांकि जो वहां पे इंतजामिया थी वो बहुत ही जिम्मेदारी से बड़े खुश असलूबी से लोगों से बात कर रहे थे। तो इस तरह का मैंगो फेस्टिवल जो है जहाँ पे पुलिस आ रही है, देखे एक चीज याद रखिएगा कि इसमें इदनान भी बात करेगा, लेकिन मैं एक चीज लोगों को बता दूं कि जब पुलिस आती है तो पुलिस के आगे वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे, उनका जो वीडियो कैमरा होता है जो उनकी छाती पे लगा होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जो ही वो अपनी गाड़ी या अपने मोटरसाइकिल से कदम बाहर निकालते हैं या उतारते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और इनके जो पीछे हेडक्वार्टर होता है उसको सारी वीडियो पहुंचनी शुरू हो जाती है।

0: पता है इस बात पे देखो कि पसंद नहीं आता। हमने एक कॉन्फ्रेंस में थे कुछ देर पहले, क्योंकि मैं खुद 2-3 दिनों से बीमार था और आज भी मुझे एक खुजा लगा हुआ है, चेकअप हो रहा है, तो इसलिए मैंने इतना ये क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली बैलिन का नहीं देख सका, मगर मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम इसमें दो भी हैं कि हम लोग, मैं इस जैसे आपको भी रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता और किसी को कहना नहीं चाहता और कोई इंसान गुस्सा ना करे इस बात का। इसके अंदर दो पहलू, एक तो ये पहलू है कि कुछ वालदैन जो होते हैं वो बच्चों को रोकते नहीं हैं, जब बच्चों को कंप्लेंट भी आए, बच्चों को बताया भी जाए वो इस डायरेक्शन पे है तो वो मानते नहीं है। मैं आपको एक 2 मिनट आप मुझे देना, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, एक हमारा ही है, ये एपिसोड में ही था, डेनमार्क में वाकया था, वो बच्चा अभी हो गया होगा डेनमार्क से, उसको बाहर निकाल दिया गया होगा। मैं आपको बात बताऊं, मेरे सामने वो गाड़ी लेके चोरी करके रहते थे, वो उस इलाके में गाड़ी लेके चोरी करके आ गया। एक बंदे ने उसकी अम्मी को फोन करके कहा कि तुम्हारा बच्चा गाड़ी चोरी करके ले आया है। आप इमेजिन नहीं कर सकती, इसकी अम्मी उसके घर लड़ने चली गई इस्तीफा कि वो अपने बच्चे को रोक। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कुछ सालों के बाद उसने बहुत बड़ा वाकया कर दिया। क्या हुआ, वो उलझित हो गया। आज भी उसकी अम्मी कहती है कि मैं उस वक्त बात सुन लेती तो मेरा बच्चा उलझित ना होता। तो मैंने उससे यही उसने आंटी को कहा, मैंने कहा जब हम लोग आपको समझाते थे तो आप बात नहीं थे सुनते, आप जब बात नहीं सुनेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो बच्चे ने तो बाहर ही जाना है। आप ये आपको पता होगा कि टॉस्टोप में जनवरी में एक केस हुए थे जहां पे बच्चों ने एक दूसरे को मारा था, नीचे हुआ था, वो 16 साल
1: जी
0: का लड़का है, उसको भी उदिश कर दिया हुआ। और उसके वालदे ने की जो एडवाइजर थे और जो वो एडवाइजिंग टीम थी उनका मुझे पता था, उसने कहा हम माँ बाप को जाके जब बताते थे कि हमारी हेल्प करो अपने बच्चे को कंट्रोल करने में, ये करने में, कहते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसके अंदर ये बनता है कि जब कोई बंदा आपके पास आता है, आपको क्राइम कराने की चीज बताता है, तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब हमें डरना पता है कि 600 में क्या हो रहा है, लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी कुछ लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसको वो सीरियस ले ही नहीं रहे। जब उनने सीरियस नहीं लिया तो आप देखे कि 600 में रात को जाना हो तो बंदे को देख के जाना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि एक माहौल वो गलत बन गया। और जब वो माहौल ही गलत बन जाए तो बंदा उसको
1: तो फिर
0: ना पता
1: हालात
0: इसमें
1: ठीक नहीं
0: चले
1: होते,
0: कि नहीं
1: कानून
0: होते।
1: हरकत में होता है। कोई नौजवानों के बारे में कोई लीडर भी तो नहीं बोलता ना, तो कि नौजवानों को समझाए, नौजवानों के बारे में बात करे, खामोशी से बातें होती हैं। मैं मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, जिनका तल्लुक SF से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेनमार्क के सदर भी हैं। मुजीब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और मेरे बड़े प्यारे भाई तोकीर शाह साहब और बरखुरदार अदनान साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी
1: वालेकुम
2: दस
1: अस्सलाम।
2: दस मिनट पहले आपको ज्वाइन किया है, आपको फोन जब आया तो मैं थोड़ा रास्ते में था, तो मुझे डिबेट में सुन रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदनान भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें हमें पता चलनी चाहिए। मैं तो एक नुक्ते पे खाली सिर्फ चीज कहूंगा कि जहाँ पे बंदे ने रहना होता है, जैसे हम डेनमार्क में रह रहे हैं, तो हमें डेनमार्क के कानून की जी एहतराम करना चाहिए, और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और कानून पे अगर कानून का एहतराम करेंगे तो मेरा ख्याल है जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो कम होंगी। तो सबसे जरूरी है कि हम बूढ़े सीनियर क्या, जो जवान है वो क्या, जो लड़कपन वाले हैं वो क्या, सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। बाकी है कि जैसे मोहतरम शाह साहब और नान जो है वो उन्होंने नजर रखी होती है हर चीज पे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो वो तो आपको पता है कि दुनिया के हर ममालिक में ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन हमारे यंगस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो अगर अगर आप उसमें 100% में से अगर कोई 5-10% अगर हो जाता है तो हमें उनको भी प्यार से, जैसे अदनान ने कभी एग्जाम्पल दी कि उस बच्चे को विश कर दिया गया, तो अगर हम बड़े समझाएं बताएं और ये बस ध्यान में डालें कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, जो जितनी मेरी चीज मैंने सुनी है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे भी रहना हो इंसान ने उस मुल्क के कानून का एहतराम करें।
1: شاہ صاحب میں بات کو تھوڑا

0: ऐसा दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, रेडिकेल वेंस्टा की जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, जो हैं वो अपना सुमैरा नवा, उनकी मैं बयान देख रहा था, वो फरमा रही थी जो मौसम गर्मा की शानदार खबरों में उनका जिक्र है कि डेनमार्क की लेबर मूवमेंट की बिजनेस काउंसिल का आज तजिया पढ़ना कितना अच्छा लगा, जिसकी सुर्खी से खैर मगरबी पर से मंजर रखने वाले ज्यादा से ज्यादा नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। शाह जी ये तो भी तो खबर ही है ना, ये तो रेडिकेल वेंस्टा की तरफ से कहा जा रहा है।
1: ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो असल सब्जेक्ट है जिस पे अदनान ने अभी रोशनी डाली है, ये मैं सवाल मुजीब कुरैशी साहब से भी पूछूंगा और अदनान से भी। असल में बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने पहले क्राइम किए थे, तो उनको उलविस कर दिया जाता था या उनके फैमिली पे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब जो इन्होंने 2024 में जो कानून बनाया, जो पहली जनवरी 2026 से लागू हुआ है, उसके मुताबिक ये है कि अब बोली सेल्स के जो है, ये अगर कोई बच्चा बार बार मना करने या पुलिस एनमेल्ट होता है या उसके ज्यादा जराइम हो जाते हैं, तो वो बोली सेल्स के जो है उसको बगैर नोटिस दिए 15 दिन के वार्सल से घर से निकाल सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फैमिलीज जो अपने बच्चों को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रही, वो किस कम्यून में जाएंगी, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये मैं मुजीब कुरैशी साहब से भी पूछना चाहता हूँ और इतलान से भी।
2: मोहतरम शाह साहब, ऐसे है कि मैंने अभी थोड़ी देर जो ना, जो क्योंकि हम जो तजिया करते हैं या हम जो देखते हैं खबरें, हमारे लोगों की तादाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कानून बन गया तो कानून कोई पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं बना ना, वो तो सबके लिए है।
1: जी जी,
2: वो
1: जी
2: तो डैनिश कम्युनिटी के लिए भी ये अगर मेरे पास डैनिश पासपोर्ट है, अगर मेरे घर में कोई ऐसी बात होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप डैनिश हैं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। ये कानून तो पूरे मुल्क के लिए, तो पूरे मुल्क में अगर कानून है, तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, हमें कानून की चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, और हमें उसमें उसके अंदर रह के इस मुल्क में रहना चाहिए ताकि हम अपनी चीजें बेहतर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इसलाह करनी, अपनी भी इसलाह करें, अपने बच्चों की भी इसलाह करें, और जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी भी हम देखें, उनकी भी इसलाह करें। इसलाह करने से कानून में भी बेहतरी आती है और लोगों में भी बेहतरी आती है।
1: अदनान, सवाल ये है कि अगर हम रेडियो पे बैठ के ये कानून की बातें नहीं करेंगे, तो आम आदमी को जो घरों में बैठा है या काम करके अपने घर में चला जाता है या गाड़ी में बैठा हुआ काम कर रहा है या ट्रक में बैठा हुआ है, तो उसको किस तरह समझ आएगी? उसके पास तो टाइम नहीं कि वो कानून को कंगाले या इस चीज को समझे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि हम लोग इसको, इस तरह के कानून जो बन रहे हैं उनको डिस्कस करें और पब्लिक के सामने लेके आए ताकि वो मुताद रहे? क्या मैं सही कह रहा हूँ?
3: आपकी बात कराइट है, मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो पूरा कानून बना था ना 2024 प्लान, और ये जो जब बनाया गया था, तो ये कानून जब बनाया गया था ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये वार्निंग देंगे, और वो वार्निंग को सीरियस बंदा नहीं लेगा तो फिर बंदा घर से बाहर निकल सकता है। और ये कानून इसलिए बना था कि ये जो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। मगर उसके अंदर अभी भी मसला ये है कि ये कानून जो है ना, इस कानून को चैलेंज किया गया हुआ है, और दो केसेस हैं जो मेरे ख्याल से सलेंस के बाद हॉस्टगार्ड में है, और जब ये हॉस्टगार्ड में वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि दो बंदे इस कानून को चैलेंज कर चुके होंगे, क्योंकि ये कानून किसी ह्यूमन राइट्स और किसी के अगेंस्ट भी जाता है। तो अब देखते हैं इस कानून के साथ क्या है। मगर बात वही है जैसे मेरे बुजुर्ग ने भी कहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, क्योंकि हम रिस्पेक्ट लॉ करेंगे और हम उस चीज में रहते हैं तो हमें उस मुल्क को देख के चलना होता है। जिस मर्जी कानून हो, हमें उस चीज को फॉलो करना होता है, और हम कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो हम इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। हमें इस मुल्क में रह के हमें आइन और कानून जो होते हैं ना, वो ही फॉलो करने होते हैं। और लोगों को बहुत सारे कानूनों का पता भी होता है और लोगों को अंदाजा भी होता है कि कानून कैसे हैं। तो ये कानून तो हमारे लिए नहीं बने, ये सब के लिए कानून बने हैं। मैं रिसेंटली 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे गया हुआ था, और वहां पे मैं देख रहा था कि फॉरनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पड़ी, क्या कहते हैं, चेकिंग में, जितनी गोरों को प्रॉब्लम पड़ी हुई थी, क्योंकि गोरे जो हैं वो पुराने कानून से जा रहे थे तो उनको भी नहीं था पता। सो एवरीबॉडी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, और यहाँ पे ये फर्क नहीं करते कि गोरा कौन है, चिट्टा कौन है, कौन है, ये देखते हैं लॉ को सबसे पहले।
0: अदनान, आप कानून कायदे की बात कर रहे हैं, शाह साहब आपके लिए भी ये सवाल है, मजीब साहब के लिए भी सवाल है, आप तीनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र भी रखते हैं कि कम्यून के इलेक्शन के बाद जब सारे मामलात सारे सेट हो गए तो अगर पिछले तीन चार महीने की या दो महीने तीन महीने की एक्टिविटीज़ देखी जाए तो शाह साहब जो हमारे गैर मुल्कियों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली आप अपने ग्रुप्स की बात करें तो हम जो जिस तरफ लगे हुए हमें तो पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और इस तरह लग रहा है पुरसराज किस्म की खामोशी है, जबकि दुनिया भर के हालात जो हैं वो बड़े टेंस में है। डेनमार्क के हालात बड़े टेंस में है, यहाँ आप देखेंगे दुकानों पे जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट है उनके ऊपर खाने की चीजों की कमी है, उनके अंदर काफी चीजें जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है, लेकिन आवाम क्योंकि छुट्टियों पर चले गए डेनिश और कुछ लोग जो है इस दफा छुट्टियां नहीं मना सके क्योंकि महंगाई की वजह से भी, तो हमारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को। ये इलेक्ट इसलिए होते हैं कि ये इन्फॉर्म करते हैं बंदों को। अगर आप ये कहें कि डेनिस सियासतदान, तो डेनिस सियासतदान जो है वो चैट कर रहे होते हैं आपके साथ फेसबुक के सोशल मीडिया पे भरी हुई है, आप देखेंगे इनको चाय नहीं है ना इनका सोयाबेयर को ना मॉडर्न मास्टर स्प्रिट को ना हमारी वजीर आजम जो है उनको ना दूसरों को, ये डेली तीन तीन चार चार जो है वो लॉज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, ये बकायदा फलके थिंग के जो डिबेट्स उलैनिक के बारे में वो पेश कर रहे हैं, जो फौसले नंबर 9 है उसको पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो है उलेडिंग्स को जो नेशनलिटी दी जाती है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। इसका इसका मुहावर क्या है, इसका असल बात ये है कि हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मर हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन असल काम ये है ये इंफॉर्मेशन देने का ये काउंसलर्स का है, वो आकर बताएं कि भाई देखे कि आपने अगर कोई फेस्टिवल लगाना है या आपने कोई किसी ने कोई मेडिसिन हेल्प लेनी है, आपने कोई आपको कोई बीमारी पे है, आपने छुट्टियों में सडनली पाकिस्तान जाना है या किसी और मुल्क में जाना है, तो आप किस तरीके से कौन से पैराग्राफ पे आप छुट्टियां ले सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई करेंगे, ये काम बताने का हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम क्यों बताएं जब
0: शाह साहब आप मजाक फरमा रहे हैं। मुजीब साहब देखे ना, आपने शाह साहब ने जिक्र किया कानून कायदे की, तो देखे ना कानून कायदा समझने के लिए आप देखे ना कि 8-9 फंक्शन हो चुके हैं पिछले चंद दिनों में या हफ्तों में कह सकते हैं, और आगे भी फंक्शन होंगे, तो हमारी जो तरजियात का हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमारी सोच क्या है, थिंक टैंक शाह साहब आप लोग इसी तरह एनालाइज करते हैं। मुजीब साहब आपने सुना,
3: मैंने एक मिनट राजा साहब मुझे एक मिनट बाहर जाना पड़ेगा टेलीफोन से, मैं आपको फिर
0: चले ठीक है अदनान आप करें। जी मुजीब साहब
2: मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जितनी इन्फॉर्मेशन आती है बड़ी अच्छी बात है, कानून के बंदों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे मोहतरम शाह साहब नजर रखते हैं हर रोज, इन्होंने सारी अखबार को देखना
0: होता है। अगर वो नहीं देना चाहते तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करती होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुलिसमैन तो नहीं है,
2: हम तो कह ही सकते हैं ना जी, अगर वो नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम, तो मैं आपको ना मेरे ख्याल आज से 3-4 महीने पहले आप वक्त कह चुका हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो कारकर्दगी पे होगा, अगर किसी की कोई कारकर्दगी नहीं हुई तो उन्होंने अपने सर पैर पे खुद इलेक्शन लड़ना है, तो फिर देखेंगे वो कैसे वो कामयाब होते हैं, लेकिन अगर कुछ बताएंगे कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब है। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें ज्यादा अभी छुट्टियां हैं खत्म होने दें, तो इनशाला इसके ऊपर हम बात करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे, हमने वोट दिए हुए हैं, हमने मेहनत की हुई है, हमने पार्टियों को जिताया हुआ है, आज अगर 8-10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो खुद तो नहीं बन गए, उनको हमने बनवाया हुआ है और हमारी वजह से वो बने हुए हैं, तो अगर उनको अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भूल जाए। मैं तो एलानिया रेडियो पे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं नहीं कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो उनको चाहिए कि एक साल तो गुजर गया है तो बाकी जो टाइम रह गया उसको अपने आप को सामने लेके आए और जो छोटा मोटा काम हो रहा है जो भी उनकी चीज है उसको उजागर करें, आपका प्लेटफॉर्म हाजिर है और मीडिया है जिसपे मर्जी आए आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने एरिया में लोगों को बताएं, कि भाई हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए, ये काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए नहीं, जिस कम्युनिटी से वो मुंतखब हुए पूरी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ताकि ये तो नहीं कि खाली हम लंदन जा रहे हैं या हम पेरिस जा रहे हैं या हम बोसनिया जा रहे हैं या हम स्पेन जा रहे हैं, शहरों पर लग जाए, ऐसा काम नहीं चलता। आप काम वो वाले खत्म हो गए, यंगस्टर माशाल्लाह सब सियासत को समझते हैं, और जो नेक्स्ट यंगस्टर आएंगे हो सकता है फिर जो भी यंगस्टर है उनको फिर वो छुट्टी करा दे, तो इनको चाहिए कि अपने काम की तरफ तवज्जो दे और जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दे। राज साहब ऐसा है कि मैं भी थोड़ी देर टेलीफोन से निकलूंगा, आप मुझे इजाजत दे दें तो इंशाल्लाह आप बात करें, मैं आपको रेडियो सुनूंगा जरूर, लेकिन मैं एक बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बंदा खड़ा है उसको मिलने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपका रेडियो
0: सुनूंगा। अदनान भी आ रहा है तो अपना शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब हमारी तर्जियात क्या है,
2: जल्दी फारग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊँ। ठीक है
0: ठीक है,
2: ओके जी, खुदा
0: हाफिज़। शाह साहब हमारी तर्जियात क्या है
1: जी,
0: हमारी तर्जियात क्या है?
1: हमारी तर्जियात जो है वो गबियत करनी, शो ऑफ करनी, माजरत के साथ। मसाइल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी डिस्कस नहीं करता। जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी सियासी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं, तो वहाँ पाकिस्तान के मसाइल जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप किसी दोस्त को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं, यहाँ के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मसले मसाइल है ये कह देना कि देखो जी मैं तो मेरे पे तो ये बात नहीं फिक्स हो रही, लेकिन दूसरे पे, लेकिन ये देखें कि जब एक कानून बनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा सही काम कर रहा है या ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, वो तो सब के लिए है। और हादसा किसको कहते हैं, हादसा वो होता है जो सडनली होता है। ये शोर बहुत हो रहा है दौरान के रेडियो में,
0: अदनान गाड़ी का या माइक बंद करें, माइक आवाज आती है डबल होती है।
1: और मसला ये है कि हमने जो चीजें हाईलाइट करनी है, अब आप ये देखें कि जिस पे चीज पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो नई टैक्सी आई है यहाँ पे ग्रीन टैक्सी, ये अब
0: ड्राइवर भी मिल रहे हैं अभी
1: जी? नहीं नहीं, ड्राइवरों को काफी मिल रहे हैं। वो देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ड्राइवर्स का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। अब नुकसान में जो दूसरे जाएंगे, देखे एक मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तो फिक्स रेट मिल रहा है, मुझे तो ये परवाह नहीं कि सवारी बैठती है नहीं बैठती, पैसे देती है नहीं देती, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। ये चीज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर ये है कि अगर मैं जाता हूँ और मेरे मुझे कोई ऐसा टूर मिल जाता है, ऐसी ऐसी सवारी मिल जाती है, दे देती है कंपनी, जो कि टाइम ओवर हो जाता है, तो उसको मुझे बोनस मिलेगा कि भाई तुमने ये काम जो है ओवर टाइम लगाया, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो ये ज्यादा ज्यादा जो है बेहतर है। और ये आगे और अब एक नई बहस चली शुरू हो गई है कि जो टेस्ला और ये दूसरे जो कंपनियां हैं ऊबर वगैरह, अगर ये बगैर ड्राइवर के गाड़ियां जो है ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस में या न्यू ईयर के बाद यहाँ पे फेंक देते हैं, सड़कों पे ले आते हैं, तो फिर ये हमारे वॉनमैन हजरात क्या करेंगे? देखे एक वॉनमैन का कम से कम जो है 30 से लेकर 40 हजार करोड़ जो है सिर्फ गाड़ी का खर्चा है, और अगर उसकी गाड़ी का इतना खर्चा है तो वो कम से कम 70-80 हजार करोड़ कमाएगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे। और अगर उसको दो दो तीन तीन घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टोल मिलता है तो वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बुलाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्ट से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आर में गाड़ी मिल जाती है तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्सकेप जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा? तो इस तरीके से आबसे बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असाइनमेंट बढ़ेगी, और ये चीजें जो है ये कम्यूनों पे बड़ा असर डालेंगी। और कम्यूनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्यूनों पे इस पे बात उठाएं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आबस रिलेटेड जो हैं उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दे कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दे। अब मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं। अब उसने गाड़ी को गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसके उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसका वो किस तरीके से उसे।
0: शाह साहब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, शाह साहब एक आप कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखें ना, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आप वाई एल को फोन करते हैं, वो बंदा आता है, वो आपके टायर पे सुराख, खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ, बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉपों में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हज़ार का है, तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब ये पहले होता था, आते थे वो पंच टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंच लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब ये जो खेल चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की समझ से नहीं, आप क्या कहेंगे?
1: जी मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, जो अक्लमंद है वो अभी से ये सोच ले कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है कि अगर मैं 30,000 तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ, तो कई दफा मैं 30,000 भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30,000 की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है, ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है, मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए, वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है।
0: चलिए अदनान से शाह साहब पूछते हैं, अदनान से, चूंकि अदनान भी काफी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान, ये नई कंपनियां आ रही हैं, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी जात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो अदनान आ रही है, आप क्या कहेंगे?
3: साहब ये तो आ रही है, और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे ये पता नहीं, अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका सीधा क्या होता है, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, या जैसे ये फॉस्टेनमार्क बंद हुआ था तो पत्तों का बिरार कोई थी, तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए कि किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है, क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना। जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं हमिस्टन कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेज पूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन जब ये सारे हमारे मकान वगैरह सब कुछ बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर 100% बजट हमारा बनता है। तो इसी तरह बाकी की कम्यूनों में मसाइल हैं, ब्रॉनबी में भी होंगे, रेफिनरी कुछ मसाइल हैं वहां पे भी, क्या कहते हैं एक पॉन पिस्ता नाम हो जिसको वो पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि उधर भी मसला मसाइल थे। तो इस तरह की चीजें बाहर निकल के हमारे काउंसलर को बताने की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है 14 दिन पहले और देखा है कि जितने मैंगो फेस्टिवल पे और जिधर जिधर हम लोग गए हैं, जिन जिनों को पता है वो डेफिनेटली सवाल पूछते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछे, मैंने कहा देखिए हर सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी क्या कहते हैं छाव से स्प्लिट होती है, मगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लीगली होती है और मुझे पता होता है कि मैं बता सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और मैंने जैसे अभी भी कहा है कि मेरे पास काफी हमारी जो वेस्टर्न की कमूनों में मीन बंदे बैठे हुए हैं, हमें कुछ तलावे हैं, फिर वो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनको बता सकते हैं और क्या है, क्योंकि काफी क्या कहते हैं चीजों में तब्दीली आएगी, काफी चीजों में बदलेगी। जैसे अब आप देखें बड़े लोगों को, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोस तो स्विम में है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मुझे एक बंदे ने उस दिन पूछा, कहता है कि ये ये पूरा ये जो बंध रहा है ये क्या सिस्टम है। मैंने कहा ये डैम बन रहा है। कहता है ये क्यों डैम बन रहा है। मैंने कहा डैम इसलिए बन रहा है कि पानी बचाना है। कहता है ये हम लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो फिर हम लोगों को आप लोगों को बताने की जरूरत होती है। आप लोग हमसे सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे। मैंने कहा ये ग्लोस्टो कमून डैम बना रही है क्योंकि फ्यूचर में पानी बचाने के लिए, जब पानी की कमी होगी तो ये डैम जो है ये बारिश के पानी को बचाएंगे। मैंने कहा इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे, ये इसलिए ये जो चीजें होती है ना बड़ी जरूरी होता है कि हम अपने लोगों को जाके बताएं।
0: अदनान आप ये इन चीजों की बातें कर रहे हैं तो ये आगे मैंगो फेस्टिवल कितने आ रहे हैं?
3: मैंगो फेस्टिवल अभी दो आ रहे हैं, लाइक एक एक मैंगो फेस्टिवल हफ्ते को आ रहा है और एक आ रहा है आजादी के साथ मैंगो फेस्टिवल 8 अगस्त को, जो उनने आजादी का प्रोग्राम के साथ मैंगो रख दिए। तो दो मैंगो फेस्टिवल रह गए हैं, उसके बाद तो मैंगो का सीजन ही खत्म हो जाना है। तो फिर क्या कहते हैं मैंगो के इतने नहीं रहने हैं। तो इसलिए
0: अदनान ये जो जो स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं तो क्या ये जो सेहत वाले होते हैं, महकमा होता है सेहत वाला, तो जिस तरह के तरीकेकार होते हैं तो क्या ये अलाउ होती है सारी चीजें लीगली?
3: इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कमून के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रूव कर दें तो फिर कोई मसाला नहीं होता। और अब सरी वो 100% ज्यादातर अप्रूव कर देते हैं क्योंकि उनको अभी तक तो ये उनने पहले तो पता नहीं किस तरह से है, मगर आगे वो देख रहे हैं इस चीज को किसका क्या कहते हैं लॉ की इवनिंग बदलनी है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा क्योंकि
0: मैं शाह साहब आप प्रोग्राम को क्लोज करें और मेहमानों से इजाजत भी लें।
3: इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू थैंक यू।
1: ये राजा साहब लास्ट में मैं ये कहूंगा कि लोगों का शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये काउंसलर्स हजरात का काम है कि वो आकर बताएं कि जो पेंशनर्स हैं या बिफोर टर्म जिन्होंने पेंशन ली हुई है या वो फैमिली वाले जिनके लो इनकम है इस डेनमार्क के अंदर, और वो जो लेवेस्ट इनकम के यानी कि सबसे कमतर इनकम के अंदर गुजारा कर रहे हैं उनको किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कोई भी काउंसलर बात नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर जितनी नई बोली अब बन रही है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज्यादा छोटी और कम और तंग कमरों वाली बना दी इन्होंने कि अगर किसी को मजबूरन वो कमरे ले लेता है तो पहले तो वो वहां पे उनको सोने के कमरे में ही बेड डबल बेड भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जो सर रेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल। और
0: तो बच्चों वाले लोग जो बन सकता किराया हर आदमी हर कंपनी अपनी मर्जी से किराया रखती है
1: जी। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ये 85-86 में हमने कोपेनहेगन में इसके ऊपर डिबेट की थी, लेकिन वहां पे फिर वही बात हो गई थी कि जो डिप्लोमेट्स थे जो बड़े बड़े उम्बसमैन थे वो कम्यून को चकरा गए थे और चक्कर दे के तो एक्साइट हो गए थे, तो सियासतदानों को जो काउंसलर्स थे उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो ये डिबेट्स जो है ये होनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हर कम्यून के अंदर जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिलीज वाले हैं जिनकी इतनी हायर इनकम नहीं जिस तरह अगर डेनमार्क गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो उनको सस्ते जो है वो फ्लैट्स जो है वो देने चाहिए और मुहैया करने चाहिए ताकि वो बच्चे जो है वो बजाय डोमेस्टिक वायलेशन या क्राइम की तरफ जाए या तरसे कि हमें बाहर गर्म मौसम है हमें आइस नहीं मिल रही फलानी चीज नहीं मिल रही। तो राजा साहब ये चीजें जो है ये डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी वक्त आप बुखारी साहब को भी लाएं, किसी काउंसलर को लेके आए जो बड़े ठंडे दिमाग से हमारी बातों का जवाब दे और हमें अच्छे तरीके से ये बताए कि कौन सी कम्यून में वो काम कर रहे हैं और क्या उनकी कम्यून में ये फैसिलिटीज है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्राइम रेट को रोकने के लिए।
0: वोटर सपोर्टर को भी ये पूछना चाहिए ना कि हमने आप लोगों को वोट दी जिस तरह मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमने वोटें दी हैं, तो वोटर सपोर्टर को भी चाहिए ना भाई आपको वोटें हमने किस लिए दी थी, आपको मेंबर बनाने के लिए दी थी, आपका कैरियर आपके जॉब बड़े अच्छे हैं, आपका कैरियर बनाने के लिए हमने आपकी वोटें दी थी।
1: वो अगर से कहते थे अंकल जी अगली दफा मत दीजिएगा वोट, आपने दे दिया, आपका शुक्रिया। अगली दफा ना दीजिएगा, हमने आपको समोसे चाय खिलाई थी, बस शुक्रिया आपने इस दफा वोट डाल दिया, अगली दफा बेशक आप ना दे। तो बात में असल में ये होती है कि अगर ये लोग आके लोगों को ये बताते हैं इंफॉर्मेशन, तो इससे इससे सहूलियात जो है वो बढ़ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि 85% या 86% लॉज जो बनते हैं यहाँ पे कम्यूनों के अंदर, उनका किसी को भी इलम नहीं, और लोग बाहर आके बात नहीं करते क्योंकि लोग उसके अंदर बैठते नहीं है, बताते नहीं कि कौन सी डिबेट हुई है। आप यकीनन किसी से भी टेलीफोन पर कोई कह दे कि आए मुझे ये बताएं कि आज आप इस हफ्ते आपकी किस चीज पे डिबेट हुई है, तो वो आपको गुड़बुड़ बात करके तो भाग जाएंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें ये बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपने हमें इलेक्ट किया है, हम इस कम्यून में गए हैं, इस कम्यून का मंशूर ये है। अब जिस तरीके से कोपेनहेगन कम्यून को आप ले लें, वहां आपको जो इलेक्ट हुए हैं उनको चाहिए था कि आपके जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बताते कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अवाम के लिए, सड़कों के लिए, पार्किंग के लिए, हाउसेस के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वो पूरा साल वो प्रोजेक्ट पे बैठे, पूरा साल वो उनके चलता रहे, लेकिन मेजर चीजें उनको बतानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप किस तरीके से अमल कर सकते हैं, अगर खुदा ना हादसा आप बीमार है किस तरह आपने रायजे लेना है, किस तरह आपने करना है, ये इन चीजों पर वो तो बात ही नहीं कर रहे। जब तक लोगों को ये चीजें इलम नहीं होंगी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हर मिनिस्ट्री ने बहुत सर्विस बनाई हुई है, ये वायद कोपेनहेगन की बहुत सर्विस है या वेस्टर्न की बहुत सर्विस है, जिसके अंदर सिर्फ तीन चीजें आप जाके उनसे हल करवा सकते हैं, बाकी का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने अगर खेवकार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या कम्यून से किसी के, तो वो बाकी है उनके लिए कोई रिलेटेड ऐसा नहीं कि कोई आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, वो नहीं ले सकते। और आपको इवन आप एल्बर्सोन बॉमिस्टर को टेलीफोन करें ना, तो उसका उसका नंबर ही कोई नहीं है। तो ये कैसी कम्यून है जिसके अंदर कोई बॉमिस्टर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप कहीं जाकर टाइम नहीं ले सकते, आप किसी काउंसलर से नहीं मिल सकते, आप पूछे कम्यून से पूछे कि कोपेनहेगन ये अपना एल्बर्सोन कम्यून के अंदर कौन कौन से काउंसलर है, उनके टेलीफोन नंबर हमें दें, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये अवाम को मिलनी चाहिए। जी राजा साहब,
0: मैं मजीब साहब की तरफ पढ़ते हैं। मजीब साहब, आप चूंकि ये सारी चीजें देखते रहते हैं, आपके घर से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं डिप्लोमेसी डिप्लोमेट जो मिलती रहती हैं, लेकिन हम किसी काम की तरफ नहीं जाते मासवाय तनकीद के अलावा।
2: आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह आप देखें ना मुकरम शाह साहब बहुत से तजिया करते हैं, लेकिन हम कह कह कह के कह कह के अपनी जुबानें भी थका लिए हैं, अपने गले भी खुश कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है असर नहीं ना, इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। और इसका एक ही इलाज है, मैं जो समझ रहा हूँ कि बेहतर जो इसकी दवाई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर कम्यून के अंदर कोई भी काम हो रहा, कम्यून के देखें जो अपने हमारे कैंडिडेट मुंतखब उनके प्राइवेट नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको ऑफिस वाला नंबर ही हमें चाहिए, वो भी नहीं उठाते। लोग कहते हैं जी आपकी खातर वोटें दी थी तो बंदे किधर है, तो हम कहते हैं जी फिर आप इस सफर तो आपने हमारी खातर दे दी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कारकर्दगी पे दें, जो बंदा कारकर्दगी दिखाए उसको आप वोट जरूर दें, और जो बंदा नहीं दिखाए आप उसको बिल्कुल वोट ना दें। और बेशक मैं आ जाऊं, बेशक आपके पास शाह साहब आ जाए, बेशक आपके पास राजा गफूर साहब आ जाए, आपने वोट नहीं देनी, आपने वोट उसी बंदे को देनी है। और यही देख लें आज माशाल्लाह अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी नवंबर तक तो एक साल हो जाएगा, तो अभी एक साल में कोई चीज मुझे किसी कमों से मेरे पास कोई ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी काउंसलर ने या रीजन के बंदे ने या कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया है कम्युनिटी के लिए, या कोई काम हो रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो कि पाइपलाइन में है किसी का, वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ऐसी बातें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो हैं, जो हमारे नए काउंसलर बने थे, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड को और मजबूत करने के लिए मैदान में आए और अपने मीडिया पे आके लोगों को बताएं कि भाई ये काम हो रहे हैं, ये काम पाइपलाइन में, ये काम
0: मंजीव साहब, ये बात तो जज्बे की होती है, बेचारे मेहनत तो करते हो गए, फिर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनको पहले कहा जाता है सियासत में बंदे के पास टाइम नहीं, तो उसे सियासत में आना ही नहीं चाहिए।
2: देखिए जी, फैमिली के लिए टाइम ज़रूरी है, अपने काम के लिए टाइम ज़रूरी है, अपने दोस्तों के लिए टाइम ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने सियासत में हिस्सा ले लिया है और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपका तल्लक है, तो फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपको उसके लिए टाइम निकालना, आप अपना एक प्रोग्राम बनाए, एक प्लान बनाए, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप उसमें से कह दें जी बस हमने 3 दिन जो है ना वो सियासत पे काम करना है, 4 दिन हमारे जो है ना फैमिली दोस्त है हमने उनके साथ गुजारे, तो फाइन। लेकिन 3 दिन जो है उसके अंदर कम अज कम इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं।
0: तो शाह साहब से पूछें, शाह साहब ये मीटिंगों में जाते हैं, ये मुफ्त जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं?
1: नहीं जी, मैं अपना मजीब कुरैशी साहब से भी एक सवाल करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। देखिए, उडनसे में आज उसमें यूलैंड में इनसम बनी हुई है जमातें, जहां जैसे यहां पर 70s 80s में कोपेनहेगन में होती थी इनसम, यानी कि आप अकेले हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आप जाके इकट्ठे बैठे और आपने जैसे लोगों से जो है वो बैठ के तो आप बात करें, खाना खाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कम्यूने जो है वो सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ना वेस्टाइन में कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोपेनहेगन में ऐसी चीज है, वो पैसे कहाँ गए, कहाँ गए वो बोलिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं था, क्या नाम है, वेंसा की तरफ से मैं इलेक्टेड था, इसके अंदर इंट्रोगेशन हुआ कोपेनहेगन के अंदर, तो वहां पे कुरैशी साहब के बड़े भाई भी थे, तो हमारे सामने बजट आता था कि कौन कौन सी तंजीमात हैं, किन किन को ये पैसे जो है वो मिलते हैं, और ये सारा कुछ जो था वो हमारे थ्रू हमारे से बहस करके तो वो लेके जाते थे। तो अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने देखना है कि ये चीजें कहाँ गई, ये पैसा सरमाया कहाँ लग रहा है, आखिर कोई ना कोई इसको उद्म्यूट कर रहा है, कोई ना कोई इससे फायदा ला रहा है, ले रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये है कि मैंने ये सोच रखा है कि छुट्टियों के बाद मैं इनको लेटर लिखूंगा और मैं ये जो है फलकतिंग का उम्बसमैन और जो कोपेनहेगन कम्यून है उससे मैं ये इंफॉर्मेशन मांगूंगा कि मुझे ये ऑफरली बताया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर जमाते हैं और कौन कौन से कल्चर सोसाइटीज हैं जो किसी ना किसी बहाने में जो है वो फॉरनर्स के लिए कल्चर सिस्टम के लिए पैसा लेते हैं, तो इनको इनको जरा मुझे ये बताएं, और ये मेरा राइट है सियासतदान यहाँ पे, तो वो बताएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, और ये मैं लूंगा क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनके पास पोली होता है। मैं आपको बताऊं कि 1997-98 में तकरीबन 24-25 मिलियन करोड़ जो था सिर्फ ठिंगबिया के लिए गिरा गया था। अब ये हिसाब लगा ले कि ठिंगबिया जो है उसके अंदर 63% जो है वो फॉरनर्स हैं और 37% जो है वो डेनिश हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, वहां पे जो पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है।
0: शाह साहब, बेसिक बात तो यही है ना कि जो कम्यूना में काउंसलर हजरात बैठे होते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वही माने जाते हैं ना।
1: अगर वो वहां डिबेट लेते हो जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मजीब साहब बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इदलान कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, अगर ये हिस्सा लेते हो, जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे साथ आके बात करें, हम इनसे सवाल करें कि भाई वो फलानी फलानी थी बात, वो उसके ऊपर आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, हम एक कल्चर ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं, हम कहाँ अप्लाई करें, कौन से कितना हमें जो है वो बजट मिलेगा, किस तरीके से हम उसकी एक हिस्से और दूसरी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको कम्यून वालों ने देनी है, और अगर वो जो काउंसलर जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो अपने अपने दोस्तों अहबाब में और अपनी फैमिलीज में ही वो ये सब कुछ अगर लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए, ये सामने आनी चाहिए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये तो मजीब साहब को भी पता है और मुझे तो 100% पता है कि मैं इतने सालों से डेनिश सियासत में हूँ, ये तो मुझे 100% यकीन है कि हर कम्यून के अंदर ऐसे बजट रखे जाते हैं जो मुख्तलिफ जो फॉरनर्स है उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनकी मीटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं।
0: मुजीब साहब, आपने शाह साहब की बातें सुनी। मुजीब साहब, एक सिस्टम तो होना चाहिए। आज पुराने वक्तों की अगर आप बात देखें तो काउंसलर बड़े मेहनत करते थे, अब भी करते हैं। अब नहीं, ये नहीं कि अब नहीं करते, करते हैं सारे अपने अपने तरीक़ेकार से करते हैं। बाज का नज़र आता है, बाज कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता। बात तो वैसे आपकी रिकॉर्ड चलती रहती है, लेकिन मुजीब साहब नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पैदा हुए, उनको भी कानूनी राइट्स हैं, उन्हें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और चूंकि ये यहाँ पैदा हुए, इनकी सोच जो है वो दूसरे बच्चों की, यार हमारी तरह तो सोच नहीं है, ये अपने आप को डैनिश समझते हैं, डैनिश शहरी समझते हैं, तो हकूक लेकर देना सियासतदानों का काम होता है। आप क्या कहेंगे?
2: मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे मोहतरम शाह साहब ने कहा है कि किसी ज़माने में इंसान हुआ करती थी। मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप है, एजरा ग्रुप जो, जिसका नाम है सीसा, और वो जो 67 ईयर्स के बाद जो जो लोग हैं उनका, उस अबव जो लोग हैं उस उनका ये एक ग्रुप है। और उसमें तकरीबन अगर नैरो ब्रो में देखा जाए तो ये खाली जो है फार्मर्स लेडीज जेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के, कोई वो 60 से ऊपर उनके मेम्बर हैं। वो हर ट्यूसडे को बैठते हैं काफी के लिए, बातें करने के लिए। हर महीने में एक दफा वो, या 2 महीने में एक टूर लगाते हैं चुवाली का, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसी और जगह का। ये पिछले दिनों बोनों को गए हुए थे, ये बैरारूप में को म्यूजियम में उनको बाहर लेके जाते हैं, फिर कभी कभी उनको खाने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनको कभी कभी फिल्म के लिए लेके जाते हैं, कभी कभी उनको थिएटर में लेके जाते हैं। यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे शाह साहब ने कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाए जी, ऐसी आप फ्रेंड बनाएं और ऐसे कामों के लिए वो चीज़ है, और उसके लिए आपको आखिर उनको बजट मिलता है तो वो खाना भी देते हैं, काफ़ी भी पेश करते हैं, फ्रूट भी देते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेके भी जाते हैं। तो ये पुलिया हर जगह मौजूद होता है, हर कमून में होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे में वो बात आती है कि वो जो चुदराहट है ना हमारी, वो हमारे में लेके डूब जाती है। अगर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इंसान की तरह को फ्रेंडिंग बनाए तो क्या होगा, पीछे दो बंदे खड़े हो जाएंगे, ना जी शाह साहब उसे क्यों बढ़ाते हैं, असि आप बढ़ा लीजिए शाह साहब की तरह मुझे आ गए। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि हमारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मैं भी ये कहूंगा सबको, कोपेनहेगन कमून वाले कोपेनहेगन में, एल्बर्टसोंड वाले अपनी अपनी एक ट्रेनिंग बनाएं, और ट्रेनिंग बना के बैठने की जगह लें, आपस में बैठ के बातचीत किया करें, कानून को आपस में शेयर किया करें, अपनी दूसरी जो तरजीहात हैं उस पर बैठ के बात किया करें। तो ये एक हमारे लिए जरूरी है।
0: दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूँ, चूंकि आप खुद भी सियासतदान हैं लेकिन आप ज्यादा सियासत जो है वो डैनिश सियासत करते हैं, तो मुजीब साहब आप सियासतदान आपस में बैठना ही नहीं चाहते। पहले लोग सियासतदान सारे बैठते थे आपस में, ये बड़े लोग देखे ना कि ये सारे आपस में बैठते हैं, जो नीचे होते हैं उनको नहीं, ये आपस में इकट्ठा बैठे, ऐसे हालात बना देते हैं कि लोग एक दूसरे को जो है ना वो सियासी दुश्मन तसव्वुर करते हैं।
2: लेकिन मैं समझता हूँ कि नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे काउंसलर रीजन में लोग हैं, उनको मिनिस्टरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ, उनको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। बार पिछली दफा भी हम कितनी दफा कह चुके हैं कि कम से कम जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो ये अपना एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप में मतलब लोगों को शामिल करें, पढ़े लोगों लोगों को शामिल करें, उसमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, कोई कानून आता है उसके अंदर डाल दें। लेकिन जो मैं फ्रेनिंग की बात करूं, मैं बता रहा हूं कि वो फ्रेनिंग, क्योंकि उस जो सिस्टम है उसका जो स्टूडेंट जो ग्रुप है ना उसका मैं उस सिलसिले में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको फंड भी मिल रहा है, उनको आर्टिस मिल रही है, और वो चला भी रहे हैं, और उनका मतलब के लोग जो है उसके अंदर आते हैं बैठते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे तनाई है, और लोग जो मतलब के इस उम्र में चले जाते हैं वो चाहते हैं कि हम बैठे हैं आपस में कोई बातचीत करें, कोई मुल्की हालात देखें, कोई वैसे बातचीत।
0: जी शाह साहब, इसको जरा आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, आखिर में कोई शाह साहब हाल भी होना चाहिए, हमारे पास 5 मिनट
1: जी, जी इसका हाल बस यही है कि लोग सामने आए और आकर खुलकर बात करें। ये जो मुजीब कुरैशी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखें कि हर फ्राइडे को वहाँ पे मुख्तलिफ फाइनिंग जो है, किसी का फ्राइडे को है, किसी का ट्यूसडे को है, किसी का वेडनेसडे को है, उडनसे के अंदर, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है, वहां किसी में, जैसे मुजीब कुरैशी साहब ने बोला, किसी में चौधराहट नहीं, सारे मुल्कों की, कोई टर्किश है, कोई मराको का, कोई अल्जीरियन है, कोई अफ्रीका का, सब भाइयों की तरह है, और खाना भी खा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, किसी के जुम्मे ये चीज है, वो कोई काफी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वेटनामीज भी है, सब इकट्ठे मिलके। और ये सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठे बैठते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके, तो उनमें काफी
0: कन्वर्सेशन होती है। अपने पाकिस्तानी सियासत में मुलव्वस तो नहीं होगा
1: राजा साहब, उसके अंदर काउंसलर भी आगे बैठते हैं, जो वहां पे इलेक्टेड काउंसलर है ना, वो भी आगे बैठते हैं, वो भी उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई आगे मसाइल क्या है, आप बताएं, आप फलाने जगह
2: नाश्ता करते हैं, बैठ के सारी बातचीत होती है।
1: तो अगर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा, कौन?
0: तो शाह साहब यहाँ आकर जो पाकिस्तान में मुजीब साहब बेहतर समझते हैं, जो जिनके लिए हम डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें आकर क्या देते हैं?
2: वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन राज साहब देखे, मैं अभी जो सीसम की बात कर रहा था ना, उसका एक न्यारा ब्रो का ग्रुप है, एक उसका सूद है,
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप जाते हैं, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है,
2: और उसके बाद एक आमा का ग्रुप है, अभी अभी अगस्त के आखिर में एक नॉर्थ वेस्ट का ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं वहाँ, हालांकि आमा में और सूद और में ज्यादा लोग नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप न्यारा ब्रो, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं, बैठते हैं मुख्तलिफ लेकर सारे फार्मर और 67 से ऊपर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा दो से तीन घंटे का प्रोग्राम होता है वो, दो से तीन घंटे तो कम से कम लोग बाहर तो निकलते हैं ना, बाहर निकल के ये बड़ी जरूरी, घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको घरों में बैठ के बीमारियां लगती हैं, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप बाहर निकले। तो मेरा ख्याल है इस पर सबको काम करना चाहिए अपने अपने कमूनों के अंदर, और जो कमूनों के अंदर मुंतखब हुए हैं उनको थोड़ी सी अल्लाह ताला हदायत दे दे, और उनको पता होना चाहिए कि हमारी वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, वो कम अज कम इन चीजों के लिए अप्रिशिएट आगे आए और कहें जी आए 15-20 बंदे इकट्ठे हुए, हमें ट्रेनिंग बनाते हैं, फिर उसमें आस्था से लोग बढ़ते जाएंगे, तो उसमें एक ही चीज होगी कि भाई चौधराहट किसी की नहीं है, ये सबकी ट्रेनिंग है, और सब आए बैठे काफी पिए बातें करें, 2-3 घंटे मखसूस हो हफ्ते में एक दिन, सबका दिल भी खुश हो जाए, और सब अपना आके एक दूसरे के साथ बेशुमार चीजें शेयर कर सकते हैं, हम टेलीफोनों पर भी शेयर करते हैं, जब एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
0: बड़ी अच्छी तजवीज है शाह साहब, आप क्लोज कीजिएगा।
1: जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, एक्चुअली बात यह है कि इन सम का मतलब होता है कि जो आप बहुत ही समफोन में बिल्कुल माशरे में अकेले रह जाते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ सकते हैं और उनके साथ ट्रेनिंग में मेंबर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये कम्यून जो है वो उसकी सपोर्ट करती है, उसके पैसे वो देते हैं, जितने ज्यादा मेंबर आपके बनेंगे उतने ज्यादा मेंबर लेडीज हो जेंट्स हो ये उनके लिए वो करते हैं। मसला भी यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने, जिनका मुझे इल्म है कि कई लोगों ने ऐसी फेनिक्स बनाकर वो पैसा अपने 3-4 बंदों में चौधराहट में बांट लेते हैं, और उसके बाद मसला जो है वो वहीं का वहीं रहता है, वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी जो है वो जंप करके इस तरह की चीज बनाए, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काउंसलर क्योंकि उन लोगों के अपने होते हैं वो उनको आगे नहीं आने देते, और इस तरह की फाइनिंग नहीं बन रही। लेकिन अब क्योंकि ये फेसबुक पे भी आ रहा है ये इस चीज को डैलिश जो है सियासतदान वो भी ये चाहते हैं कि इंटरग्रेशन जो है ये स्टॉप हुई हुई है इन वादा की तरफ से, इसको बहाल करना चाहिए, और ये इसको बहाल करने का यही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फाइनिंग्स बनानी चाहिए जिसके अंदर डैलिश भी आए, दूसरे भी आए, अपने लोग भी आए। ठीक है आप उनका टेबल, आधा टेबल पर वो बैठे हैं, आधा टेबल पर आप बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़हनी तौर पे जैसे मजीब कुरैशी साहब ने कहा आप बहुत अपने आप को हल्का और चुस्त महसूस करेंगे, और ये आपका सिलसिला बन जाता है। अब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि यहाँ से हम फैलियों के नाम पे पैसे लेके पीछे महल बनाए, इनको अब खत्म होना चाहिए। अब हमें यह काम करना चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें गालियां देने या बदवाएं देने की बजाय हमें यह कम अज कहें कि हमारे बड़ों ने हमें ये जो चीजें हैं, ये जो बयानात हैं, ये जो लॉज है ये हमें बता कर गए थे, और इससे हम फायदा जो है उनमें हम कर सकते हैं। जी राजा साहब,
2: मैं एक चीज मेंशन करूंगा क्लोज करने से पहले, ये जो मैं सीसम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये क्या इनका रोज व्यू आते हैं, ये आके आपको कमून का बताते हैं जी, आप कमून के अंदर आपको क्या क्या सहूलियात हैं, आप क्या क्या मदद ले सकते हैं, बकायदा एक प्रोग्राम होता है 2-3 घंटे का, फिर आपको बताते हैं कि आपके मेडिसिन में कैसे है, यानी कि जो काम हमारे काउंसलरों के हैं वो ये आके कमून से बंदे बुलवा के बकायदा हर चीज बताई जाती है कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ तक कि आपने जो फुल बक देना होता है वो कैसे बनाना है वो कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आके ना वो इन ग्रुपों में आके देते हैं, जिससे लोग खुश होते हैं और लोगों को मजीद मालूमात मिलती है। ऐसी चीजों में और ऐसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इंसान को फायदा होता है। और मैं चाहता हूँ कि सारे इस पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अक्टूबर के बाद मैं अगर एक ऐसे से मेरी मीटिंग हो जाए नैरो ब्रो में, जो नैरो ब्रो की हमारी क्रिस है, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आप इधर नैरो ब्रो के अंदर ऐसी एक कोई इंसान को बनाए कि जिसमें हम कम से कम जो लोग है ना उनको इकट्ठा बिठा सकें और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों पर बात कर सकें। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम है और इसलिए हो सकता है ज्यादा ना बन सके, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और उससे नुकसान कोई भी नहीं है, बेशुमार आपको मालूमात।

0: तो 16 अगस्त भी मनाया जा रहा है
1: जी। अब लोग दिन मनाएंगे कोई 12 को, लेकिन जो ऑफिशियल जिनके अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, जिनका फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आ गया है, तो उनका तो हमें इल्म हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ अभी अंदाजे लगा रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना।
0: तो चलें शाह साहब, ऑफिशियल तो 14 अगस्त को पाकिस्तान एम्बेसी में होता है, परचम कुशाई होती है, तो वो तो हर साल की तरह उसी तरह होगा। तो शाह साहब, अब जो सियासी मौसम है ये बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, छुट्टियों पर चला गया है, खाली सोशल मीडिया पे जो है वो जिंदा रहना चाहते हैं सियासतदान।
1: जगह जी, इस दफा सियासतदानों के बारे में जो है वो काफी लेदे हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि हम रेडियो पे ही उनसे बात करते हैं, बल्कि अब अवामुल नास जो है, आम लोग जो है, वो भी बात कर रहे हैं कि क्या फायदा ऐसे यंगस्टर्स का, क्या फायदा ऐसे लोगों का जो अहले जबान होने के बावजूद हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये चीजें जो हैं ये काफी गड़बड़ है। आप ये देखें कि 11 दिन के अंदर यहाँ पे 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना, और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स हो गए, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
0: ये
1: जो है
0: जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
1: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र के हैं।
0: इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है, वो भी तरबियत करें। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता, तो बच्चे जो हैं वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
1: राजा साहब, जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े, तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान है, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहां पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं, बाहर तो निकले अपने। ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं, तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
0: शाह साहब, हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की, आपने बात की है तो शाह साहब, अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं, तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 200-250-400-500 करोन खर्च करके आ जाता है, तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा? बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1,000-1,200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब, हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगहों पे चले जाएं, झूलों वाली जगहों पे जाएं, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नजर आती है? किसी मेले में चले जाएं, कोई आपको गुर्बत नजर आती है?
1: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने।
0: शाह साहब, महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
1: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलेट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा कर लेते थे।
0: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
1: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं। हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है। हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ियाँ रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं, अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट टाइम बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछें आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पर जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है, वो अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीज़ों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं, ड्रामा आपने लगाया देखा है, स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक कैसे, किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है। तो राजा साहब, ये जो
0: शाह साहब, हम कोई काम कानून के मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ मांस व गिले करने के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है।
1: देखिए जी, जो भी इस वक्त बात होगी, आप किसी मैंगो फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी डिजाइनर फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी आप गाने बजाने वाली महफिल में चले जाएं, यहाँ के काउंसलर्स आए होंगे, यहाँ के सियासतदान आए होंगे, वो घूम फिर के बात होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिजा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती है।
0: शाह साहब आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, शाह साहब आपसे ये सवाल भी करते चले, शाह साहब इलेक्शन, जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब, जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, کروڑوں اربوں کا الیکشن ہو جاتا ہے, جلسے جلوس ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لیڈران جاتے ہیں, ان کی خاطر تو آزا ہوتی ہے. تو شاہ صاحب جب اتنے اخراجات کرنے کے بعد جمہوریت پھر بھی اس طرح کی نہیں آتی, گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں, آپس میں کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, تو جو لوگ بنتے ہیں جنہوں نے لگایا ہوتا ہے پھر وہ انہوں نے اپنا پورا بھی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں, جی فلاں حکومت نے یہ کر دیا, فلاں ملک نے یہ کر دیا, فلاں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا. شاہ صاحب اپنے کرتوت ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, شاہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟
1: اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو شو بازی کے لیے یا اپنے کرمینل ایلیمنٹس کو چھپانے کے لیے, جو ان کا کاروبار ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ سیاست میں آ جاتے ہیں, اور جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو پھر اس کو طاقت دینے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر فرسٹریشن زیادہ سے زیادہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بات کی تو آپ نے پاکستان کی طرف اشارہ کیا ہے, وہاں پہ ایک بچے کو ڈاکٹری پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک معمولی سے میڈیکل کالج کے اندر صرف جو اس نے ڈپازٹ کرانا ہے وہ 25-30 لاکھ روپیہ ہے. اب وہ 25-30 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے گا, اس کو کون دے گا, کیا اس کو کوئی بینک ایسو مل رہی ہے, بینک لون دے رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے انجینئر, انہوں نے ایجوکیشن کو اتنا گمبھیر, اتنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں اور بس شوشا. اور کچھ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں جو فورن کنٹریز میں رہتے ہیں, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کیونکہ میں اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں. ہم لوگ جب وہاں جاتے ہیں, بچیوں کی بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں, ایک مہینے کے لیے ہم جاتے ہیں, ٹویوٹا لینڈ کروزر اور بڑی بڑی گاڑیاں ہم وہاں رینٹ پہ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ شو مارتے ہیں, یہ ہے یہ ہماری کوٹی. تو اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے, ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم یہاں کس طریقے سے مزدوری کر رہے ہیں, ہم یہاں کس طرح. یہ اچھی بات ہے کہ اب آگے ہماری جو جنریشنز ہیں, سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن, یہ اچھے اچھے عہدوں پہ یہاں پہ لگ گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے تو ہم سب مزدور تھے. یہاں پہ کون سا ڈاکٹر تھا, کون سا انجینئر تھا, کون کچھ تھا؟
0: لیکن شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, شاہ صاحب آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتائیں اور حقائق کی روشنی کو سامنے رکھ کر روشن کریں. شاہ صاحب کیا یہاں ڈنمارک میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے یا ڈینش سیاسی جماعتوں میں حصہ لینا چاہیے؟
1: دیکھیں جی, میں تو پرائیورٹی دوں گا کہ یہاں پہ ڈینش سیاست جو ہے اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, خواہ وہ پاکستانی جماعتیں کیوں نہ ہوں, خواہ وہ پاکستانی جماعتیں یہاں رکھ رہے ہیں, ان سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنی عوام کے لیے یہاں کی سیاست میں کو سب سے پہلے نمبر ون سمجھے, یہاں کے لوگوں کو انوائٹ کریں جو آئین کو سمجھتے ہیں, جو یہاں کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے 90% بلکہ 90% 99% جس وقت ہمارے ینگ کونسلر پہلی دفعہ الیکٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو غصہ تو لگے گا لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ امبس مین جو ہوتے ہیں, جو لا میکرز ہوتے ہیں, جو یہاں ہمارے کمیونوں میں یا اپنے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کو کس طرح ٹرکل کرنا ہے, ان سے کس طرح ہم نے سیکھنا ہے. وہ جب سیکھ جاتے ہیں تو 4 سال گزر جاتے ہیں یا پھر اگلی دفعہ 4 سال کے لیے وہ الیکٹ نہیں ہوتے بدقسمتی سے, کیونکہ ان کو تجربے تھے, یا پھر اگر وہ دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد کہیں اچھی نوکری کرنے ان کو مل جاتی ہے کیونکہ وہ سیاست میں رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لوگ میجورٹی جو ہیں وہ 2 مقاصد حاصل کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں, ایک اپنے فیملی, اپنے علاقے میں اپنا نام روشن کرنا, حالانکہ یہ وہی کونسلر ہیں جو پاکستان میں کونسلر ہوتے ہیں اور وہی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں, تو ان میں کوئی بڑا فرق نہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا قد کاٹ تب اوپر جاتا ہے جب آپ عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں. چلو پاکستان میں تو پھر وہ نالیاں سڑکیں اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو بتاتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہیں, یہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ایک منٹ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں کہ یہاں آ کر, میں 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال سے میں آپ کے ریڈیو پہ یہ بالکل بغیر کسی خوف و خطرے کے یہ بات کرتا ہوں कि देखे कि पूरे डेनमार्क के अंदर बॉव सर्विस जो है वो उलेनिंग उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनी डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विद वहाँ उलेनी डॉक्टरेट में खुद जाना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्यों नहीं लोग कहते कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे।
0: तो शाह साहब इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डेनिश की सियासत से।
1: जी एक दफा फिर कहिएगा।
0: तो शाह साहब इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डेनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
1: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात हैं अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखें। सियासत जो है आप जब आवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो है उनके लिए काम करते हैं। क्यों वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं। तो ये चीजें जहाँ सियासत में
0: तो शाह साहब चले आते हैं ये टैक्सा की तरफ। ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं, तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
1: ये बिल्कुल ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए रख लिए हैं ड्राइवर। और देखें बेशक ये कानून की खिलाफ वर्दी है कि ये 34-35 हजार जो मिनिमम जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लोजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पोस्ट भी होगा, आपको फोकस पोस्ट भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की जो 7 घंटे की ड्यूटी है क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहां उनका लैगर है, जहां गाड़ी खड़ी करनी है वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉसकिल्डे से 552 करोड़ के अंदर जो है वो रॉसकिल्डे से लुफ्तावन कोपेनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया और वो भी म्यूर चीज के अंदर, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है। अगर वो वोन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशहूर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात करते थे कि
0: इसका फायदा मालकान को होगा या पब्लिक को होगा,
1: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को ये है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ कर जाना चाहते हैं। आप पहली 2-3 आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2,000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1,500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1,000 में, तो वो बंदा जो है वो 1,000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाएं, फ्यून में चले जाएं, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो हैं, इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगे, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं। इन्होंने कहा जी ठीक है, हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1000 का टूर मिले, 2000 का टूर मिले, नहीं
0: टूर का मसला नहीं है। शाह साहब हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5-6 मिनट है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटें करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% इसके ऊपर फॉरनर जो है वो डेनमार्क में हो जाए या यूरोप में हो जाए, खासकर डेनमार्क की जो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपनहेगन की बात करते हैं तो कोपनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी है, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं, तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको, बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे, बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं, जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं, वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं, सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए, मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एस एम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी चीज मंगवाई है जो हमारे अपने लोग हमारे जो है जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी, वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता, छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी यही कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके जबकि आप लोग को कि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फ्रेनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिश वॉनमैन ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पाकिस्तानी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यारी बात है 10 साल फिर आ गए, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है डेनिश, मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहाँ उनको देखा कि इसके पर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है ना स्टैग यूनियन कुछ भी नहीं है, वो उनको पता था कोई चीज नहीं इन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही, मैं हाली पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं सबको ले लेता हूँ, अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे, जहरी बात है बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है और वो उन्होंने वो करना था और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले उबर ने किया है अब एसएम आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं वो 1000 भी लेके आ सकते हैं, और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया, अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है, पहले ये छोड़ा गया मार्केट में क्योंकि मैं तो आ गया हूँ, और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसा ही है। 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है। आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के, वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा। और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो दे, दे, उसके कहते हैं होनी, वो बात की बात है। अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कोई ऐसे नहीं है लोगों, वो जो बड़ी बड़ी जिनके जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े मीर लोग होते हैं, इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में। और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास, उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है। उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है, वो तकरीबन सारी वो ली है, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं। और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना या साल तक। वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप, और मैं आपको ये भी बता दूं, SM ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है, ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है, ऐप और छाक साफिया कंग फेमस खालब हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लैदा चीज है, ऐप एक लैदा चीज है, ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन उबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है। वो उबर ऐप जो है जिसने बनाया था, जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी उबर, उसने वो बेच दिया था, उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो जो उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये उबर उबर से खरीद लिया जिसने ऐप बनाया था, वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला नहीं सका था उस तरह पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था, उससे खरीद लिया था उन्होंने गालिबन 2008-09 को ये अमेरिका में आया था, 2016-17 को ये खरीद लिया गया था, उसके बाद ये फिर बाहर निकले थे पूरी दुनिया में। ये तो ऊपर की कहानी होगी मुख्तसर। अब SM ग्रीन, मैंने फिर कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो सारा कुछ होमवर्क करके आए हैं, अब उन्होंने ये काम करना है, और यहाँ से आपकी जो बालादस्ती, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बालादस्ती जो थी हमारी वॉन मैंने की, वो आपकी इसको ले पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा, वहां पर जो ड्राइवर काम करेगा वो फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है, कस्टमरों की तो बात जो कातिल शास वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बोल्ट से भी। अब इनका मुकाबला होगा वो एक लहदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमन आपके खत्म हो जाएंगे,
0: खत्म हो जाएंगे शायद।
2: वो वॉनमन
0: साहब से जाने से पहले शाह अपना कह रहे हैं, शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में।
2: जी मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शाक्षा नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो, आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमन पीछे थे, स्टैक फाइनिंग थी वॉनमनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसके मतलब था कि वो हर साल या 2 साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे, और तब ये हमारे पाकिस्तानी हम लोग रोते थे यार सानू बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे तो बिलिंग क्यों दें, बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है रोड के ऊपर, गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें। इस टाइम 4300 गड्डी है पार्टी कोपनहेगन दे विच, डैन टैक्सी उबर और ड्राइवर और आमा और ये बोल्ट और ये सारा कुछ, ये अपना खिपना उन चक्स मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है, और हर रोज मुंशेरिंग होके आपकी 10-15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही है क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है। और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा, ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है आप यार? डनवारक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी और 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है शुरू, वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन एसएमबी आ गई है, उसके नीचे लग के आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे। जो पढ़े चला रहे हैं ठीक है, उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया है, मैं देख के हैरान हो गया। मैं कह यार ये डैनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको? उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं। जो पहले थे चंद, शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं, कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया। उस जो है जो जो जो जो दूसरी जो ओवरसीज हैं, जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन योगोस्लावियन और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा अच्छे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं। लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है ना असी पिज्जा छटना है। यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी। डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का।
0: लेकिन इसमें ये भी शामिल करना था, पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी।
2: वो तो चलो एक पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी, ये भी ठीक हो गया। चलो शाह साहब को मौका दें, उनको भी जाना होगा।
0: आपने शायद की बातें सुनी, उसने बड़े तफसील से बातें बताई, आप करते भी रहते हैं, आप क्या कहेंगे शाह साहब?
3: जी मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ शायद की बातें सुन के, कि मेरे बात अगर कोई यहाँ पे अपनी आवाम को कोई एजुकेट कर रहा है तो वो ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। देखें अब फ्यूचर क्या हो गया, हम फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर ये हो गया है कि जैसे ग्रीन टैक्सी ने ड्राइवर जिनको शौक है गाड़ी चलाने का, उनको फिक्स पे कर दिया है। अब जब ये फिक्स पे हो गया तो इसमें ड्राइवर को वाकई ही बहुत ज्यादा सहूलतें मिलेंगी। लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वोन में अपने आप को वॉनमैन समझते हैं लेकिन वो वॉनमैन नहीं है। उनको एक ट्रिलैल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है, जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस ट्रिलैल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो पुलिस को कह देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार लेते हैं, आपका ट्रिलैल से खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए। मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए। अब वो आ गए, ये अमीर आदमी है, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया, तो अब इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वोमेनशिप जो है, जो तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही है, जर्मनी में चल रही है ऐसी, तो मैंने कहा वो उसके साथ उबर भी चल रही है, दूसरी कंपनियां भी चल रही है, तो आप ऐसा करें अपनी वॉनमैनशिप जो है पुरानी इसको रखें, और बकायदा कम्यून जैसे ह्यूमन नेवन देती थी ह्यूमन नेवन रहे, और वो जो है वो जो बिविलिंग्स है या वो टिलहाल से जो है वो इशू करें। लेकिन इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, हम लोग लालच में आए कि हम तो बहुत ज्यादा गाड़ियां रखेंगे, उनको बेचेंगे और इस तरह, लेकिन आगे से उल्टी जूती जो है वो हमारे चेहरे में पड़ गया। मैं 50 साल से ऊपर मैंने टैक्सी चलाई है डेनमार्क के अंदर, और मैं तो इस चीज से दुखी हूं कि उस वक्त एक वॉनमैन जो था, एक कैब ऑनर जो था, उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी स्वाय अदालत के, उनका वो ग्रीन नंबर प्लेट कोई फ्यान नहीं कर सकता था। अब जो है ये सिर्फ जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो जिस वक्त दिल चाहे बंद कर दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये डैनिश कानून है। तो सबसे बड़ी शायद इन्होंने ये बात की कि जब उबर को इन्होंने कहा कि आप ऊल ऑडिट हैं और आप यहां से चले जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो उस वक्त उबर जो थी वो ड्राइवर के रंग में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी और उसके बाद दूसरी सेल्स के भी इसी तरीके से ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। ये इनकी मन पर इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक मिनिस्ट्री ने उसी दिन जिस दिन उबर को बैन किया गया उसका हाइब्रो प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल जो है को बंद किया, उसका जो डायरेक्टर था वो ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसने जॉब ले ली और वो उसको डायरेक्टर टिल्स्यून, ट्रैफिक टिल्स्यून का जो था उसको अपना डायरेक्टर बना दिया गया। उसके नीचे ये सारे लॉसवोन और ये वावोन और ये सारी टैक्सी सेल्स के उसके नीचे आती थी। उसने कानून ही ऐसा बनाया, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 2019 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये देते हैं कि अगर आप वॉरमैनों को इस कानून के को पसंद नहीं तो आप आए हमारे साथ बात करें, हम इसको चेंज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें यह कानून ज्यादा मंजूर है क्योंकि अब हर कोई आदमी जो है वो टैक्सी ले सकता है। तो उसकी वजूहत जो है वो अब सामने आ गई है और अब बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे मैं तो अपने जितने पुराने वॉरमैन चल रहे हैं या नए यंगस्टर उनको ये कहूंगा कि खुदारा मत बने वॉरमैन, बल्कि आपको अगर फर्स्ट जॉब मिलती है शोफर मिलती है तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अप हुई नए कानून में आप फंस जाएंगे और वो आपकी टैक्सी भी जब्त कर लेगा। बहुत सारे वॉरमैनों की यहाँ टैक्सी जब्त भी हुई है तो वो आपको लॉस होगा, आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। यहाँ आपने शौक पूरा करना है, जाए फिक्स तनखा ले, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये जो ग्रीन टैक्सी आई है मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है।
0: और चलें शाह साहब आ गया, मैं मियां मुनीर साहब, बड़ा तजुर्बा है एक ब्रांच के, ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे सदर रहे और इनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियाँ साहब आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
4: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रहा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम,
3: वालेकुम सलाम
4: को, सुनने वालों को, मेरे मोहतरम शाह साहब, मैं पिछले कोई आधा मिनट मिनट सुन रहा हूँ इनकी गुफ्तगू, आपका मौजू मैं समझ गया हूँ स्टार्ट में, तो बहरहाल आप सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
0: शुक्रिया मियां साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा इस फील्ड में, नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फायदा होगा नुकसान होगा, ड्राइवर को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा, शहर में ये गाड़ियां आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना हो दो दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियां साहब ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियां साहब आप बताएं हमारे सामईन नाज़रीन को।
4: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ट्रांसपोर्ट टैक्सी बसेस जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, एक टांगा से लेकर और अब जो चीज़ों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न ज़माना हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा शाह साहब ने मैंने, कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी कंप्यूटर सारी चीजें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात अब कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है, कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है, कभी भी इतना क्या कहते हैं आप ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपेनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है, इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में। डेनमार्क में, मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ, शाह साहब मेरे استاد بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں. میں نے پہلے دن سے ان کے ساتھ ٹیکسی شروع کی تھی, اور ٹیکسی میں یعنی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کتنی تبدیلیاں آئیں. بہرحال ان جو فکر کی ہم بات کریں گے, نیا جیسے ایک گروپ آیا اس کی بات کریں گے, تو پھر اس طرح ہی ہے کہ کوپن ہیگن میں کسی زمانے میں 1800 اور کبھی 2100 پھر 1800 پھر 1850 اس فکر میں بہت عرصہ ٹیکسیز رہیں. وہ ضرورت تھی, وہ کنٹرول تھا, وہ نظام تھا, یہ 13 کمونوں جو ہیں ان کا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی آئی. آج سے کوئی 5-7 سال پہلے یہاں اوبر آئی, یا 4-5 سال پہلے. ڈینمارک کا ایک ٹیکسی سسٹم ہے, ایک قانون ہے, پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے اور آج بھی ہے. اب آج بھی ای یو سے ہٹ کر, باقی لوگوں سے یا ملکوں سے ہٹ کر, ڈینمارک کا ایک اپنا شخصی لو ہے جو اسے فالو کرے. اس میں تبدیلیاں آئی ہیں, جو اسے فالو کرے گا وہی یہاں ٹیکسی چلا سکتا ہے, اور اس میں کچھ بالکل کنڈیشنز ہیں. لیکن جو ہوا یہ ہے, میں انفارچونیٹ کہوں گا, بدقسمتی سے اس میں جو تبدیلی آئی اس میں یہ مثلا اوبر یہاں آ گئی, بولٹ یہاں آ گئی, اب یہ نئی جو کمپنی آئی اس کی ہم بات کریں گے. اس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں, میں کل کی بات کرتا ہوں, میں نے کل میں یعنی کہ کل شام کو ٹیکسی سے میں نے چلائی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ روڈ پر جب انسان ہو اس فیلڈ کا ہو تو پھر وہ دیکھتا کہ کیا ہو رہا, یعنی کہ سروس کس طرح دی جا رہی ہے. اور شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ ہول واکس گیٹ اسے کہتے ہیں, کافی بکچھا, اس کے سامنے میں ہوں, گزر رہا ہوں تو دو ترکی کھڑے ہیں ایک لائن میں. جناب اس طرح ہو گیا, نکل گئی منہ سے بات, کوئی بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے مجھے روک کر, تو ایک بندہ جو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا وہ مجھے کہتے ہیں قد شاپ لے جاؤ, اس لیے کہ وہ چھوٹا ٹور تھا. اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ جو چیزیں میں نے اس لیے مثال دی کہ اب وہ لوگ جو نہ سروس مائنڈ تھے, نہ انہیں وہ اس قانون یا اس نظام کو سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں, اب وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں. افراتفری پھیل گئی ہے. جن لوگوں نے اسے ایز اے ایک بزنس, ایک اچھی انویسٹمنٹ کی تھی, ایک اچھا نظام بنایا تھا اس ملک کے اندر, ان چیزوں کو وائلیشن بھی کی جا رہی ہے, ان میں بہت سارا اپنا بھی وہ نقصان کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ یہاں کے پولیٹیشین نے, آپ بالکل بات کرتے رہے, میں سنتا رہا, میں بھی جانتا تھا, میرے پاس ایک ذمہ داری بھی رہی. ہم نے دیکھا کہ یعنی کہ یہاں جس طریقے سے یہ دوسری کمپنیز آئی ہیں ان کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں. وہ پیپروں پر تو وہ پوری کر رہے ہیں جو یہاں کا وہ ہمارا ٹیکسی لو ہے, جس کے لیے ڈرائیور کے لیے کنڈیشنز ہیں اور وومین بننے کے لیے. لیکن ان سائڈ میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت ساری دو نمبری ہو رہی ہے, وائلیشن ہو رہی ہے, غلط ہو رہا. ڈرائیور سروس مین نہیں ہے موسٹ آف دیم, میں کہوں گا تھوڑے نہیں بہت سارے. ابھی ہم نے دیکھا روسکل فیسٹیول تھا, میں بھی فیلڈ میں تھا, کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر, پھر میں مثال اپنی دیتا ہوں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا مجھ سے 11 لوگوں سے پہلے جا کر, تھوڑا سا پاج تھا, سٹک کے ساتھ چلتا تھا, پہلے 11 لوگوں نے اسے بٹھایا نہیں گاڑی کے اندر, اپنی ٹیکسی کے اندر, اس لیے کہ اس نے وہاں سے روسکل سٹیشن پر جانا تھا جو لیس دین 100 کروڑ کا ٹور تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہے وہ کہ جو بے ترتیبہ اور بغیر کوئی یعنی کہ سسٹم کو صحیح مینوں میں وہ آرگنائز کرنے کی یا بنانے کی کوشش یا ایک سلسلہ تھا, اس سے ہٹ کر چیزیں چلیں گی.
0: اب اس کا حل بتائیں.
4: اس کا حل یہ ہے کہ اس ان چیزوں میں یعنی کہ ہم تو اپنے کمپنی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, ٹیکس آف ایئر کا فیمس ہاؤس جو ہے اس کی تو ایک کنڈیشن ہے, ابھی تک ڈرائیور جو ہے ایک تو اتھارٹی کی طرف سے آپ کو لائسنس جو لینا ہے, پھر وہ جو ہمارا فیو اکارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد شاہ صاحب بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, ہم خود ٹاکسا کے اندر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, जिसमें हर ड्राइवर को और ड्राइवर ही पहले बनता कोई या वॉनमैन बनने से पहले भी सेम कंडीशन है कि वो यानी कि पहले टेस्ट देता है जिसमें जुबान का होता है, कम्युनिकेशन जरूरी है, हम डेनमार्क में रहते हैं, डेनिश आनी चाहिए, और दूसरा जो है वो उसे कोरस करवाया जाता है जिसे कि आपने किस तरह हैंडल करना है, सर्विस दे देनी है। ये तो थी वो, और मैं भी अपनी कंपनी की कोई मशहूरी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम यहाँ। अब मैं जो थोड़ा सा सुना आधा मिनट वो था शाह साहब वो ग्रीन MS जो है टैक्सी उसके बारे में बात कर रहे थे, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, एक नई चीज है वो जो आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ियां आ चुकी हैं रोड में। मैं पिछले दिन भी कहा था मेरी वर्कशॉप की सेकंड गली में उनकी गाड़ियां तकरीबन 250-300 गाड़ी पार्क है, पूरी तौर पर तैयार है, अभी उन्हें ड्राइवरों की कमी है, ड्राइवर वो अब पाइपलाइन में होंगे तो फिर ही वो आएंगे ना जो मतलब गाड़ी चलाएंगे उनकी, और वो काफी कोशिश में आ जाएंगे, कोशिश उनकी बहुत सारी है कि और उन्होंने तनखा वगैरह फिक्स और वो अच्छी अमाउंट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ सारा सिस्टम, लेकिन ओवरऑल ये क्या होगा? ऊबर का किसी को पता था आज से 20 साल पहले ऊबर शुरू हुई अमेरिका में, वो यूरोप में आ गई, इंग्लैंड में उसने यूरोप में सबसे पहले आए, आस्ता आस्ता फिर आज यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर मुल्क में चल रही है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने सिस्टम को मार्केट को कैचर कर लिया। आस्ता आस्ता यानी कि होगा यही कि वो सारी सिस्टम को कैचर कर लेंगे, फिर वो सर्विस जो मैंने कह दी है पहले जो इस वक्त चल रही है, और फिर यानी कि वो मार्केट को कैचर करके फिर ना वो डिस्काउंट रहेगा ना वो सर्विस रहेगी, सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि कितनी गाड़ियां हैं और कितनी परसेंटेज वो लेंगे, जो आज वो लेट्स है 15% ले रहे हैं, कल को वही 25% लेंगे जो किसी और ने नहीं पे करनी, मैंने और आपने एज ए कस्टमर पे करनी है। इसी तरह एक बंदा जो वियतनाम का है जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है उन्हें पता नहीं कि कहाँ क्या उसे किसी ने आइडिया दिया है, उसने जाकर एक कंपनी से एक कोरियन कार खरीदी है जो डेनमार्क की टैक्सी का मतलब है कि कार साइज जो कंडीशन है वो भी जरूरी है वो पूरी करती है, वहां से उसने बहुत बड़ा फेयर लिया है। फिर वो सबसे पहले उसने शुरू ही दुनिया में कहीं और नहीं है ये ग्रीन टैक्सी, उसने एक आइडिया अपना बनाया कि यूरोप जो है उसके अंदर मैंने जाना, क्योंकि यूरोप का एक सिस्टम है, यहाँ एक जिस तरह क्या कहते हैं एक निज़ाम चलता है, निज़ाम जिंदगी चलता है जिसकी जरूरी जरूरियात है, उस मार्केट में उसने जाना। वो हॉलैंड पहले गया, वहां के कानून जो है उसे इजाजत नहीं मिली, तो उसने जाहिर प्रोफेशनल तरीके से उसने पढ़ा कि ये डेनमार्क की चीजें जो है ना पूरी कर सकता हूँ, यहाँ जरूरत भी शायद है, तो उसने डेनमार्क आकर अप्लाई किया, उसे इजाजत मिल गई है। अब वो टैक्सी जो है यहाँ 600 टैक्सी की तैयारी में फिलहाल, जहां तक मुझे पता है 400-350 गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी है, जिनमें से अभी तो चांदे की चल रही है, हमें पता आ जाएंगी वो भी रोड पर।
0: लेकिन मियां साहब ये कोपेनहेगन में होगी, पार्क कहाँ करेंगे?
4: पार्क जो टैक्सी पार्क होगी रोड पर नहीं चलेगी, वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा, इन्होंने चलना है टैक्सियां तो मतलब पार्क तो फिर यानी के थोड़ी देर के लिए वो घूमे फिर रहे हैं जैसे हम घूमे फिर रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, बुकिंग हो रही है, होता ही है। राय साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपेनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना मसलन लेट्स से 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती हैं, जिनमें से लेट्स है कि 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी जहाज और वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो اور ٹیکسی جو ہے وہ کسٹمر کے بغیر اگر خالی چلتی ہو تو نقصان ہی نقصان ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں.
0: میاں صاحب یہ تو کاروباری بات ہوگی نا, لیکن اس نے دائیں بائیں مڑنا بھی ہے تو باقی ٹریفک بھی ہوگی, ٹریفک کے مسائل کیسے ہوں گے؟
4: دیکھیں ٹریفک کے مسائل تو پھر جسے ہم کہتے تھے کہ کوپن ہیگن ایک بہت خوبصورت شہر ہے, اس میں وہ لندن پیرس کی طرح باقی ملکوں کی طرح ٹریفک نہیں ہوتی یہاں, یعنی کہ بڑا ایک سسٹم بڑا مطلب ایزی چل رہا ہے, ماحولیات ساری چیزیں بڑا کنٹرول ہے, تو وہ تو چیزیں پھر ظاہر ہے ٹریفک میں نہیں رہیں گی. بیزی آور میں تو بہت زیادہ اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو یہ چیز
0: چلے میاں صاحب آپ کا ورژن آ گیا, شاید آپ نے باتیں سنی میاں صاحب کی, شاہ صاحب کی بھی, شاہ صاحب کی بھی طرح چلیں گے کلوز کریں گے بعد میں وہ, تو شاید آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کی باتوں کو, کوئی اور کیا اضافہ کریں گے آپ؟
2: راجہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا مجھے سوال ایک سمجھ آیا تھوڑا سا میری بھی ذہن میں, کہ آپ نے کہا پارکنگ کہاں ہوگی, وہ چھوڑو میں اس کو ایسے لے لیتا ہوں. ایوزو ہولمن میں جہاں پر میاں صاحب کا دفتر ہے اس کے قریب ہی کنیل ہولمن ہے, ادھر ہے ان کا بہت بڑا جہاں پر ان کی 600, 400 یا 350 گاڑیاں کھڑی ہیں, اس سے زیادہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے جو پرائیویٹ پارکنگ جو ان کی اپنی ہے وہی ادھر بھی 200-300 گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے پرائیویٹ, اندر ٹیکسی ہیں, جیسے گرل کے اندر جو پورٹ بنا ہوا ہے جیسے پورٹ کھولتا ہے اس کے بعد ٹیکسی ان کی پارک ہیں, ادھر پارک کرنی ہے آپ نے ٹیکسی. جب میں نے انفارمیشن لی تھی جس ڈرائیور نے کام ختم کرنا ہے گاڑی ادھر پارک کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی گاڑی وہاں سے اگر آیا ہوگا چلا کے لے جانی ہے. اور سٹارٹ میں یہ بھی ہے کہ اف دا آؤٹ ہیل اگر ان کے پاس ڈرائیور نہیں ہے ابھی گاڑیوں میں تو وہ گاڑی اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے, وہ اس کا پہلے اسے پوچھنا ہوگا گھر کدھر ہے, کس نوعیت کا ہے, اور وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی اور سٹارٹ میں جو ایک گاڑی کے اوپر ایک شوفیر ہے تو وہ پھر گاڑی گھر لے کے جا سکتا ہے اور گاڑی کو جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ میاں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ان کی باتوں سے میں متفق ہوں, ظاہری بات ہے وہ اس برانچ سے 40-45 سالوں سے منسلک ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ آپ کی میں پھر بتاؤں گا 66 نے ان کے ختم ہونے کے بعد ہوئی ہیں, یا اس کو ختم کروایا گیا ہے جیسے بھی کروایا گیا ہے, اگر وہ ختم نہ ہوتا تو آج اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بھی بتاتے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے بتاتے تھے کہ یار وان مین تھے وہ بھی, تو وہ بتاتے تھے کہ 1600 گاڑیاں ہیں, 1800 گاڑیاں ہیں, 1700 ہیں, کبھی زیادہ سے زیادہ 2100 ہوئی تو تب. اور ان کے کنٹرول میں اسی لیے تھا کہ آپ کی 13 کمونیں تھیں کہ اس طرح کا جو ہے جو وہ گند نہ مچ جائے. چھوٹا سا شہر ہے, چھوٹا سا ملک ہے, اور آج دیکھ لیں 4000 کے قریب گاڑیاں ہیں اس وقت, اور اس میں اور گاڑیاں بھی ہونے جا رہی ہیں, اور یہ سارا خود کچھ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. کیسے کیا ہے یہ ابھی شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ تیار کر لیا تھا, جو بندے تھے اس کے اندر ڈینش کچھ انوالو, جیسے بتایا کہ ہر ملک میں ہر چیز ہوتی ہے, یہاں پر جو ہے مل بیٹھ کے پیار محبت سے غائسہ کرا کے دو دو پانچ پانچ لاکھ کے غائسے بھی ہوتے ہیں, وہ غائسے اس طرح کے کروا کے پیار محبت کے اندر سارے کام لیے جاتے ہیں, اور اوبر نے ایسے ہی پیسہ پھینکا ہے. میری بات کو آپ ذرا کہتے ہیں فالو کر جائیں, اور اسی طرح جو دوسری آئی ہے یہ بھی ایسی کر رہے ہیں, پیار محبت کے ساتھ آپ بڑی چیزیں کروا لیتے ہیں, اس میں یہ ہمارے ملکوں کی طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہی ہو جائے ہر چیز میں, تو وہ پھر آپ کا جو ہے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں پیار محبت کے ساتھ جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پیار محبت کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا, اور اس نے یہ مناپلی ختم کرنی تھی. ڈینش کچھ لوگ تھے, کچھ لوگ اس کے پیچھے ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ وون مین کی جو ہے نا فارنروں کے ہاتھ سے ختم کی جائے. اس میں ہم مانیں وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کروا کے, ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ باہر سے گاڑیاں لے کے آئیں, کبھی اوبر آ گئی کبھی آ گئی, اس کی تو اچھا بھلا چل رہا تھا, اس کی متحمل نہیں تھی. انہوں نے دیکھا یار اتنے 97% 98% فارنر ہو گئے ہیں, 80-90% وومن سارے فارنر ہیں, اور یہ پیسہ سارا ان کو جا رہا ہے, اس کی تکلیف تھی. ڈنمارک میں خاص کر میں نے یہ دیکھا ہے, دوسرے یورپ کے ملکوں کی بنسبت میری یہ رائے ہے, ہر کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, یہاں پر وہ ایک لمٹ تک کسی فارنر کو امیر ہونے کی اجازت دیتے ہیں, اور یہ ان کا سسٹم ہے, وہ پھر سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے, وہ اس کے مطابق وہ پھر وہ سسٹم جو ہے نا اس کو کرتا ہے فالو, کیونکہ یہ آپ کو کی آگے
0: تو شاید کیا یہ آپ لوگوں کے سسٹم میں بھی کوئی میر جعفر میر صادق تھے؟
2: یہ تو میاں صاحب بتائیں, یہ تو میاں صاحب بتائیں گے بڑے ہیں.
5: میں رائے صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے برخوردار شاہد بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں شاہ صاحب کی میں تو ابھی اٹھا ہی ہوں, جو سچی بات ہے یہ ساتھ میں گرم پانی پی رہا ہوں, آپ نے میسج لکھا تو ہم حاضر ہو گئے. شاہد آپ کو بہت بہت سلام.
2: جی
5: میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, آپ کا تجزیہ, آپ کے جذبات, آپ کی سوچ میں بہت زیادہ اس کی قدر کرتا ہوں. آپ ایک دلیر انسان ہو, ہمیشہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہو, لاجک اور پڑھے لکھے انسان ہو. میرے تو آپ بیٹے بھی ہو.
0: ہمارے شاہ صاحب اس دل ہیں؟
5: نہیں نہیں نہیں, شاہ صاحب تو ہمارے بڑے ہیں, ایسے نہ کریں. یہ جو نا یہ جو سکھ ساک آپ نہ کیا کریں. میں اس برخردار کی شاہ صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں, وہ کہتے بھی ہوتے ہیں.
2: راجہ صاحب میاں صاحب کی جو گود نہیں ہے اس کے اوپر میں, انہوں نے مجھے کھلایا ہوا ہے.

0: ठीक बात की है, और राजा साहब ने दो तीन दफा पार्क की बात की है। अब राजा साहब शॉर्ट ये करता हूं कि जो डेन टैक्सी है, ये ग्रीन वाली, इनकी तकरीबन 1600 गाड़ी हो चुकी है डेनमार्क में इस वक्त, प्लस इससे भी प्लस है मेरे ख्याल में, मैं आखिरी फिगर नहीं जानता। लेकिन आपने देखा उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, बात पार्किंग की नहीं है, बात टैक्सी सिस्टम की है। टैक्सी एक जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत है। उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा था, जो निजाम चल रहा था, जो सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए कुछ कंडीशन थी, उनको किस तरह वायलेशन उसमें हुई है, और बाहर से आकर कंपनियां, उन्होंने इस सिस्टम को, इस बिजनेस को कैचर कर लिया है। पहले एक ऊबर था, फिर एक बॉल्ट था, अब एक तीसरा फार ईस्ट से आकर एक कंपनी जो है उसने यहाँ डेरे डाल ली। ये है हम लोकल्स के लिए, हमारे लिए एक एक प्रॉब्लम। और शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही है। अब मैं कल कुछ लोगों के दरमियान था, जो जिनका तीन चार का कियोस्क के साथ तलक था, आपको पता क्या हाल है उनका, यानी कि बहुत बुरा हाल है। क्यों? कि ये सारी ठीक है ओपन, मैं कहता हूँ शायद कि जो चीज पब्लिक के लिए इजी हो, पब्लिक के लिए अच्छी हो, वही होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कुछ लोगों पर कंडीशन लगा दें, दूसरों को आप रिलीफ दे दें, या निजाम इस तरह बना दें कि वो उनका सारा कुछ जो है वो जाता रहे और दूसरे सारा कुछ लूट कर ले जाएं। मैं ये नहीं,
1: जी
0: मेरी
1: जी
0: ये सोच है। जी
1: मियाँ
0: साहब,
1: साहब, आपने बात की, शाह साहब आपकी तरफ चलते हैं। शाह साहब, मियाँ साहब आपकी सरपरस्ती में, आपकी गोद से निकले, मियाँ साहब की सरपरस्ती में शायद गोद से निकले, तो ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। ये 40-35 साल का जो तजुर्बा, ये बड़ी चीज़ होती है। ज़ाहिर है, जब किसी इंसान के पास तजुर्बा होता है, उसने 30-40 साल पहले की जो चीज़ें हैं वो देखी होती हैं। नए आने वालों ने तो फिर वो 30-40 साल लगाएंगे तो वो देखेंगे। तो शाह साहब, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं?
0: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको सच्ची इंफॉर्मेशन दूं कि जब मियां मुनीर डेनमार्क में आया था, ये बच्चा था, और इसने अपने बचपन में डेनमार्क की सियासत को बड़ी गहरी नजर से देखा, और बड़े इस समफोन को इसने समझना और सुनने के लिए इसने हर आदमी जहां पे भी ये एक्टिव हुआ, सोसाइटी हो या डेनिश प्रोग्राम हो, वहां इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये इसकी अपनी काबिलियत है और इसे सीखा है, और ये सीखने से आज ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। अब मैं शायद को एक बात बताना चाहता हूँ। शायद देखे, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त 70s के अंदर यह था कि डेनिश लॉ यह था कि तुम वो एक है मेयर द इन वन मैन स्केल, एक है मेयर द टू विविलिंगन। अच्छा, ये पूरे डेनमार्क का कानून था जिसके अंदर खाई ओल्सन ने उस वक्त सिग्नेचर किए हुए थे, और ये लॉ जो था वो ये ट्रैफिक मिनिस्ट्री की तरफ से था। लेकिन पूरे डेनमार्क के अंदर आप यूलैंड में चले जाए, वहां पे भी दो दो वन मैनों के पास गाड़ियां थी, लेकिन कोपनहेगन के अंदर जो थी, मियां मनीष को भी पता है कि यहाँ पे टाक्सा मोटरवे, दूसरी जगह कोडन में आगे पीछे एक एक बॉम्बे के पास 50-50 गाड़ियां भी थी, 40-40, 30-30 गाड़ियां भी थी। तो यहाँ पे मोनोपोली थी, और ये चीज वो वाजिया कर रही है कि यहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो, जैसे आपने कहा कि राइजे राइजे, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप यंग हैं, मियां मनीर हैं, ऐसे और चंद एक दोस्त मिलके इन सारी चीजों को, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं, आप लोग आगे जाके एक्टिव हो, तो आज भी ये कानून जो है कोपनहावन टाक्सा, जो इस वक्त बची हुई संस्कृत है इस उग्र और दूसरों से, आप लोग आज भी ये मसला पुट आप कर सकते हैं कि ये जो लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉ फोर्सलेस जो है, इसको डिमोलिश किया जाए, और आइन के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे वापस टैक्सी जो ह्यूमन नेवन है उसको लेके आए, ताकि यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबेस लूस होंगे, जो आजकल टैक्सी चला रहे हैं और ये जो एनसेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो क्राइम चल रहा है, ये इसको रोकने के लिए आज अगर आप इकट्ठे ना हुए, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ऊबर भी अनसेट करेगी, बॉल्ट भी अनसेट करेगी, और ये जो ऑलरेडी है या कोई एक और कंपनी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि

0: 200 करोड़ का टूर कोपेनहेगन कूलबैनगॉन या कहीं से भी 200 का टूर जो है मिनरल चीज के अंदर आप लेके लुफ्तामन जाएंगे और ड्राइवर बेचारे का क्या असर हो रहा है। तो ये चीजें जो है एक ड्राइवर जो है वो 30,000 में से टैक्स दे के हर एक चीज दे के तो वो 20-22 हजार या 20,000 करोड़ में वो सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसने फैमिली लेके चलना है। तो इसके ऊपर ये बेहतर है कि आप लोग स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, नए कानून के मुताबिक आप लोग जो है वो बाहर निकल के किसी किस्म की हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इकट्ठे होके कहीं सामलिंग करके कहीं आप इकट्ठे हो जाएं, वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर से लेके आप फलके सिंह के जो ओम्बुड्समैन है उनको और फलके सिंह की जो उल है आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या बोनमैन है हमें क्या तकलीफ आता है और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादती हो रही है डेनमार्क में उसकी वजूहत क्या है। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, लेकिन क्या हम
1: लेकिन
0: इकट्ठे
1: शाह
0: हो
1: साहब
0: सकते हैं,
1: पेंशन वाला
0: मसला ये है।
1: 8,500 पे गुजारा कर सकता है, तो ये 30,000 पे गुजारा नहीं होगा?
0: देखिए जी, जब पेंशन वाला ना उसको 8,000 के साथ उसको बोली यूज से मिलता है, उसको बड़ा कुछ मिलता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे। तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4 हजार करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है, रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं मियाँ साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है, ये पेंशनर है, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूं और इससे असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं, तो लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें आप अच्छाई से रहे और सच बोलें तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: ठीक शाह साहब, प्रोग्राम यहाँ साहब
0: मैं
1: ख़त्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें, तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, आ रहे हैं, एक आज कल में काफ़ी प्रोग्राम होंगे, उसके बाद 14 अगस्त भी आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे, नए जनरल्स बने, 4 स्टार बने, कुछ सुपर सीट, इस पर भी बात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे, आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियाँ साहब,
2: मैं असल में जो सच्ची बात है, मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा, आपका मैसेज आया
1: तो
2: तो
1: मियाँ
2: मैं आया
1: साहब आप
2: था।
1: क्यों परेशानी में लेटे हैं? आप काम काम सदर नहीं रहे
2: नहीं
1: इसलिए?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है, तो जोर के फौरन बाद तो मैंने वहां पहुंचना है। अभी कोई तैयारी नहीं, अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया, फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं बड़ा शॉर्ट सा, मैं माजरत के साथ उसके बाद बात हो सकती है, लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी, शाहिद ने भी काफी बात कर दी, मैंने भी कर दी, ये सिलसिला इस तरह चलना। वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमंस न्यून का जो कंट्रोल था, जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था ड्राइवर को चेक करने का, बैलेंस रखने का, वो अब टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब 2 नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, तरह तरह का तरीका कार अपना लिया गया, जुबान आती नहीं है, आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें, यानी कि तादाद से टैक्सीज आ गई हैं। ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही, मैं 2-3 में मैं गया हूँ और 6 जो अब तक हो चुके हैं और 2-3 अभी और होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन मैंगों की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में, यानी कि एक बहुत बड़ी, ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा तलक है, वहां के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है। तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं, जिधर भी हुआ, ब्रॉनबी हो या अर्बसनोंड हो, बेलरोप हो, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। मैं भी उन लोगों में हूँ कि इंटरटेनमेंट हो, सोशल गैदरिंग हो, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए, एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात, हालात, बात हो, तो ये एक अच्छी अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है, देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह जो
1: मियां
2: जरा
1: साहब
2: लाल
1: नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है।
2: देखें वो, मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से, और जो सफर कर रहे हैं हर जगह, जो मुश्किल में है। मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ पिछले 40-45 साल से, वो ही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है, आपको भी पता, आप इन्वाइट भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम तरीके कश्मीर जो है वो दिन मनाने जा रहे हैं। ये आपको पता कि इस दिन स्टेटस जो है हिंदुस्तान ने 370 जो है वो चेंज कर दिया, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह कल फाइनल होगा कि किस जगह वो मेरी वर्कशॉप में होगा या कहीं किसी और जगह जो है वो इंशाल्लाह एक हम अपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जगेती और हिंदुस्तान की जो करतूतें हरकतें जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं उन पर बात करने के लिए और अपना मैसेज देने के लिए इंशाल्लाह एक गैदरिंग होगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है बाकी चीजें, अगर इजाजत है तो मैं ये कहूंगा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह यौम आजादी का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं, बैसी में प्रोग्राम होगा मुझे पता है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी कर रही है, स्कॉलोन जो मीटअप है 9 से 13 जो जगह है उसे, वहां हम बहुत बड़ी गैदरिंग जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, जिसमें इंटरटेनमेंट भी होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप सब होंगे, तो हम मिलकर अपने प्यारे वतन का जो जश्न आजादी का दिन है वो इंशाल्लाह हम मनाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ने आपको पता हमेशा अपना मरकजी किरदार अदा किया है, तो हम तैयारी उसकी सारी हो चुकी है, मेहमान जो है वो पाकिस्तान में वो भी तैयारी में है, और यहाँ हम आपकी दुआओं से
1: मियाँ
2: आपके
1: साहब वो
2: तावन
1: हॉल
2: से।
1: में मनाएंगे या खुली जगह?
2: नहीं जी, हमने इस वक्त जो है यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वेदर और सारी चीजें जो है वो, और उस वहाँ कुछ कंडीशंस भी है, हम हॉल में मनाने जा रहे हैं। वो हॉल जो है वो तकरीबन 1000-1200 बंदे का हॉल है, और वो हमने भी बुक करवाया हुआ था, तो अब हमने हमारी मीटिंग थी, हमारे सदर साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले आए हफ्ता पहले, कल हमारी फाइनल मीटिंग थी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्कॉटलैंड में जो हाल है और उसमें करेंगे, और आप लोगों के तावन और अपने अपने प्यारे वतन के जज्बात में, प्यार मोहब्बत में, मिलीनत में, अल्लाह ताला का नाम, पाकिस्तान से मेहमान, ताजा तरीन सारी जो सूरत हाल है, और एक बेहतरीन किस्म का वहाँ डिनर भी होगा, और उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान से कोई सिंगर जो है अच्छे वो आ रहे हैं, क्वाली का प्रोग्राम भी होगा, ये हमारा
0: मियाँ साहब, मियाँ साहब ये
2: जी।
0: भी क्लियर कर देना कि ये फैमिली प्रोग्राम होगा।
2: हाँ शाह साहब देखा ना, फिर आप बुजुर्ग है ना, ये फैमिली प्रोग्राम है, यहाँ फैमिलीज के साथ भी आप आए, मैं आपको पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से पर जोर दावत देता हूँ, हमारी बहनों बेटियों के लिए एक खास इंतजाम होगा, और जिस तरह भी अगर कोई फैमिली फैमिली के साथ बैठना चाहे तो उसके लिए हम उस तरह का भी यानी कि एक टेबल की शक्ल में अगर आप बैठना चाहते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि जगह काफी है, तो इंशाल्लाह शाह साहब ये
1: मियाँ
2: आपकी
1: साहब
2: दुआओं
1: स्टॉल
2: से।
1: भी लगाएंगे?
2: नहीं जी, स्टॉल जो है वो हम नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि स्टालों का जो स्टाइल है वो और है, वो 6-7 पहले हो चुके हैं, 2-3 और होंगे अभी, मुझे पता है कि अलबसरून में ये हमारे चौधरी लियाकत साहब और इनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है 8 अगस्त को, तो ये सारे प्रोग्राम तो हमारे हैं ना अपने, ये एक और तरह के हैं। पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो मैं क्या कहता हूँ, मैं वो नहीं कहूंगा शाह साहब ने कल सुना था इस तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुआशरे में जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ की सूरत हाल
1: तो
2: से देख
1: मियाँ
2: कर
1: साहब
2: हमें तो
1: मेहमान खुसूसी जो डिसाइड हुए या नहीं?
2: जी बिल्कुल हो गया, मेहमान खुसूसी डिसाइड है, आपको पता चल जाएगा अभी, हम सोशल मीडिया पर तो वो तो शाह साहब ने कह दिया, आपने हमेशा तामन किया आपने, मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया, मेरे अपने जहन में नहीं था अभी, तो अभी टाइम तो बहुत है, हम सारी डिटेल जो है सोशल मीडिया पर भी
1: आएंगे। साहब आपको तो मौका मिलता है, आप हमारे नौजवान सियासतदान हैं
2: जी, आपने हमेशा मौका दिया और हम इसका भरपूर शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपना हक भी समझते हैं और आप हम सब मिलकर एक दूसरे का हिस्सा है, और इसी तरह पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, डेनमार्क हो, यहाँ का मुआशरा हो, अभी हमने टैक्सी पर आप इतना दान दिया है।
1: मतलब सब आपने एक बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने?
2: देखें 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा। अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। और ये भी
1: चले मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे?
2: मैं इजाजत चाहता हूँ अब, सॉरी मैं सुनूंगा आपको लेकिन मैं बात नहीं करूंगा।
1: चलें चलें ठीक है मियां साहब, आपका मौकफ आ गया मियां साहब,
2: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद साहब और आपको सब इसको बहुत बहुत।
1: शायद आखिरी बात करें फिर शाह साहब, आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
3: जी राजा साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी जी
3: जी क्या सवाल था आपका, मेरे ज़हन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं?
3: नहीं नहीं नहीं मैं थका नहीं, मैं मियां साहब की बातें सुन के मजबूर हो रहा था, तो सारी बात बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं मजबूर हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया। फिर आप अब सवाल करें मुझसे,
1: आखिर में आप क्या कहेंगे? जो कुछ ये कुछ बातें हुई, हमने सब चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
3: मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का, वो ये था छाक्सा वॉनमन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है
1: हबस मार्केट की।
3: हाँ मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो उन्होंने बैठा दी है और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है एज ए कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन, फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉरनर थे।
1: शायद दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
3: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को आप बात तो नहीं कर सकते। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सके, तो आपने अपनी ही छाक्षा ने उनको तबाह किया, खुद ही अपने पैरों से कलड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में। और वोन मनी जो अभिशास साहब ने बताया कि डेनिश लोग उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना, 60 साल पहले, कि 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं बन सकते, जब फॉरनर आने शुरू हो गए तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वोनमैन थे, जो वाई से लेके नैरो पोर्ट तक, उससे लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को, ये सारे वोनमैन डैनिश थे, जिनकी 40-40 गाड़ियां, 30-30 गाड़ियां, और टैक्सो मोटर होती थी उसके अंदर भी, अलेबन मुझे नाम बोल गया इस वोनमैन का डैनिश का, उसकी भी 60-65 गाड़ियां होती थी और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, हमने कोई स्टैक, यानी कि जो ताकतवर, हमने कोई ऐसी फ्रेमिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपका आपने बेचारे पैसे देते हैं, और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है, ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनके इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं स्कैट होल, इनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है, और वो वकील ढूंढता है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरनर वोमन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर दूर रहे हैं। तो ये फिर इसको आपको हमें आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाएं। ये अपने मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे अपने मरे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के, किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े। हम पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं, ये तो बात ढकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे? 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया है, हमारे इदारों को किस काम में लगा दिया इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं इसका सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से। अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, हर 4-5 साल बाद। अभी भाई साहब उनके हैं, वो वजीर आजम है पिछले 3-4 साल से, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देख लें, ये यूरोप से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है, आप जाके देख लें, आपको सारे फिगर मिल जाएंगे अब गूगल में। एशिया में पहले तो जंग का बहाना था, ये नहीं जंग का बहाना है, जंग 3-4 माह पहले शुरू हुई, जंग से पहले भी आपके तेल के यही हालात थे, आप तेल से लेके आप डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपये की कदर देख लें, सारा कुछ ही देख लें, इसको महंगाई कहते हैं। पाकिस्तान में जाएं, जाके रह के जाके देखेंगे आप, यहाँ से करोन लेके जाएंगे, आपका 1000 करोन जो है वो कैसे खत्म होता है, जो रुपये में है 40-50 हजार या 60 हजार, वो एक दिन में या 2 दिन में खत्म आपका हो जाएगा, इतनी सख्त महंगाई है, और लोग वहां पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो कोई जानता है। आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले, मकान बेचने वाले, कोठियां बेचने वाले, ये स्टॉक है, बिल्कुल हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका लयाफज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी ऐसी एनर्जी खुश है, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह अल्लाह
1: आपको मौकफ आ गया। शाह साहब शायद ने कह दिया कि जब के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ करता है, रशिया भी तारीफ करता है, अमेरिका भी तारीफ करता है, ईरान भी तारीफ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
0: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 5.25 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 5.25 करोड़ उसने कैश पैसे दिए। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं क्या हमारे किस कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस